एफएम बैंड 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 17वीं तिथि, तदनुसार 8 जुलाई सन 2026। सुबह के 5:57 हुए हैं। हमारी आज की सभा अब आरंभ होती है।

हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के ठीक 6 बजे हैं। प्रस्तुत है आस्था के सर। आस्था के स्वर।

समवेत स्वर में अभी आपने सुना देशगान। संत मीराबाई की भक्ति रचना अब सुनिए लता मंगेशकर के स्वर में। संगीत हृदयनाथ मंगेशकर का है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति रचनाएं। आस्था के स्वर।

0: अभी आप सुन रहे थे आस्था के सर कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं।
1: अरे हो गोरिया कहाँ तेरा देश रे, गोरिया कहाँ तेरा देश।
0: जी हाँ, गोरिया के देश पहुँचेगा इस बुधवार एक ही फिल्म से कार्यक्रम का कारवां।

0: जिसमें नम्रता नहीं आती वे कभी भी विद्या का पूरा सदुपयोग नहीं कर सकते। वही जहाँ काम आए सुई कहा करे तरवार, इस मुहावरे के आधार पर प्रसिद्ध साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद ने कहा है कि जहाँ नम्रता से काम निकल जाए वहाँ उग्रता नहीं दिखानी चाहिए। सुप्रसिद्ध दार्शनिक कन्फ्यूशियस ने कहा था कि मानव जीवन के जितने सद्गुण हैं, मनुष्यता के जो भी तत्व हैं, उनका एकमात्र ठोस आधार विनम्रता ही है। कहते हैं अपनी लघुता के कारण ही चींटी शक्कर का दाना लेकर चलती है और हाथी सिर पर धूल लिए फिरता है। विनम्रता मनुष्य की पहली कसौटी है। दार्शनिक जेबर्ट का ने तो यहाँ तक कहा है कि विनम्रता मनुष्य का श्रृंगार है, जो विनम्र नहीं वो मनुष्य है ही नहीं। किसी काम को कृपालुता पूर्वक करना अथवा कहना है विनम्रता होती है। ईसाइयों के धर्मगुरु पोप ने अपने ट्यूबल टाक में सच्ची विनम्रता की परिभाषा देते हुए लिखा है कि मनुष्य स्वयं शांति का अनुभव करे और अपने व्यवहार से दूसरों को भी शांति प्रदान करे। संत कबीर ने कहा, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, आवरह को शीतल करे आपहु शीतल होए। इससे यह स्पष्ट है कि मन का आपा अर्थात हम अपने अहंकार को जब तक नष्ट नहीं कर देते तब तक विनम्रता नहीं आ सकती। महाकवि कालिदास कहते हैं कि संसार में सभी परोपकारी जीव विनम्र होते हैं, जैसे वृक्ष फलों के भार से झुक जाते हैं, बादल जल से भर जाने पर धरती पर लटकते हैं, सत्पुरुष समृद्धि पाकर परम विनीत बन जाते हैं। किसी ने सत्य कहा है कि जो व्यक्ति विनम्र होते हैं निश्चय ही ईश्वर उनका मार्गदर्शन करते हैं। अभिमान यदि रात्रि का अंधकार है तो विनम्रता दिन का प्रज्वल प्रकाश। हम महत्ता के निकट तब होते हैं जब नम्रता हमारे पास हो। अंग्रेजी के लेखक लॉर्ड चेस्टरफील्ड ने सद्गुण और विद्या की तुलना स्वर्ण से करते हुए लिखा है कि उनका एक अपना स्थायी मूल्य होता है, किंतु यदि उन्हें रगड़कर चमकाया न जाए तो वो अपना सौंदर्य खो बैठते हैं। वही मलिन और भद्दे स्वर्ण की अपेक्षा चमकाए गए जस्ते की ओर अधिक आकृष्ट हुआ जाता है। तात्पर्य यह है कि यदि स्वर्ण समान मूल्यवान विद्वता हमारे पास है तो हमारी विनम्रता उसमें सुगंध और चमक का काम करेगी। बड़ों के सम्मुख विनम्र होना शिष्टाचार है, छोटों के प्रति विनय होना हमारी महत्ता है और सभी के प्रति विनम्र होना हमारी सुरक्षा का कवच है। अभिमान देव को दानव बना देता है। ठीक इसके विपरीत विनम्रता मनुष्य को देवत्व की ऊंचाई तक पहुंचा देती है। शिष्टाचार और विनम्रता बरतने में हमारा कुछ भी खर्च नहीं होता, किंतु ये वो पूंजी है जो हमें जीवन भर लाभ ही लाभ देती है। ईसाइयों के धर्मग्रंथ बाइबल में नए नियम की घोषणा है कि जो मनुष्य अपने को बड़ा समझता है वो गड्ढे में ढकेल दिया जाएगा और जो मनुष्य विनम्रता का आचरण करता है उससे ऊपर उठा दिया जाएगा। बाइबल में यह भी लिखा है कि यदि कोई तुम्हारे गाल पर तमाचा मारे तो तुम अत्यंत विनम्रतापूर्वक उसकी ओर अपना दूसरा गाल भी कर दो। बुद्धिमानी इसी में है कि हम शांत और विनम्र बनकर रहें। जिसके जीवन में विनम्रता नहीं है उसका जीवन निष्फल है। विनम्र व्यक्ति को ईश्वरार्पित होकर अपना जीवन व्यतीत करना होता है। उसका जीवन बलिदान और त्यागों से परिपूर्ण होता है। इसके लिए उसके हृदय में दुख के स्थान पर प्रसन्नता और शोक के स्थान पर प्रफुल्लता और आंसुओं के स्थान पर मुस्कान भरी होती है। विनयी मानव सभी के प्रेम का पात्र बन जाता है।
1: आप सुन रहे थे चिंतन। आलेख था सुरेश कुमार खयालदास का, निवेदक रवि कुमार सोनी। आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान।

0: सुरीला संगीतमय सफर कारवां इस बुधवार प्रातः 7:20 पर एक ही फिल्म से। ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। अब सुनिए चिंतन, आलेख सुरेश कुमार खयालदास का, निवेदक रवि कुमार सोनी।
1: विनम्रता की प्रशंसा भारतीय और पाश्चात्य सभी मनुष्यों ने एक ही स्वर में की है। विनम्रता को ही मानव का सर्वश्रेष्ठ सद्गुणी रूपी गहना माना गया है। विद्या ददाति विनयम, विनयाद्याति पात्रताम। इस सूक्ति के आधार पर ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था

बहुओं समेत चारों पुत्रों को देखकर माताएं परम आनंद मग्न हैं। वेद सम्मत विधियों तथा कुल की रीति के अनुसार

वे अर्घ्य पावड़े देती नवविवाहित जोड़ियों को परिछन के लिए महल में ले चली। माताओं द्वारा लोक रीतियां संपन्न हुई। सभी भाइयों ने देवताओं तथा पितरों का पूजन किया। देवगण यद्यपि अदृश्य हैं, फिर भी मानो अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं, और आनंदित माताएं उन आशीर्वचनों से अपने अपने आंचल भर ले रही हैं। जब गुरु तथा ब्राह्मणों समेत राजा दशरथ महल में पधारे तो रानियों ने आदर सहित सबके चरण धोए, उन्हें स्नान कराया गया और भली भांति पूजे जाकर उन्होंने भोजन किया। राजा ने गाधी पुत्र विश्वामित्र की विशेष रूप से पूजा करके अपने को धन्य माना।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान स्वर था शोभना राव का। ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। लीजिए सुनिए कृषि चर्चा, वाचिका स्मिता बरोले।
1: भाई बहनोहणी राम राम। आज की कृषि चर्चा को विषय छे अदरक की खेती। वाचक स्वर स्मिता बरोले। भाई बहनोहणी अदरक मसाला फसल नमसी एक छे। नई की खेती नकदी फसल का रूप में की जाए। ताजा अदरक को व्यंजन का रूप में भी उपयोग करे जाए। साथज एको अचार नमरोबो भी बनायो जाए। चाय को स्वाद बढ़ाना का लेना एक विशेष तौर पर उपयोग करो जाए। एम औषधीय गुण भी पाया जाए। नई बहुत अज उपयोगी छे। हमारे यहाँ का किसान भाई एक ही खेती करीना भी लाभ कमाई रहा है। न अदरक की खेती का लेना हल्की दोमट या बलुई दोमट भूमि उपयुक्त मानी जाए। न भूमि को पीएच मान

0: 6 से 7.5 का बीच में होना चाहिए, जेमा अदरक की पैदावार अधिक हो जाए। अदरक की खेती के लिए ऊंची जमीन एवं जल निकासी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। अब हम बात करें भूमि की तैयारी का बारे में, तो अदरक की खेती के लिए एक बार मिट्टी पलटना वाला हल से जुताई करने का बाद 4 से 5 बार देसी हल या कल्टीवेटर से जुताई करनी चाहिए। प्रत्येक जुताई के बाद पाटो अवश्य लगावा जेका से मिट्टी भुरभुरी हुई जाए। अंतिम जुताई 3 से 4 सप्ताह पूर्व खेत में 250 से 300 कुंटल सड़ी हुई गोबर की खाद उमा मिलाई देनी चाहिए। गोबर को खाद देने का बाद 1 या 2 बार खेत की जुताई करीकर गोबर की खाद ख मिट्टी में मिलाई देनी चाहिए। अब हम बात करें जलवायु का बारे में, तो अदरक की अच्छी उपज के लिए थोड़ी गर्म तथा नम जलवायु होनी चाहिए। अदरक की अच्छी उपज के लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त माना जाए, जेमा एक ही खेती अच्छा सी की जा सके। अब हम बात करें बुआई की विधि का बारे में, तो अदरक की बुआई 3 विधि में की जा सके। पहली विधि छे क्यारी विधि। ई विधि में 120 मीटर चौड़ी तथा 30 मीटर लंबी क्यारी न जो जमीन की सतह से 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची हुए बनाऊनी चाहिए। प्रत्येक क्यारी का चारों तरफ 50 सेंटीमीटर चौड़ी नाली बनाई देनी चाहिए। क्यारी में 30-20 सेंटीमीटर दूरी पर 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई में बीज न की बुआई करनी चाहिए। जहां पानी की व्यवस्था छे वहां पर ये विधि अपनाई जाए। अब हम बात करें मेड़ विधि का बारे में। इस विधि में 60 सेंटीमीटर की दूरी पर तैयार खेत में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बीज की बुआई करने के बाद मिट्टी चढ़ाई कर मेड़ बनावा। अब हम बात करें समतल विधि का बारे में। ये विधि हल्की एवं ढालू भूमि में अपनाई जाए। ये विधि में 30 सेंटीमीटर पंक्ति नमा 20 सेंटीमीटर गांठ से गांठ या पौधा से पौधा की दूरी रखनी चाहिए। 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई में इनकी बुआई करी देनी चाहिए। जहाँ पर जल जमाव की संभावना नहीं होती है वहाँ पर ये विधि का अपनाना चाहिए। अब हम बात करें अदरक की उन्नत किस्म का बारे में। ये किस्म छे नदिया, मरान, जोर, हट, सुप्रभा, न सुरुचि, न सुरभि। ये किस्म में सी कोई सी भी किस्म को किसान भाई चुनाव करी न अदरक की बुआई करी सकज। अब हम बात करें खाद एवं उर्वरक का बारे में। अदरक लंबी अवधि की फसल छे, न अधिक उपज के लिए किसान भाई गोबर की सड़ी हुई खाद 250 से 300 क्विंटल हेक्टर को उपयोग करी सकज। एका साथ नत्रजन, फास्फोरस व पोटास की मात्रा 80 से 100, 50 से 60 न 100 किलोग्राम हेक्टर की दर से खेत में डाली देनी चाहिए। अब हम बात करें गाठने की बुआई का बारे में। तो बीज प्रकंद मध्यम आकार का जिनको भार 20 से 25 ग्राम न 2 से 3 आंख वाली होए कंद को चुनाव करना चाहिए। बीज प्रकंद स्वस्थ बीमारी व कीट रहित होना चाहिए। प्रति हेक्टर 18 से 20 क्विंटल कंद की जरूरत हो। अदरक की गाठने का बुआई करने से पहले उपचारित करी लेना चाहिए जेका सी उनमें भूमि जनित रोग नहीं होए। अब हम बात करें सिंचाई का बारे में। अदरक बरसात वाली फसल छे, एकल लेना एक ही सिंचाई की आवश्यकता कम रहे, लेकिन अक्टूबर नवंबर माह में वर्षा नहीं होती है तो ऐसी परिस्थिति में सिंचाई करना आवश्यक हो जाए। अब हम बात करें फसल प्रबंधन का बारे में। तो रोपाई का 2 से 3 माह बाद क्यारी ने निराई गुड़ाई करके मिट्टी चढ़ानी चाहिए। अदरक में खरपतवार नाशक दवाई को ज्यादा नहीं करनी चाहिए क्योंकि लंबा समय की फसल होने का कारण रोपाई से पहले या तुरंत बाद छिड़काव से अच्छा परिणाम नहीं मिलता है। अदरक की फसल सामान्यतः 8 से 9 महीना में तैयार हो जाए जबकि खुदाई की जा सकज। खुदाई के बाद 2 से 3 दिन तक छाया में सुखावा, ओका बाद इनका विक्रय का लिया भेजा। 1 हेक्टेयर क्षेत्र में औसत 100 से 150 क्विंटल तक अदरक की पैदावार किसान भाई करी सकज। एको भंडारण भी करो जा सकज जेका सी रोपाई का लिया अगला वर्ष फिर से उपयोग में ख लियो जा सका। अदरक की खेती अगर इना तरीका से किसान भाई करे तो उनका अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। तो भाई बहन नहुनी ये तो थी आज की कृषि चर्चा। राम राम।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा, वाचिका स्मिता बरोले। हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम विवरण।

श्रोताओं, अब से कुछ ही देर बाद प्रातः 7 बजे प्रसारित करेंगे वार्ता सतत विकास लक्ष्य और हमारा देश भारत। वार्ताकार शिवानी कोचर। 7:20 पर एक ही फिल्म से।

सुरीला संगीतमय सफर कारवां इस बुधवार प्रातः 7:20 पर एक ही फिल्म से। जी हाँ, एक ही फिल्म से कार्यक्रम आप सुनेंगे बस अब से कुछ देर बाद प्रातः 7:20 पर। फिल्म है कारवां। पर सुनिएगा निमाड़ी लोक संगीत आपके मीत। ये गीत फरमाइशी फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम होगा 8:30 पर सुबह 9 से 10 तक और फिर दिन में 11 से 5:30 तक अनुप्रसारित करेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। जिले की चिट्ठी हम आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे 10:05 पर नारी जगत कार्यक्रम में सुनिएगा वार्ता बच्चों को बाहर पढ़ने भेजते समय क्या तैयारी करें। वार्ताकार मून चौधरी।

आज संध्या 5:30 पर सुनिएगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। संध्या 6 युववाणी कार्यक्रम में आकर्षण होगा क्रम यूथ चॉइस। फिल्म संगीत 6:30 पर। 7:21 पर प्रसारित किया जाएगा खेती गृहस्थी कार्यक्रम।

विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित करेंगे रात्रि 8 बजे से 8:45 तक, 9 बजे से 9:15 तक और फिर 9:30 से 11 बजे तक। और इस बीच रात्रि 9:15 पर हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे स्पॉटलाइट।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आज की ताजा खबर में प्रस्तुत है आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां।

0: जिला स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित। 3 शिफ्टों में तैनात किए गए हैं अधिकारी कर्मचारी। अतिवृष्टि, बाढ़ एवं प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए कलेक्ट्रेट खंडवा में जिला स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष का दूरभाष क्रमांक है 0733-22-24135। इसके अलावा नगर निगम खंडवा में भी कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। शहर में 3 दिनी गुरु पूर्णिमा उत्सव 27 जुलाई से मनाया जाएगा। श्री दादाजी मंदिर में मुख्य दिवस 29 जुलाई को मनाया जाएगा। इस साल मंदिर में किए जा रहे निर्माण के कारण सुरक्षा की दृष्टि से भक्त निशान के साथ मंदिर की परिक्रमा नहीं कर पाएंगे। पर्व के दौरान श्री दादाजी मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को पूर्व की भांति गेट नंबर 6 से ही प्रवेश मिलेगा और गेट नंबर 7 से निकासी की व्यवस्था रहेगी। जिले में बेहतर पुलिसिंग और उत्कृष्ट कार्य करने वाले 10 पुलिसकर्मियों का एसपी ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया। पुलिस अधीक्षक ने साप्ताहिक कार्य समीक्षा के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले 10 अधिकारी कर्मचारियों को सप्ताह का उत्कृष्ट कर्मचारी सम्मान से नवाजा है। पीएम शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सूरजकुंड में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इसमें मुख्य वक्ता माननीय व्यवहार न्यायाधीश महोदय ने छात्राओं से कर्तव्य और अधिकार के संतुलन पर बात की। और अब खबर खेल जगत से। फीफा विश्व कप फुटबॉल के क्वार्टर फाइनल में पहुंची अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड की टीम। उधर इंग्लैंड में चल रही 5 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के 3रे मैच में इंग्लैंड ने भारत को हरा दिया और श्रृंखला में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली। श्रृंखला का पहला मैच बारिश से धुल गया था। और अब मौसम का हाल। जिले में पिछले 24 घंटे में औसत 2.8 मिलीमीटर बारिश हुई। इसमें खंडवा में 6 मिलीमीटर और पंधाना में 8 मिलीमीटर बारिश हुई है। और अब एक नजर तापमान पर। कल दिन का अधिकतम तापमान रहा 28.1 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान रहा 20.4 डिग्री सेल्सियस। ये थी आज की ताजा खबरें, संकलन श्रुति श्रीवास का।
1: आज की ताजा खबर।

0: सुरीला संगीतमय सफर कारवां इस बुधवार प्रातः 7:20 पर एक ही फिल्म से।
1: एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
2: ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। सुबह के ठीक 7 हैं। अब प्रस्तुत है वार्ता सतत विकास लक्ष्य और हमारा देश भारत। वार्ताकार शिवानी कोचर।

श्रोताओं नमस्कार, मैं शिवानी कोचर आज आपको सतत विकास लक्ष्य 2030 और इसमें भारत की भूमिका के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि सतत विकास क्या है। सतत विकास का मतलब है वर्तमान की जरूरतों को पूरा करना, साथ ही यह सुनिश्चित करना कि आने वाली पीढ़ियां भी अपनी जरूरतों को

पूरा कर सके। सतत विकास को हासिल करने के लिए आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक इन तीनों क्षेत्रों में नीतियों को एक साथ काम करना जरूरी है। सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी SDG 2015 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य SDG 2030 तक प्राप्त किए जाने वाले 17 वैश्विक लक्ष्यों का एक संग्रह है। वे सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय आयामों में तत्काल वैश्विक चुनौतियों का समाधान करते हैं, जो सभी देशों को सतत विकास की दिशा में काम करने के लिए एक सार्वभौमिक आह्वान बनाते हैं। अब मैं आपको हमारे 17 विकास लक्ष्यों से अवगत कराती हूं। पहला है गरीबी उन्मूलन, हर जगह गरीबी के सभी रूपों को समाप्त करना। दूसरा है भूख से मुक्ति, खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण प्राप्त करना और सतत कृषि को बढ़ावा देना। तीसरा है अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, स्वास्थ्य जीवन सुनिश्चित करना और सभी उम्र के लोगों के लिए कल्याण को बढ़ावा देना। चौथा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समावेशी समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और आजीवन सीखने को बढ़ावा देना। पांचवा है लैंगिक समानता, लैंगिक समानता प्राप्त करना और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना। छठा है स्वच्छ जल और स्वच्छता, जल और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करना। सातवां सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, सस्ती विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करें। आठवां है सभ्य कार्य और आर्थिक विकास, निरंतर समावेशी और टिकाऊ आर्थिक विकास और उत्पादक रोजगार को बढ़ावा देना। नवा है उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा, लचीला बुनियादी ढांचा बनाए, समावेशी और टिकाऊ औद्योगिकरण को बढ़ावा दे। दसवां लक्ष्य है असमानता में कमी, देशों के भीतर और उनके बीच असमानता को कम करें। ग्यारहवां लक्ष्य है टिकाऊ शहर और समुदाय शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ बनाएं। बारहवां लक्ष्य है जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन, टिकाऊ उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करें। तेरहवां जलवायु कार्यवाही, जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्यवाही करें। चौदहवां लक्ष्य है पानी के नीचे जीवन, महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और टिकाऊ उपयोग करें। पंद्रहवां लक्ष्य है भूमि पर जीवन, स्थलीय पारिस्थितिक प्रणालियों के टिकाऊ उपयोग की रक्षा, पुनर्स्थापना और बढ़ावा दें। सोलहवां लक्ष्य शांति, न्याय और मजबूत संस्थान, शांतिपूर्ण समावेशी समाजों और जवाबदेह संस्थानों को बढ़ावा दें। आखिरी और सत्रहवां लक्ष्य है लक्ष्यों के लिए साझेदारी, कार्यान्वयन के संसाधनों को मजबूत करें और सतत विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को पुनर्जीवित करें। ये तो थे हमारे 17 लक्ष्य। सतत विकास लक्ष्यों पर भारत की भूमिका और प्रगति, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश और दुनिया के सबसे बड़े विकासशील देशों में से एक के रूप में भारत ने 2030 तक इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। अपनी विविध आबादी, परिस्थिति तंत्र और तेज आर्थिक विकास के साथ भारत के योगदान और चुनौतियां महत्वपूर्ण है। फोकस और पहल प्रमुख क्षेत्र, पहला गरीबी में कमी और आर्थिक विकास, प्रधानमंत्री जनधन योजना और आत्मनिर्भर भारत जैसे कार्यक्रम, वित्तीय समावेशन, स्थानीय उद्योगों और आर्थिक सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कौशल भारत और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम MGNREGA के माध्यम से रोजगार पहल स्थायी आजीविका का समर्थन करती है। दूसरा है जलवायु कार्यवाही और स्वच्छ ऊर्जा, भारत ने पेरिस समझौते के तहत महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धताएं की हैं और राष्ट्रीय और मिशन और अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन के माध्यम से अक्षय ऊर्जा के विस्तार पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है। स्वच्छ भारत मिशन ने पर्यावरण संरक्षण में सहायता करते हुए स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करने का भी योगदान दिया है। तीसरा शिक्षा और स्वास्थ्य, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रम लड़कियों की शिक्षा और लैंगिक समानता को बढ़ावा देते हैं। आयुष्मान भारत योजना कमजोर समूहों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है जिससे स्वास्थ्य परिणाम बेहतर होते हैं। चौथा है सतत कृषि और खाद्य सुरक्षा, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन स्थायी खेती की तकनीकों को बढ़ावा देता है। PM किसान सम्मान निधि किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करती है। पांचवा बुनियादी ढांचा और नवाचार, स्मार्ट सिटी मिशन और डिजिटल इंडिया पहल का उद्देश्य शहरी बुनियादी ढांचे को बदलना और अर्थव्यवस्था को डिजिटल बनाना है जिससे समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा मिले। छठा भागीदारी और वैश्विक सहयोग, भारत वैश्विक स्तर पर SDG प्रगति का समर्थन करने के लिए प्रौद्योगिकी, वित्त और नीति सहयोग का लाभ उठाते हुए अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी में सक्रिय रूप से भाग लेता है। इसकी चुनौतियां और अवसर, महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद भारत को गरीबी में कमी, क्षेत्रीय असमानताओं, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा

तक पहुंच और तेजी से शहरीकरण के कारण पर्यावरण संबंधी चिंताओं जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता रहा है। हालांकि अभिनव कार्यक्रमों और वैश्विक स्तर पर जलवायु कार्यवाही में योगदान के कारण सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण बनी हुई है। प्रगति की निगरानी, भारत राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति को ट्रैक करने, जवाबदेही सुनिश्चित करने और सुधार के क्षेत्रों को उजागर करने के लिए नीति आयोग द्वारा विकसित सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक का उपयोग करता है। सूचकांक 17 लक्ष्यों में परिणामों को मापता है और सतत विकास लक्ष्यों के साथ नीतियों को संरेखित करने के लिए एक मूल्यवान उपकरण बन गया है। नीतिगत पहलों, साझेदारियों और जमीनी प्रयासों के संयोजन के माध्यम से भारत 2030 के सतत विकास लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ा रहा है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज के बीच निरंतर प्रतिबद्धता, नवाचार और सहयोग की आवश्यकता है। अंत में मैं यह कहूंगी कि विकसित और समृद्ध भविष्य के लिए सतत विकास लक्ष्य SDGs एक जरूरी कदम है जो हमारे विकास को संरक्षित और समान बनाते हैं। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सभी देशों को मिलकर काम करना होगा ताकि हर व्यक्ति, समाज और प्रकृति का विकास हो सके। SDGs के माध्यम से हम एक ऐसे भविष्य की आशा करते हैं जो प्रकृति और मानव जाति के साथ संवाद और समानता की ओर बढ़े। इसलिए हर एक व्यक्ति का योगदान और कर्तव्य है कि हम इस सफर में अपना योगदान दें और इस विश्व को एक अच्छे भविष्य की ओर ले जाएं। धन्यवाद।

सतत विकास लक्ष्य और हमारा देश भारत। अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता, वार्ताकार शिवानी कोचर। यह निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा FM बैंड 101.2 MHz पर।

0: सुरीला संगीतमय सफर कारवां इस बुधवार प्रातः 7:20 पर एक ही फिल्म से।
1: जी हाँ, एक ही फिल्म से कार्यक्रम आप सुनेंगे बस सबसे कुछ ही देर बाद प्रातः 7:20 पर। आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है, प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे।

0: महात्मा गांधी एक नाम नहीं, एक विचारधारा है जिसके बिना हमारा जीवन, हमारी नैतिकता और हमारे मूल्य शून्य है।
1: सबको सम्मति दे भगवान।
0: आइए चलें उस राह जो राह दिखाई बापू ने।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशियाई संसद के संयुक्त सत्र को किया संबोधित। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में करेंगे भूमि पूजन। प्रदेश में मानसूनी बारिश का सिलसिला जारी, कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। और T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड ने भारत को 125 रनों से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल इंडोनेशियाई संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए दोनों देशों के हजारों वर्ष पुराने सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और समुद्री संबंधों को रेखांकित किया। श्री मोदी ने द्विपक्षीय साझेदारी के लिए गंगा महाकाम विजन प्रस्तुत करते हुए कहा कि इस विजन के 5 प्रमुख स्तंभ सभ्यतागत जुड़ाव, साझा विकास, सुरक्षा, समुद्री समृद्धि और ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इंडोनेशिया तीसरा सबसे बड़ा लोकतंत्र है और दोनों का अनुभव वैश्विक स्तर पर प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने इंडोनेशिया के एमास 2045 विजन और भारत के विकसित भारत 2047 संकल्प को एक दूसरे का पूरक बताया। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच स्पेस टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट लॉन्च, समुद्री सुरक्षा और डिजिटल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की वकालत की और ब्रिक्स में इंडोनेशिया की सदस्यता का स्वागत करते हुए कहा कि दोनों देश मिलकर ग्लोबल साउथ और भारत प्रशांत क्षेत्र को एक नई दिशा देंगे। श्री मोदी ने कहा,
1: आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की ग्रोथ को ड्राइव करने में बड़ी भूमिका निभा रही है। जब दुनिया पर कोरोना का इतना बड़ा संकट आया तो भी भारत की अर्थव्यवस्था ठप नहीं पड़ी। जब वेस्ट एशिया का इतना बड़ा संकट चल रहा था तब भी भारत की इकोनॉमी थमी नहीं। भारत की ग्रोथ में जो स्पीड और स्केल है उसको एक लाइन में बताना हो तो मैं कहूंगा 1.4 बिलियन एस्पिरेशंस इन मोशन।
0: देश में सहकारी संघवाद को मजबूत करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की गरिमामय उपस्थिति में दशकों पुराने नर्मदा जल विवाद का कल सौहार्दपूर्ण समाधान हो गया। नई दिल्ली में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता सरदार सरोवर परियोजना की निर्माण लागत साझा करने से जुड़े लंबित भुगतानों का वन टाइम सेटलमेंट करता है। गृह मंत्री श्री शाह ने कहा, इसे जल सुरक्षा की दिशा में मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के कारण राज्यों में आपसी समझ पड़ी है, जिससे राष्ट्रीय नुकसान को रोका जा सका है। इससे पहले अपने दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कल रक्षा, रेल और कृषि मंत्रियों से भी मुलाकात कर राज्य के विकास पर चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनी लियोगोंग इंडिया के नए विनिर्माण संयंत्र का भूमि पूजन करेंगे। चीन की प्रमुख निर्माण उपकरण निर्माता कंपनी की भारतीय इकाई द्वारा 20 एकड़ क्षेत्र में विकसित किए जा रहे इस नए संयंत्र में 272 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। प्रारंभिक चरण में यहां प्रतिवर्ष 6500 निर्माण उपकरणों का उत्पादन होगा, जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। आपको बता दें कि लियोगोंग वर्ष 2008 से पीथमपुर में कार्यरत है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यह विस्तार मध्य प्रदेश को देश का प्रमुख औद्योगिक निवेश और विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया कि इस साल मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह योजना पश्चिम एशिया की भू राजनीतिक स्थिति से प्रभावित व्यवसायों को तेजी से और बड़े पैमाने पर सहायता प्रदान कर रही है। मंत्रालय ने बताया कि योजना ऋण देने वाली संस्थाओं को उधारकर्ताओं को अतिरिक्त ऋण देने के लिए जोखिम कम करने हेतु बनाई गई है। इससे व्यवसायों को नकदी प्रवाह में व्यवधान से उबरने और संचालन जारी रखने में मदद मिलती है। इसने वित्तीय संस्थानों को अधिक आत्मविश्वास के साथ ऋण देने

0: में भी सक्षम बनाया है। इससे एमएसएमई के लिए अतिरिक्त ऋणों पर 100% और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए 90% गारंटी कवरेज प्रदान करके जरूरतमंद क्षेत्रों तक तरलता पहुंच सुनिश्चित होगी। वित्तीय सेवा विभाग ने योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए देश भर में एक अभियान भी चलाया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
2: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर, एसआई और सूबेदार के पदों पर भर्ती का इंतजार खत्म हो गया है। विभाग द्वारा कुल 500 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें से योग्यता के आधार पर 436 उम्मीदवारों को अंतिम रूप से चुन लिया गया है। इस प्रतिष्ठित परीक्षा में संजय परमार ने टॉप कर पहला स्थान हासिल किया है। इस बड़ी कामयाबी और भर्ती प्रक्रिया के पूरा होने पर डीजीपी कैलाश मकवाणा ने खुशी जताई है। प्रदेश में मानसूनी बारिश का सिलसिला चल रहा है। कई जगहों पर खूब पानी बरस रहा है तो कुछ स्थानों में पानी की कमी बनी हुई है। पिछले 24 घंटों में भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन, जबलपुर और सागर सहित अधिकांश संभागों में झमाझम बारिश दर्ज की गई है। झाबुआ जिले में मानसून की सक्रियता से बारिश का दौर जारी है, जिससे किसानों के चेहरे खिल गए हैं। उधर मंडला जिले में लगातार हो रही वर्षा को देखते हुए कलेक्टर राहुल धोटे ने नर्मदा घाटों और शहर के जलभराव वाले इलाकों का औचक निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के निर्देश दिए हैं। खंडवा जिले में कलेक्ट्रेट परिसर में 24 घंटे सक्रिय रहने वाला जिला स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जिसका हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। वहीं गुना जिले में 1 जून से कल तक कुल 232.8 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। आज बड़वानी, धार, गुना सागर, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़ सहित कुछ जिलों में अति भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। कल रात नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में खेले गए तीसरे टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड ने भारत को 125 रनों से हरा दिया। बता दें कि शनिवार को मैनचेस्टर में खेले गए दूसरे टी20 मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराया था। दोनों टीमों के बीच पहला टी20 मैच बारिश की वजह से बिना किसी नतीजे के खत्म हुआ। सीरीज के आखिरी 2 मैच ब्रिस्टल और साउथहैम्पटन में खेले जाएंगे। इसके बाद भारत 3 मैचों की वनडे सीरीज में इंग्लैंड का सामना करेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रायसेन जिले में आधुनिक सुविधाओं से लैस सांची के नवनिर्मित रेलवे स्टेशन का 11 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। खंडवा जिले में सेफ क्लिक 2.0 अभियान के तहत मैराथन और साइबर रन का आयोजन कर नागरिकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी और सुरक्षा ऐप के प्रति जागरूक किया गया। आगर मालवा जिले में आगामी सिंहस्थ महापर्व को देखते हुए कलेक्टर ने उद्यानिकी विभाग को अधिक से अधिक किसानों को फूलों की खेती के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए। डिंडौरी जिले में युवाओं और नए उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए आज एक दिवसीय तेजस कार्यशाला का आयोजन कर स्टार्टअप इकोसिस्टम और फंडिंग पर मार्गदर्शन दिया गया। इंदौर जिले में आयोजित रोजगार मेले में 12 प्रतिष्ठित निजी कंपनियों द्वारा 300 युवाओं को विभिन्न पदों पर नौकरी के लिए चयनित कर रोजगार दिया गया। मंडला जिले में एमएसएमई उद्यमियों की क्षमता बढ़ाने के लिए 2 दिवसीय कंपोजिट वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सरकारी योजना और डिजिटल कॉमर्स पर लाइव सेवाएं मिलेंगी। भोपाल जिले में नगर निगम ने जिला प्रशासन के सहयोग से बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के विभिन्न क्षेत्रों से अवैध अतिक्रमण हटाए और 5 जर्जर मकानों को जमींदोज किया। सिंगरौली जिले में बलिया नाला में कोयला युक्त दूषित पानी बहाने पर कलेक्टर के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई करते हुए खदान प्रबंधन पर 63 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। गुना जिले में समर्थन मूल्य पर ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द खरीदी के लिए 4 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं, जहां नोडल अधिकारियों की निगरानी में पारदर्शी व्यवस्था रहेगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: लेडीज एंड जेंटलमैन, जिस प्रोग्राम का आपको इंतजार था वो अब शुरू होता है। दिल थाम कर बैठिए।
1: प्रस्तुत है एक ही फिल्म से। स्वीकार कीजिए आपके अपने रेडियो मित्र मनीष शर्मा का नमस्कार। अरे

जी हाँ, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्ष 1971 की एक जबरदस्त सुपरहिट फिल्म कारवां।

निर्देशक नासिर हुसैन की मशहूर फिल्म कारवां का संगीतमय कारवां तैयार किया। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार राहुल देव बर्मन यानी पंचम दाने। एक ही फिल्म से कार्यक्रम में कारवां की कहानी शुरू करने से पहले परिचय फिल्म के प्रमुख पात्रों का। मोहन के किरदार में अभिनेता जितेंद्र, सुनीता की भूमिका में आशा पारेख, निशा अरुणा ईरानी, मोंटो जूनियर महमूद, मोनिका हेलन, राजन किशन मेहता, जॉनी रविंद्र कपूर, मीठालाल तोता मदनपुरी। फिल्म के अन्य मुख्य कलाकार हैं मनोरमा, मुराद, संजना और शिवराज। आइए शुरू करते हैं नासिर हुसैन फिल्म्स और टीवी फिल्म्स के बैनर तले बनी फिल्म कारवां की कहानी का ये सुहाना सफर।

0: राजन, सुनीता के पिता सेठ मोहनदास का जनरल मैनेजर है। सेठ जी राजन को बहुत चाहते हैं, लेकिन जब एक दिन अचानक 3 लाख रुपए तिजोरी से गायब हो जाते हैं तो सामने आ जाती है राजन की असलियत।
1: इस सेफ की एक चाबी मेरे पास रहती है, दूसरी तुम्हारे पास। कल मैंने यहाँ तुम्हारे सामने 10 लाख रुपए रखे थे, जिनमें से 3 लाख गायब हैं। कहाँ गए वो रुपए?
2: मुझसे गलती हुई बाबूजी, लेकिन बाबूजी मुझे अफसोस है कि
1: अफसोस तो मुझे होना चाहिए कि मैंने तुम्हें पहचानने में इतनी देर क्यों लगाई। अपने स्वर्गवासी दोस्त के नाते तुम्हें औलाद की तरह पाला, अमरीका भेजकर तालीम दिलाई और फिर इतनी बड़ी मिलकर जनरल मैनेजर बना दिया।
2: लेकिन बाबूजी मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं आपको
1: खामोश, कल सुबह तक अगर तुमने मेरी रकम वापस न की

0: तो ये राज न सिर्फ इस कमरे के बाहर होगा बल्कि पुलिस के हाथों में भी।
1: राजन का चेहरा बेनकाब होते ही उसी रात अपने बंगले की चौथी मंजिल से गिरकर सेठ मोहनदास मर जाते हैं। सुनीता अपने पिता की इस अचानक मौत से सदमे में आ जाती है। सेठ जी का पुराना मैनेजर करमचंद सुनीता से मिलने आता है।
2: सुनीता बेटी,
3: यहाँ आपकी कोई बेटी बेटी नहीं, चलिए यहाँ से।
2: बेटी, अगर मेरे यहाँ आने से तुम्हें दुख हुआ है तो मैं माफी चाहता हूँ, मैं यहाँ फिर कभी नहीं आऊंगा। मगर बेटी, अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो इतना याद रखना, करमचंद ने तुम्हारा नमक खाया है, वो अपना खून बहा के भी नमक का हक अदा करेगा।
1: सुनीता अपने पिता की मौत के सदमे से उबर नहीं पाती और अपनी सारी दौलत और जायदाद राजन के नाम कर देती है।
2: ये क्या है?
3: मेरा वसीयतनामा। मेरे मर जाने के बाद ये सारी जायदाद तुम्हारी।
2: सुनीता, तुम सच में पागल हो?

0: सेठ जी का पुराना मैनेजर करमचंद सुनीता से मिलने आता है।
1: सुनीता बेटी,
2: यहाँ आपकी कोई बेटी बेटी नहीं, चली जाइए यहाँ से।
1: बेटी, अगर मेरे यहाँ आने से तुम्हें दुख हुआ है तो मैं माफी चाहता हूँ, मैं यहाँ फिर कभी नहीं आऊंगा। मगर बेटी, अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो इतना याद रखना, करमचंद ने तुम्हारा नमक खाया है, वो अपना खून बहा के भी नमक का हक अदा करेगा।
0: सुनीता अपने पिता की मौत के सदमे से उबर नहीं पाती और अपनी सारी दौलत और जायदाद राजन के नाम कर देती है।
1: ये क्या है?
3: मेरा वसीयत नामा, मेरे मर जाने के बाद ये सारी जायदाद तुम्हारी।
1: सुनीता, तुम सच में पागल?
3: सारे जान पहचान वाले यही समझते हैं कि मैं बिल्कुल पागल हूँ, अगर मैं पागल होती तो ये न करती।
1: लेकिन तुम ये क्यों कर रही?
3: इसलिए कि मेरे लिए जिंदगी खत्म हो चुकी है, मेरे बाद मेरी जायदाद का हकदार तुमसे बढ़कर और कौन हो सकता है?
1: सुनीता, मुझे दौलत की आरजू नहीं, मुझे परेशानी है तो उस वचन की, तो मैंने बाबूजी को दिया था।
3: वचन?
1: हाँ, जानती हो जिस दिन बाबूजी का हादसा हुआ उन्होंने ऑफिस ले जाकर मुझे क्या कहा था?
3: क्या कहा था?
1: वो मेरी और तुम्हारी शादी कराना चाहते थे।
0: अपने स्वर्गीय पिता की मनोकामना पूरी करने के लिए सुनीता राजन से शादी कर लेती है। राजन सुनीता को खंडाला के एक कॉटेज में ले जाता है, लेकिन वहाँ
2: सुनीता, मैं तुमसे कुछ कहने आई हूँ, मगर याद रखो मुझे ना तुमसे कोई शिकायत है ना नफरत, क्योंकि तुम बेगुनाह हो और आज तुम ऐसी मक्कार के चुंग में फंसी हो जो के।
1: सुनीता, सुनीता इसकी एक बात मत सुनो, आज से पहले मैंने कभी इसकी शक्ल भी नहीं देखी, ये मक्कार है, झूठी है।
2: हाँ ये झूठ है कि आज 3 साल से हर रात तुम मेरे साथ गुजारते हो, ये भी झूठ है कि तुम मेरे जिस्म से खेले हो और तुमने कभी मोहब्बत और शादी के वादे नहीं किए, और अगर ये सब झूठ है तो शायद ये तस्वीरें भी झूठी हैं, मेरी बाहों में ये तुम नहीं कोई और है, शायद मुझसे पहले किसी और की जवानी से खेले होगे, और सुनीता के बाद और भी लड़कियां तुम्हारे जीवन में आई, क्योंकि सुनीता से तुमने शादी की है तो दौलत की खातिर। जिस दिन सुनीता तुम्हारी हवस के सामने कांटा बनेगी, तुम सुनीता को भी अपने रास्ते से उसी तरह हटा दोगे जिस तरह तुमने सेठ मोहनदास का खून किया है।
1: ये झूठ है।
2: इस मनहूस के हाथ एक दिन तुम्हारे गर्दन तक पहुंचने वाली है, इससे पहले अगर होश आ जाए तो मेरे पास चले आना, मोनिका बहन समझकर तुम्हारी पूरी मदद करेगी।
0: मोनिका की जुबानी ये सब सुनकर सुनीता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाती है। तेज रफ्तार से अपनी कार चलाते हुए उसे पता चलता है,
2: हे भगवान, उसे तो गाड़ी की ब्रेक निकाल दी है, वो मुझे मार डालना चाहता है।
0: सुनीता की कार पहाड़ी से नीचे दरिया में गिर जाती है। पुलिस को लगता है कि सुनीता मर चुकी है, लेकिन राजन को यकीन नहीं होता।
4: मिस्टर राजन, जरा सोचिए, गाड़ी 1000 फीट ऊंची पहाड़ी से नीचे दरिया में गिरी है, हो सकता है कि गाड़ी गिरने से पहले वो बाहर कूद गई हो। मेरे आदमी ने सारा इलाका छान मारा लेकिन उसके जिंदा होने का कोई सबूत नहीं।
5: लेकिन उसकी लाश भी तो नहीं मिली इंस्पेक्टर साहब।
4: लाश दरिया में बह सकती है, किसी चट्टान के नीचे दब भी सकती है। 2 घंटे से गोताखोर दरिया में तलाश कर रहे मगर कुछ नहीं मिला,
5: इसलिए तो मेरा दिल कहता है कि वो जिंदा भी हो सकती है। मुझे पूरा यकीन है कि वो जिंदा है, आप उसे भूल सकते हैं लेकिन मैं मरते दम तक उसकी खोज करता रहूंगा।
0: सुनीता वास्तव में जिंदा थी और उनकी सारी बातें सुन भी रही थी। अब सुनीता अपनी जान बचाने देहाती लड़की का रूप बदलकर बंजारों के एक ऐसे कारवां में पहुंच जाती है जिसका सरदार मीठालाल तोता अपनी बेटी निशा के साथ शहर शहर घूमकर अपने शो दिखाता है। कहानी के मुख्य किरदार मोहन ने इन बंजारों को अपनी सजी धजी लॉरी जिसका नाम तूफान मेल है किराए पर दे रखी है, जिसे वो अपने साथी जॉनी के साथ चलाता है। मोहन उनके शो में हिस्सा भी लेता है।
6: हम

सरदार की बेटी निशा मोहन पर दिलो जान से फिदा है, उसे हर वक्त रिझाने की कोशिश करती रहती है।

0: पर दिल से प्यारे।
1: मोहन को बंजारन निशा से कोई लगाव नहीं है। वो एक पढ़ा लिखा नौजवान है जो किसी पढ़ी लिखी लड़की को अपना हम सफर बनाना चाहता है। एक दिन जब वो अपने साथी जॉनी के साथ बैठा भोजन कर रहा था, तभी नाटकीय अंदाज में उसकी सुनीता से मुलाकात होती है।
2: कल क्योरी चोटी कहीं थी, मेरा खाना चुरा रही है। शेम नॉट कमिंग यू मी है। अरे मुंह क्या देख रही है, तेरे फादर का खाना है ये है? बोल।
3: मुझे मुझे बहुत भूख लगी थी।
2: भूख लगी की बच्ची? मैम साहब आई एम बहुत बहुत सॉरी। अच्छा बाबा खा लो खा लो।
3: नहीं मेरा पेट भर गया।
2: क्या नाम है तुम्हारा?
3: नाम सोनी।
2: सोनी घर से भागी हुई लगती है। हाँ क्यों?
3: मेरे माता पिता नहीं है, वो मेरे चाचा है ना, मेरी सगाई एक बूढ़े के साथ करना चाहते थे।
2: What? अच्छा क्यों जो घर से भाग गई, मगर अब जाओगी कहाँ?
3: मुझे बम्बई जाना है।
2: बम्बई? उधर जाकर क्या करूंगी?
3: वहाँ मेरा एक सगा वाला है, वो मुझे नौकरी दिला देगा।
2: वेरी वेल, हम तुमको मुंबई पहुंचाएगा। जॉनी गाड़ी का हैंडल मारो, मैम साहब को मुंबई पहुंचाना है। कमान बेबी बेबी कमान, चलो गाड़ी स्टार्ट करेगा।

0: मेम साहब बंबई आ गया।
1: सुनीता बंबई पहुंच जाती है, वहां पर कैबरे डांसर मोनिका से मिलने जाती है।

0: सुनीता मोनिका की मदद लेकर राजन को कानून के हवाले करना चाहती है, लेकिन इसी बीच एक नई बात खुल जाती है।
1: नौकरी इतना फूल प्रूफ ड्रामा बनाया था उसे फांसने के लिए, मगर वो गाड़ी से कूदकर बच गई।
2: लेकिन बच के जाएगी कहाँ? सब जानते हैं कि वो पागल है।
1: हो सकता है कोई उसकी बातों को सच मान ले। और
2: बस एक ही आदमी का डर है।
1: कौन?
2: सेठ मोहनदास का दोस्त करमचंद। वो सुनीता के लिए अपनी जान तक दे सकता है, मगर वो यूरोप गया हुआ है। 25 दिसंबर को बैंगलोर पहुंचेगा। 2 महीने तक सुनीता कहां तक छुपेगी? हर जगह मेरे आदमी उसकी खोज कर रहे हैं।
1: हो सकता है वो मुझसे मिलने आए।
2: जरूर आएंगी, इसीलिए मेरे आदमी तुम्हारे घर पे उसकी राह देख रहे हैं।
1: घर? लेकिन वो यहाँ भी आ सकती है।
2: यहाँ आई तो बड़ी आसानी से पकड़ी जाएगी।
0: राजन और मोनिका की बातें सुनकर सुनीता और भी परेशान हो जाती है। अब उसे अपने पिता के पुराने मैनेजर करमचंद के अलावा कोई और सच्चा हमदर्द दिखाई नहीं देता।
3: अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो इतना याद रखना, करमचंद ने तुम्हारा नमक खाया है, वो अपना खून बहा के भी नमक का हक अदा करेगा।
4: तुम्हारे पिता के खून का बदला अगर कोई ले सकता है तो वो है करमचंद। तुम्हें बेंगलोर जाना होगा सुनीता, और बेंगलोर पहुंचने का एक ही रास्ता है। मोहन ने कहा था उसकी ये लॉरी किसी कारवां के साथ बेंगलोर जा रही है। अगर मोहन राजी हो जाए तो तुम करमचंद तक बड़े आराम से पहुंच सकती हो।
0: वो बेंगलोर जाने का फैसला करती है। मोहन की लॉरी में छुपकर वापस कारवां में आ जाती है, लेकिन मोहन का छोटा भाई मोंटो उसे देख लेता है।
5: तुम बहुत अच्छे हो मोंटो, तुम भी तो बहुत अच्छी हो सोनी। तुम्हारे भैया रात में तो नहीं आएंगे ना?
6: नहीं नहीं, वो तो सुबह आएंगे। अच्छा चलो सो जाते हैं।
7: अरे बाप रे बाप, भैया
1: पकड़े गए।
8: क्या कर रही है?
9: अगर किसी ने भी हाथ लगाया तो मैं उसकी आंख फोड़ दूंगा।
10: मोहन ये क्या कर रहा है? कौन इधर?
11: तोता अंकल, ये गांव वाली है, इसका चाचा इसकी जबरदस्ती शादी किसी बूढ़े के साथ करना चाहता था। घर से भागी हुई है, मुझे बोली बंबई तक छोड़ दे। तुझे तो बंबई छोड़ के आया, क्या कैसे आ गई?
1: वो बंबई के लोग बहुत खराब है बाबूजी। मेरे मामा बंगलोर में रहते हैं, मुझे वहां पहुंचा दो।
11: लो सुन लो, अरे हमारे कारवां को बेंगलोर पहुंचते पहुंचते 2 महीने लग जाएंगे। 2 महीने तक खिलाएगा कौन? हाँ
1: मुझे नौकर रख लो, मैं तुम्हारा सब काम कर दूंगी।
9: हाँ भैया, ये हमारा खाना पका देगी। क्यों सोनी, पकाएगी ना? बोल सोनी।
1: हाँ जरूर पका दूंगी, मुझे बहुत अच्छा खाना पकाना आता है। बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार।
0: सुनीता कारवां में शामिल

हो गई, लेकिन उसे खाना पकाते नहीं आता। उधर नौटंकी में निशा और मोहन का नाच गाना शुरू हो जाता है।

0: नौटंकी के बाद सरदार और सरदारनी में खाने को लेकर झगड़ा हो जाता है।
1: दीवानी पूरी हांडी जला के रख दी।
2: ये कैसे हो सकता है?
1: देख हंदी, ये क्या
2: है?
1: हाँ, एकदम काली पतीली। मैं पूछता हूँ क्या किया तूने?
2: हैरान, ये कैसे हो सकता है?
1: कैसे हुआ?
2: पूरी चोटी बदमाश, बोल। मेरी पतीलियाँ उठाकर यहाँ ले आई और अपनी जली हुई पतीलियाँ उठाकर मेरा रख दी। बोल कलमुनी,
1: क्या बक रही है?
2: मैं बक नहीं रही, मैं सच कह रही हूँ। देखो देखो, ये अपना ही बर्तन है। देखो
3: सोनी, क्या ये सच है?
4: मोहन सेठ, सोनी का कोई मिस्टेक नहीं। सोनी के बदले अपन खाना बनाने को बैठा, नशे की धुनकी में अपन सो गया और खाना जल गया। ये खाने के बर्तन भी अपन ने बदले किया।
3: अच्छा, तो खाने की चोरी तूने की है जॉनी?
2: हाँ? नहीं भैया, नहीं, जॉनी अंकल ने कुछ नहीं किया। मैं कसम खाकर कहता हूँ, बर्तन मैंने बदले हैं।
3: तूने?
2: हाँ मैंने।
3: तुझे इसकी पूरी सजा मिलेगी।
5: मैंने कुछ नहीं किया। अगर मुझे बचाने के लिए ऐसा कह रहे हैं, सारा दोष मेरा है।
1: जब से तू आई है मेरा दोस्त झूठ बोलने लगा, मेरा अपना भाई झूठ बोल रहा है।
4: तुझ जैसे चमत्कार वालों की यहाँ कोई जगह नहीं।
0: उधर सुनीता की जिंदगी में ये सब हो रहा था। वो जंगल में भटक रही थी और सुनीता को पकड़ने के लिए राजन बंबई से बेंगलोर तक अपने आदमियों का पूरा जाल बिछा देता है। और यहाँ कारवां में मोहन और जॉनी के बीच जज्बाती टकराव हो जाता है।
6: अरे मोहन सेठ, अपने लिए तो सभी जीते हैं। आदमी वो है जो दूसरों के दुख बांटे, कभी दूसरों के भी काम आए। उसने इतना ही बोला था ना कि मेरे को बेंगलोर पहुंचा दो, और तूने क्या किया, कुत्ते की तरह धुतकार के उसे निकाल दिया। तेरा पत्थर माफी दिले अपन को नहीं मालूम था, तू आदमी नहीं जनावर है। जनावर जानी मार देना मेरे मुंह पर लाफा। सच्ची बात बोलने में तो जानी भगवान से भी नहीं डरता।
0: इसके बाद मोहन को अपने किए पर बहुत अफसोस होता है और वो सुनीता को जंगल से वापस ले आता है।
3: तो तेरी सुनी आ गई।
5: सॉरी।
0: लेकिन बंजारन निशा ये बर्दाश्त नहीं कर पाती।
7: क्यों रे, तूने मुझे धोखा दिया ना। मुझसे बोला कि नकदी पे आ और गया अपनी चहेती को लाने। बोल, बोलता क्यों नहीं कि तुझसे मरता है?
6: हाँ हाँ मरता हूँ, कर ले जो करना।
3: संभाल के रखना अपना ये खिलौना, और अच्छी तरह सुन। सोनी मेरी प्रेमिका है, मेरी होने वाली पत्नी। फिर कभी सोनी पर हाथ उठाया तो इसी खंजर से मैं तेरा सिर चीर के रखूंगा, समझी?
0: मोहन, सोनी

0: यानी सुनीता को अपनी जीवन साथी बनाना चाहता है, लेकिन वो इनकार कर देती है। मोहन शराब के नशे में डूब जाता है, तो ऐसे में निशा उसके पास आ जाती है।
1: जानती हो निशा, सब लोग मुझे पागल समझते हैं, लेकिन मैं पागल नहीं, तुम सब लोग पागल हो। तो मुझसे प्यार करती है ना, मुझसे शादी करना चाहती है ना? ओके, मैं तुझसे शादी करूंगा।
2: मंजूर।
1: तो फिर पिला अपने हाथ से।
2: ये ले।
1: पहले तो इसे कहते हैं मोहब्बत। निशा, दिखा दे दुनिया वालों को कि मोहब्बत क्या होती है।
0: निशा खुशी से झूम उठती है।

0: मोहन की जिंदगी में आने वाला ये एक जज्बाती लम्हा है। वो दिल से सुनीता को भुला नहीं पाता। वो नशे में चूर शराब के अड्डे में है कि कारवां उसे छोड़कर आगे चल पड़ता है।
1: क्यों बोला? कहा मोहन? एकदम नशे में धुत। मैं साथ चलने को बोला तो मुझे धक्के मार के भगा दिए। वो नहीं आएंगे काका, हम भी और इंतजार नहीं करेंगे। सब लोग गाड़ी में बैठो। सारा, तुम मंटू को अपनी गाड़ी में बिठा ले, हम इसे बेंगलोर इस्तीमा के बाद छोड़ दें।
2: अच्छा चलो मंटू।
0: लेकिन जब मोहन नजरें उठाता है तो सुनीता उसके सामने खड़ी है।
3: कार वहां जा चुका है, तुम यहां क्या कर रही हो?
2: समझने की बात है।
3: समझा, मेरा एहसान चुका रही?
2: नहीं, तुम्हें तबाही के रास्ते से रोक रही हूं। तुम शराब नहीं पियोगे।
3: तुम ये दिखाना चाह रही हो कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं, तो मेरा बहुत ख्याल।
2: हाँ है।
3: झूठी, एकदम झूठी।
2: मैं झूठी नहीं हूँ मोहन, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे सकती हूँ। क्या करूँ जो तुम्हें यकीन आ जाए? मैं दिखावा नहीं कर रही हूँ।
3: मेरे लिए शराब पी सकती हो?
2: इंसान की जिंदगी में बहुत सी परेशानियां आती हैं, बड़ी बड़ी मायूसियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आदमी दीवाना नहीं हो जाता, परसों के रिश्ते नहीं तोड़ देता। मैं गलत कह रही हूँ? जवाब दो।
3: हाँ?
2: चलो माना मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम आपस से बाहर हो जाओ, साथियों के साथ झगड़ा करो, छोटे छोटे छोटे भाई के साथ जल्लाद की तरह पेश हो। मैं गलत कह रही हूँ? बोलो बोलो ना।
3: हाँ, हाँ, हाँ।
2: हे, क्या कर रहे हो? कल से आज तक तुमने जो जो जो जो जो जो कुछ भी किया है, इट इज सिंपली डिस्गस्टिंग। आई कांट इमेजिन अ मैन, स्पेशली अ मैन बिहेविंग इन सच अ सेंटिमेंटल वे एंड शोइंग हिज ग्रीफ बाय बीइंग इरैशनल, इररिस्पांसिबल एंड तुम समझते थे मैं गांव वाली अनपढ़ हूँ? अरे मिस्टर, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, इतनी पढ़ी लिखी हूँ, तुम्हें पढ़ा सकती। मैं जो हूँ तुम्हें पता चल चुका है, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम कि तुम मेरी नजरों में क्या हो। तुम जैसा ना मेरे जीवन में आया है ना आएगा, मैं तुमसे तुमसे दिलो जान से प्यार करती हूँ।

0: नहीं नहीं
1: ये सच है मोहन, सच है, मैं तुम्हारी।
0: तो तु, तु, तु, तु, तु, तुम मुझसे शादी करोगी? कसम खाओ।
1: तुम्हारी कसम?
0: ओह ओह, लेकिन हम हमारे यहाँ तो शादी की बातचीत दुल्हा दुल्हन का मुंह मीठा करके पक्की की जाती है।
1: मीठा हो गया।

0: मोहन और सुनीता फिर से कारवां में शामिल हो जाते हैं। इसी दौरान सरदार को एक शो करने का ऑफर मिलता है।
1: सुन मोहन सुन, अरे आज सुबह पूना से एक थिएटर का बहुत बड़ा धनी आया, वो पूना के बहुत बड़े थिएटर में हमारा तमाशा करा रहा है।
2: थिएटर में?
1: अरे हाँ, 200 रुपए पेशगी दे गया है।
2: अच्छा।
1: और 800 रुपए तमाशे के बाद देगा। बस हमारा कारवां चला।
3: बुर्रा हा!

0: कारवां तो आगे बढ़ता है, लेकिन निशा नाचने पर राजी नहीं होती। साफ साफ कह देती है कि सुनीता जब तक कारवां से निकाली नहीं जाएगी वो नहीं नाचेगी। इस बात पर मोहन को गुस्सा आ जाता है और वो सुनीता को शो में नचाने का फैसला करता है।
1: जल्दी से कोई गाना
2: मुझे नहीं आता।

0: इस गाने में सब पर मोहन और सुनीता की चाहत का राज खुल जाता है। निशा के गुस्से का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता और उसकी अपने सरदार पिता से एक जज्बाती तकरार हो जाती है।
1: निशा, अगर तू चाहे तो मोहन से मैं तेरी शादी करा सकता हूँ।
2: कैसे?
3: इसका काटा पानी नहीं मांगता।
1: सोनी मर जाएगी और मोहन तेरा हो जाएगा, मगर उसके बाद मोहन एक हंसता गाता इंसान नहीं होगा, बल्कि चलती फिरती लाश। सोनी को तो एक बार सांप कसेगा, लेकिन जब मोहन दीवारों के साथ सर टकराएगा और दीवानों की तरह कपड़े फाड़कर सोनी सोनी पुकारेगा, तो तुझे हर घड़ी हर पल एक नहीं हजारों सांप कसेंगे। निशा, बंजारों की तो रीत है कि जिसे चाहते हैं उस पर अपनी जान निछावर कर देते हैं, और तू मोहन की खुशी खातिर अपने प्यार की भेंट नहीं दे सकती, और फिर भी दावा है प्यार का।
0: निशा का दिल बदल जाता है और वो न सिर्फ अपने हाथ से सुनीता को दुल्हन बनाना चाहती है, बल्कि मोहन की जान बचाते हुए राजन की गोली से मारी भी जाती है।
4: अच्छा सुनीता, अब मुझे भी इजाजत दो।
2: तुम भी चले जाओगे?
4: हाँ सुनीता, मेरी जगह यहाँ नहीं। सुनीता, मेरा ठिकाना वही है, उन्हीं गरीब बंजारों के साथ, उसी लूटे हुए कारवां के साथ।

0: नाचते गाते झूमते गोरिया के देश से ये था मधुर संगीत के साथ शानदार कहानी का जबरदस्त कारवां। एक ही फिल्म से कार्यक्रम में फिल्म कारवां का सफर आपने तय किया अपने दोस्त मनीष शर्मा के साथ। सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा। नमस्कार।
1: कितना प्यारा वादा है इन मतवाली आँखों का, इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल।
2: आप सुन रहे थे एक ही फिल्म से कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। समाचार प्रभात कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस से जुड़े बैंक खातों में

0: वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में कोलकाता में कई स्थानों पर छापेमारी की। होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमलों के बाद अमरीका ने ईरान पर हमले किए, ईरानी तेल पर प्रतिबंधों में छूट भी वापस ली। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवाद से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोयो सुबियांतो के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत नामित आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। एक रिपोर्ट।
1: दोनों नेताओं ने आतंकवाद और अक्सर उग्रवाद की रोकथाम और इसका मुकाबला करने में सहयोग को और गहरा करने पर सहमति व्यक्त की। इसमें आतंकवाद के वित्त पोषण पर अंकुश लगाने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धन शोधन विरोधी और आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने वाले मानकों के कार्यान्वयन को मजबूत करने, आतंकवादी समूह द्वारा उभरती प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग को रोकने और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नफरत फैलाने से निपटने के उपाय शामिल है। उन्होंने आतंकवाद विरोधी सहयोग समझौता ज्ञापन के शीघ्र संपन्न होने का भी स्वागत की। इस पर जल्दी हस्ताक्षर होने का उम्मीद है। दोनों देश ने आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराधी का रोकथाम, साइबर सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा उद्योग, समुद्र सुरक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में दोनों नेताओं ने विकसित भारत 2047 विजन और सहयोग बढ़ाने के लिए तीसरे भारत इंडोनेशिया सुरक्षा संवाद का स्वागत किया। इंडोनेशिया के इंडोनेशिया इमास 2045 एजेंडा के बीच समानताओं का भी उल्लेख किया। बंदास गुप्ता, जकार्ता, इंडोनेशिया।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। जकार्ता में इंडोनेशिया के सांसदों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने साझा सभ्यतागत विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि भारत इंडोनेशिया के साथ लोकतांत्रिक संबंध मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने भारत की विकास यात्रा और 2047 तक विकसित भारत तथा 2045 तक स्वर्णिम इंडोनेशिया की परिकल्पनाओं के बीच तालमेल का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने व्यापार, निवेश, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने का भी आह्वान किया।
2: यहाँ इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। हम दुनिया की सबसे यूथफुल सोसाइटीज हैं। हम दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है। हम दोनों मेजर मैरिटाइम पावर्स हैं। हम ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्याकार्ता में प्रम्बानन मंदिर का दौरा करेंगे। 9वीं शताब्दी में निर्मित प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है और दक्षिण पूर्व एशिया की उत्कृष्ट स्थापत्य कलाकृतियों में से एक है। मूल रूप से इस परिसर में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित 240 छोटे छोटे मंदिर हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री अपनी तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने तीन दिन के दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रवासी भारतीयों की एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री माननीय एंथनी अल्बनीज के बीच होने वाली द्विपक्षीय वार्ता से दोनों देशों के संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक सहयोग जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की संभावना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2025 में 33 अरब अमरीकी डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। अब दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए दोनों देशों की साझेदारी अब डिजिटल और उभरती प्रौद्योगिकियों पर भी केंद्रित हो रही है। इसका प्रमुख उदाहरण एयरट्रक द्वारा भारत में AI तैयार डेटा सेंटरों के विकास के लिए

0: 20 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता है। वहीं 4.5 अरब अमरीकी डॉलर की प्रोजेक्ट सेरेस उर्वरक परियोजना मेक इन इंडिया और मेक इन ऑस्ट्रेलिया के सफल तालमेल का सशक्त उदाहरण है। मेलबर्न से सुहास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नवीन सक्सेना।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के विभिन्न क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए कल उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में ये बैठक सेवा तीर्थ में हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
2: डॉक्टर पीके मिश्रा ने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मॉनसून या विलंबित मॉनसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि पशु चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए जाएं। संवेदनशील जिलों में पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता पर भी श्री मिश्रा ने बल दिया। बैठक के दौरान मौसम विभाग के अधिकारियों ने कल तक जून और जुलाई में हुई कुल वर्षा की जानकारी दी। कृषि मंत्रालय के सचिव ने खरीफ मौसम के दौरान अल नीनो के संभावित प्रभाव से निपटने की तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जिलों में स्थित कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए अल नीनो के जोखिमों के प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की हैं। संवेदनशील राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड कवरेज के लिए अभियान शुरू किए गए हैं और कृषि वित्तीय सेवा और सहकारिता विभागों को समयबद्ध तरीके से अधिकतम लाभ निश्चित करने का सुझाव दिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने लू, उच्च आर्द्रता और डेंगू के प्रकोप की निगरानी के लिए सलाह जारी की है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने चावल, गेहूं और दालों के खुदरा मूल्यों और बफर स्टॉक की पर्याप्तता की स्थिति की जानकारी दी। ग्रामीण विकास विभाग ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन के तहत 1 जुलाई से शुरू किए गए कार्यों की जानकारी दी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से संबंधित वित्तीय लेनदेन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की है। एक रिपोर्ट।
3: प्रवर्तन निदेशालय की शुरुआती जांच के अनुसार संदिग्ध गतिविधियों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के जरिए से 1.5 करोड़ रुपए से अधिक का हस्तांतरण किया गया। ईडी ने बताया कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच तृणमूल कांग्रेस के खातों से निजी विमानन कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई को लगभग 160 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। निजी कंपनी ने 2023 से इस वर्ष के बीच एक अन्य नवगठित संबद्ध इकाई को 82 करोड़ से अधिक का हस्तांतरण भी किया। ईडी ने कहा कि एम्ब्रियर लेगेसी 600 विमान और अगस्ता 109 SP हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए निजी कंपनी की एक संबद्ध इकाई को बड़ी राशि हस्तांतरित की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन खरीदों के लिए 112 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ईडी ने आरोप लगाया कि अगस्ता हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए कुछ विदेशी धन का भी उपयोग किया गया, जबकि अधिकांश धनराशि सीधे तृणमूल कांग्रेस के खातों से प्राप्त की गई। मामले की जांच जारी है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: अमरीका ने ईरान पर फिर हमले किए हैं। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में 3 व्यापारिक जहाजों पर ईरान की कार्रवाई के बाद किए गए। अमरीका ने कहा कि होर्मुज में ईरान का वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने के बाद ये हमले किए गए हैं।
4: अमरीका के एक अधिकारी ने बताया कि अमरीका की सेना ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय निगरानी प्रणालियों, मिसाइलों और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों को भी निशाना बना रही है। ईरान में बंदरगाह सुविधाओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के उपविदेश मंत्री काजिम गरीब आबादी ने कहा कि अमरीका के ये ताजा हमले समझौते का उल्लंघन है। अमरीका ने शत्रुता समाप्त करने के लिए हुए अंतरिम समझौते के तहत ईरानी तेल की बिक्री

0: को अधिकृत करने वाला लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि लाइसेंस इसलिए रद्द किया गया क्योंकि हॉर्मुज में ईरान की कार्यवाही अस्वीकार्य थी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने लाइसेंस रद्द करने के अमेरिका के कदम की निंदा करते हुए कहा कि यह अंतरिम समझौते का उल्लंघन है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अतिरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सके। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। अंतिम 16 के एक अन्य मैच में अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हरा दिया। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में पहुंचने की संभावना व्यक्त की है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया की संसद में संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता के अनुसार विकास का मार्ग अपनाता है भारत, विस्तारवाद का नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, इंडोनेशिया के तर्कश में सजेंगे भारत के अस्त्र, ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलें खरीदने का समझौता हुआ। देशबंधु के अनुसार मोदी को मिला इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान। हिंदुस्तान ने साख का सवाल शीर्षक से संपादकीय में दिया है कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्र की विदाई देर से ही सही, पर एक दुरुस्त फैसला है। जो घटित हो चुका है उसका फैसला अब कानून और अदालत को करना है, मगर जो आगत है उसे निष्कलुष रखने का दायित्व ट्रस्ट के कंधों पर ही रहेगा। दैनिक जागरण का शीर्षक है, अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाकों के 38 दोषियों की मौत की सजा बरकरार, गुजरात हाईकोर्ट ने विशेष कोर्ट का फैसला सही ठहराया, उम्र कैद पाए दोषियों को भी राहत नहीं। पंजाब केसरी के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह ने किया 70 लाख पौधारोपण का आगाज, दिल्ली बनेगी और हरी भरी, 300 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत गृह मंत्री ने किया दिल्ली रिज के पुनर्जीवन का शुभारंभ। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, क्रायोजेनिक इंजन का इसरो ने सफल परीक्षण किया, गगनयान में भी होगा इस्तेमाल। परीक्षण का उद्देश्य इंजन की उड़ान के लिए पूरी तरह तैयारी का पता लगाना था। अमर उजाला की सुर्खी है, भारी बारिश, दिल्ली जयपुर हाईवे पर सड़क धंसी, 12 किलोमीटर तक लंबा जाम, दोपहर 11:30 बजे 47.5 डिग्री जैसी तपिश। आसमान से राहत बरसते ही शिमला की तरह सुहानी होती गई दिल्ली की शाम।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं FM खंडवा 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। निमाड़ी लोक संगीत में आज कलाकार हैं अशोक कुमार कनाडे और साथी।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: पीछे निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।
2: और निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा से इस समय आप सुन रहे हैं अशोक कुमार कनाडे और साथियों के गाए लोकगीत।
3: हो

0: अशोक कुमार कनाडे और साथियों के गाए निमाड़ी लोकगीत अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम है आपकी मीत, ये गीत बस कुछ ही पलों में।
1: ये है निमाड़ की सुरीली धड़कन
2: आकाशवाणी खंडवा।

आपके मीत ये गीत। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को रेडियो मित्र मनीष शर्मा का नमस्कार।

श्रोताओ, आज दो फिल्मी हस्तियों का जन्मदिन है, एक अभिनेत्री नीतू सिंह और दूसरे अभिनेता और निर्माता अतुल अग्निहोत्री। कार्यक्रम का पहला गीत नीतू सिंह अभिनीत फिल्म से हम ले रहे हैं, फरमाइश आप सभी की। सिंधी बुजुर्ग से किशोर भटकर, शुभम और पुन्नु भटकर, महसूल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन, इशरत वसीम, रुबीना आरिज, नदीम शमीम, ममता रानी और पूनम कुमारी शर्मा, कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ और निकात परवीन, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश, प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा से आनंद जोशी, तनुजा ध्रुवी और फाल्गुनी जोशी, पालदाना का इंदौर से हसीना मंसूरी, अमीना और मोहम्मद रफी मंसूरी, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता किसु तासु, अर्णवानंद और सत्यमानंद, बोहड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना और गुड्डी भगत, बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना आशीष राजा, चैतन्य मस्किन चंडीगढ़ से राहुल रचिता और केशु खुराना, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां, मजनू कटिल्ला से कमल बालूजा, मधु और सागर बालूजा, सतना से उमंग मलिक, आकांक्षा और माही मलिक, बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मारकंडे, संजय मारकंडे और बेबी किट्टू, जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना आदिश कुमार।

0: और वसुधा वज्रसेन। मोरटक्का माफी जिला खंडवा से किसान श्रोता है जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम ज्योति शुभम, देवी किशन, भावना मनमानस और कनिका पटेल। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सनमति पंचोलिया। कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे, संचित प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख और सर्वद और सानवी देशमुख, कल्पना देशमुख। अस्तपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया मोहम्मद सादिक अंसारी। बहादुरगंज गाजीपुर से आज़ाद अली अनवर, रिजवाना और अब्दुल्ला आज़ाद। ताज मंजिल लकड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिब, मोइन छोटू पवार और मोहम्मद हसनैन पवार, हसीना पवार, अलमाज बानू और सबीना जहीर पवार, कौसर पवार। बाजार चौक ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े, वनिता और वामिका गंगराड़े। रायगढ़ छत्तीसगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र कुमार, बेबी जोई, यामिनी और उमा तिवारी। नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल कफार डावर, अब्दुल हक कजिया उलहक डावर। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, ग्राम शिरटे सांगली से हनुमंत शिंदे और ऋषिकेश शिंदे। शाहजी नगर देंगलूर जिला नांदेड़ से संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे। दहीगांव नांदूरा से धोंडू भातुरकर, मंगला भातुरकर, विवेक कुमार, भारती प्रतीक्षा, कोमल समाधान भातुरकर। काटा रोड वाशिम से विट्ठल सुरोशे, सुषमा परिधि और मायरा सुरोशे। नेहरू चौक पैठण से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनिता आरती, पूजा प्रसाद, सोनल सिया जाधव। अड़ार नांदघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी राहुल और गोपी वर्मा। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंदर सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा। मित्रनगर बीड़ से विकास बंसोड़े, रेखा अदिति और वैभव शिंदे। शास्त्री नगर बीड़ से किशन सपकाल, आशा सोनिया, विशाल सपकाल। बाजार रोड मुंगिसारपुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। ग्राम जसवाड़ी से दुर्गेश नागनपुरे, सूरज कुमार ढाक से। एकता कॉलोनी रोहतक से बबीता बोर्ड, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोर्ड। माता चौक खंडवा से राजेंद्र कटारे, अनिता उदय उज्जवल और मितांश कटारे। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म दीवार में किशोर कुमार और आशा भोसले को, गीतकार साहिर, संगीतकार राहुल देव बर्मन।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

कार्यक्रम आपके मीते गीत का अगला गीत नीतू सिंह अभिनीत एक और फिल्म से हम ले रहे हैं। फरमाइशी खत हमें मिले हैं कवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण शिमाली, मीना शिमाली, आदित्य अदिति और शिवानी शिमाली, साथी मीनूराज शिमाली, भीकनगांव से संतोष सातले, चंदन सारिका, रोहित शुभम, शैलेंद्र और कंचन सातले, वैष्णव कॉलोनी सनावा से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा, मोहम्मद अलतमस खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री, निम्भोरा महाराष्ट्र से बबन राव जोशी, हेमंत जोशी, मनीषा अभिजीत, करिश्मा, अशोक देशमुख और आलोक कुलकर्णी, यादव मोहल्ला सनावत से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता और मुस्कान मालाकार, ग्राम रतनपुर झिरन्या से भागीरथ नायक, जितेंद्र, सुभाष, रविंद्र, शिवानी, अश्विनी, हर्षराज, अरविंद, आदित्य और गुनगुन, दुर्गा चौक जूनापानी सनावत से कालू सिंह बड़ोले, सीताराम बड़ोले, हीरा लाल, तेर सिंह डावर, साहिल, हरिओम, विशाल, सुमन, रमा और कंचन, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टी डी मल्होत्रा, प्रतीक, ऋतिक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज, बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्ला अंसारी, सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, जेल रोड बक्सर से नरेंद्र कुमार यादव, मुस्तफाबाद दिल्ली से लाल बाबू दीवाना, धर्मपुरी धार से शेख फहीम मोहम्मद, मोहम्मद तस्लीम शेख, मुजफ्फर, अयान, फैजान, सुमेरा, कशिश और साइमा, सनावत से हुकुमचंद कटारिया, पिंटू सेन, हरिनिवास खेड़े, बाबूलाल चौधरी, कृष्णपाल सिंह चौहान, मिश्रा गोल्डन, दीपक, सचिन, कृष्णा विराज, अर्णव, कृतिका काव्यांशी और प्रभा कटारिया, सनावत से ही योगांश और लक्षिता प्रजापति, झिरन्या रतनपुर से जितेंद्र सिंह गौड़, नरेंद्र सिंह, सचिन, प्रीति, भावना, अंतिम श्रुति, यशराज सिंह गौड़, दिवराज और किट्टू, दरबार कॉलोनी सनावत से किशोर कुमार सावले, रेखा, हिमांशु, अनुराग, सुलोचना और चारुवी सावले, रामगंज खंडवा से विजय महोबिया, कविता, सुदामा, पेंटर बाबू, शिवपुरम कॉलोनी खंडवा से कमला देवी महोबिया, अनाया महोबिया, कुंडलेश्वर वार्ड खंडवा से योगेश गुजराती, रेखा गुजराती और अभय गुजराती। ईमेल हमें मिले हैं कुम्भार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता, अनिकेत, रोहिणी, ऋषिकेश और जीविका दले, साथी सानिका दले, पुनावले पुणे से अजय सोनवणे, करिश्मा, अबिका और विशाखा सोनवणे, किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार और भानुप्रिया, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी, बठेना पाटन जिला दुर्ग से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, रेखा, पार्थ कश्यप, प्रहलाद, राजेंद्र वर्मा, महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से रमेश नाचानी, भारती, विनीत और मिथिल नाचानी, चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की विक्की नानू, रविंद्र रौनक सेन, सिंघार तलाई खंडवा से राधेश्याम यादव, प्रभा यादव, शालिनी, कामेश, भारती और राहुल यादव, तारानगर बड़वाह से भारती को

कुशवाहा, मनीष पार्थ और अनवी कुशवाहा, कोटवा नारायणपुर बाबाबट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित कुमार और हैप्पी राय, दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक, रोशनी और प्रांजल राय, ओंकारेश्वर रोड ग्राम थापना से राजेंद्र सिंह भदौरिया, ज्योति उदयराज सिंह और अश्विन राज सिंह भदौरिया, मलियान सरधना मेरठ से अनिल जैन, संयम मुस्कान और जीव्यम जैन, ऊपर कोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य, उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन अमन और दीपांशु खोरवाल, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव, देवरी भाटापारा से के आर साहू, आकाश, कमलेश, गन्नूलाल रजक, मुरली क्षत्री, करनाल से सुधीर नूतन, इंदौर से अनिल कवचले, सभिया और सुषमा। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर अब सुनते हैं फिल्म अदालत का ये गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने, गीतकार गुलशन बावरा, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

0: आकाशवाणी खंडवा से इस समय आप सुन रहे हैं आपके मीत ये गीत कार्यक्रम।
1: रितेश, तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है?
2: डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्लड भी चढ़ाना पड़ेगा शायद, लेकिन मुझे डर है कि हॉस्पिटल का ब्लड सेफ है या
1: अगर लाइसेंस हॉस्पिटल या लाइसेंस ब्लड बैंक है तो सेफ ही होगा, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन के लिए

0: ब्लड स्टोर करने की अथॉरिटी सिर्फ लाइसेंस ब्लड बैंक और लाइसेंस हॉस्पिटल के पास ही है। और ये भी सुनिश्चित कर लेना कि ब्लड HIV टेस्टेड है या नहीं, क्योंकि असुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन से HIV एड्स जैसे कई बीमारियों की संक्रमण का भी डर रहता है।
1: अच्छा, अब तो मैं लाइसेंस ब्लड बैंक या हॉस्पिटल से ही ब्लड लूंगा।
2: हाँ, और इस बारे में और जानकारी चाहिए हो तो 1097 पर कॉल कर लेना।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: क्या बात है जीजी, नई साड़ी, नए गहने, बड़ी सजी धजी लग रही हो।
5: अरे जीजी, असल में बात ये है, हमारे इनने ना जब से आकाशवाणी खंडवा पे हमारी दुकान का विज्ञापन दिया है ना, तब से हमारी दुकान बहुत चल रही है। मतलब
4: है? ऐसा क्या? अब मैं भी अपने इनको बोलूंगी कि हमारे बिजनेस का विज्ञापन भी आकाशवाणी खंडवा पर दे। पर देंगे कैसे?
5: अरे इसमें क्या है जीजी, बस आकाशवाणी खंडवा जाओ और विज्ञापन दो।
6: सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।
7: फोन करें, गीत सुने।
8: मुझे कुछ कहना है,
9: मुझे भी कुछ कहना है।
7: कहिए अपनी बात, सुनिए अपनी पसंद का फिल्मी गीत। हम रिकॉर्डिंग करेंगे प्रत्येक गुरुवार दिन में 11 बजे से 11:30 बजे तक। टेलीफोन नंबर है 2226063। फोन करें, गीत सुने।
10: मुझे कहना कहना तुझसे है कहना।
7: आइए श्रोताओं, फिलहाल फरमाइशी फिल्मी गीतों का सफर आगे बढ़ाते हैं। आपके मीतिये गीत कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं हमारे कुछ और श्रोताओं की फरमाइश। चांडूर बिस्वा नांदूरा बुल्ढाणा से नारायण भाव खड़ से, रक्षा ललिता संजना गणेश कार्तिक मालती चौधरी स्वाति प्रयाग चौधरी और देविका चौधरी, ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन और कुसुम नेताम, शिवाजीनगर अवडाली देशमुख से राजेश खोबरखेड़े शिवसागर, इंदिराबाई सुनैना खोबरखेड़े, तनुज खाड़वी जलगांव जामुत से राम धाड़े, दीपाली और स्वराज धाड़े, सौराष्ट्र गुजरात से ईमेल किया है जगदीश गुजराती, प्राची और प्रवीण पुजारी ने, जालना से सागर माटोले रेणुका और लक्ष्मी माटोले, शनि मंदिर चौक खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनिता गौरव ईशान कार्तिक सैनी, लक्कड़ बाजार खंडवा से भवानी सिंह बैस, रिया रोहन अंगद ठाकुर, प्रणाम सिटी खंडवा से सुभाष खंडाले, मंदा खंडाले राजेश कुमार, अंजलि पिंटू संदीप और यथार्थ कुमार खंडाले, ग्राम दुल्हापुर मुरादाबाद से मोहम्मद फरमान, सलमान इरफान इसरार और नरगिस खातून, सनावत ग्राम खगवाड़ा से दगलूजी सेन, धर्मेंद्र श्रीराम कलाबाई सावित्री निशा आयुष दीपांशु और आरुष लक्षिता सेन, तखतपुर छत्तीसगढ़ से मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा, जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक स्वाति जायसवाल, गमरिया जमशेदपुर से रोहन और आर्य जायसवाल, दतरेंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि पुष्पेंद्रमणि और नोखेलाल वर्मा, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल सोनू और पप्पी भाटिया, एयरपोर्ट रोड बंद्रनगर इंदौर से नारायण खर्चे, ललिता गणेश कार्तिक परी खर्चे, सनावत जिला खरगोन से अशोक वर्मा, अर्चना अनुज आयुषी रमेश चंद वर्मा, शेख मूसा और राजकुमार बोडाना, सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित रितु और मुकेश जगताप, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा, पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता शशांक सीमा साहू, पद्मा टॉकीज नेपानगर से ईमेल किया है सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर कुशल नीति सुरभि अश्विन मंगलाबेन और राजेंद्र शाह ने, नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल उषा प्रथमेश निवृत्ति क्षित सागर और संजय चौहान, हरियाणा से अंकित कागड़ा मोनी प्रिंस बोर्ड सीताराम और साहिल कागड़ा, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा सीटी दीवाना, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नाहवकर निर्मला और विशाल नाहवकर, बोरखेड़ा पित्रमल उज्जैन से विनोद मूणत नेहा दीपक मयंक मूणत चेतन नाहटा दीक्षा कुश मूणत, दतरेंगी के भागवत वर्मा शांति देवी लीलावती विनीता और रुद्र वर्मा, कुंभार गली कोलगांव से पांडुचंदन उषा प्रतीक्षा प्रथमेश और पांडुरंग कुंभार, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा पूनम विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा, अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक कमल पाठक दीपिका मल्होत्रा गव्या मल्होत्रा

सुच्चा सिंह पाठक, मां नर्मदा श्रोता परिवार शिवकोठी ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर से ईमेल करते हैं। राकेश पप्पू सेन, निशा सपना, ओम सेन और द्वारकीबाई सेन, गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला और विशाल, साथ में निशा। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर आइए सुनते हैं अभिनेता और निर्माता अतुल अग्निहोत्री अभिनीत एक फिल्म का ये गीत। कतिल शिफाई का लिखा ये गीत है, संगीत अनु मलिक का, आवाज कुमार सानू की। फिल्म का नाम है नाराज़।

आपके मीते गीत कार्यक्रम में ये थे आज के फरमाइशी फिल्म गीत। अपने रेडियो मित्र मनीष शर्मा को आप अनुमति दें। नमस्कार।

0: ओए होए, ये है निमाड़ की सुरीली धड़कन। सुनते रहिए आकाशवाणी खंडवा।
1: ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। अब हम अनुप्रसारित करेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक पाठशाला। इस फिल्म का गाना तुलसी कुमार, आकांक्षा लामा और हनीफ शेख की आवाजों में, गीत और संगीत हनीफ शेख का।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय कार्यक्रम जारी है चित्रलोक। अब आइए सुनते हैं रॉय फिल्म का गाना, मीत ब्रदर्स अनजान फिएट और कनिका कपूर की आवाजों में। कुमार के बोल, संगीत है मीत ब्रदर्स अनजान का।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये है सोना महापात्रा की आवाज में फुकरे फिल्म का गाना, मुन्ना धीमान का लिखा हुआ गाना, राम संपत का संगीत।

ब्रेक के बाद अब आपके लिए लेकर आए हैं बैंड बाजा बारात। इस फिल्म का गाना श्रेया घोषाल की आवाज, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और संगीत है सलीम सुलेमान का।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना विशाल मिश्रा की आवाज़ में, राजशेखर के बोल, विशाल मिश्रा का संगीत, फिल्म का नाम एनिमल।

आज के चित्रलोक कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना। सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजें, मयूर पुरी के बोल, संगीत ए आर रहमान का, फिल्म का नाम ब्लू।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

0: दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत। साथियों, आज हम आपके लिए पेश कर रहे हैं कॉमेडी के बादशाह जगदीप पर केंद्रित कार्यक्रम।
1: मेरा नाम भी सूरमा भोपाली, ये भाई नहीं है, समझे?
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा हमने जनाब। हम जानते हैं कि आपका नाम सूरमा भोपाली ये सही नहीं है। हुजूर, हमने तो पहले ही कहा कि कॉमेडी की दुनिया के असली सूरमा जनाब सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी साहब के बारे में आज हम बात करेंगे। जी दोस्तों, यही है जगदीप साहब का असली और पूरा नाम।

29 मार्च 1939 को दतिया में जन्म हुआ जगदीप साहब का। पर्दे पर आकर इन्होंने अपना नाम जगदीप रख लिया और दर्शकों को ठहाके लगाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जगदीप साहब की अपनी जिंदगी की शुरुआत कैसी रही, कैसे दुख दर्द से भरी जिंदगी के बीच भी जिंदा दिली से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते गए, बताएंगे इस गाने के बाद।

कम उम्र थी जगदीप साहब की जबकि देश का विभाजन हुआ। उस समय तक इनके पिता का भी देहांत हो चुका था। देश के हालात बहुत अच्छे नहीं थे, लिहाजा माँ बेटे बम्बई यानी आज की मुंबई आ गए। बहुत छोटी उम्र यानी 6 या 7 साल की उम्र थी। सर पर सिर्फ माँ का साया, भूख, अभाव और गरीबी से जूझता बचपन। उस जद्दोजहद भरी जिंदगी में जगदीप साहब की माँ को एक यतीम खाने में काम मिल गया, जहाँ वो खाना बनाया करती थी। इसी तरह एक तंग बस्ती

0: में जिंदगी बसर हो रही थी। माँ की कोशिश थी कि उनका बेटा पढ़ लिख ले, सो जगदीप साहब को वो स्कूल भी भेजा करती थी।
1: तुम तो बहुत विद्वान हो, इतनी विद्या कहाँ से सीखी?
2: चिंच पोकली दादर लोअर पर्ल यूनिवर्सिटी।
0: इस कम उम्र में भी बालक जगदीप को ये समझ में आ रहा था कि जिंदगी का हर एक दिन गुजारना उसके और उसकी माँ के लिए कितना मुश्किल है। बालक जगदीप बस्ती के दूसरे बच्चों को काम करते देखता तो सोचता कि मैं काम क्यों नहीं कर सकता हूँ। माँ नहीं चाहती थी कि बेटा पढ़ाई छोड़े, लेकिन आखिर जिंदगी की जरूरतों के आगे माँ को भी बालक जगदीप की जिद के आगे झुकना पड़ा। खेलने कूदने की उम्र में बालक जगदीप ने छोटे मोटे काम शुरू कर दिए, कभी क्लीनर, कभी सामान ढोना, कभी पतंग बनाकर बेचा करना। जिन पतंगों को जगदीप बना बना कर बेचा करते थे वो पतंगें आसमान में परवाज भरती थीं। बस उन्हें एक डोर की जरूरत होती थी। जगदीप को क्या पता था कि वो भी एक दिन आसमान की ऊंचाई तक पहुंचने वाले हैं, बहुत ऊंची उड़ान भरने

0: और आखिर वो दिन आ ही गया जब पतंग की डोर की तरह जगदीप की किस्मत की डोर बनकर एक शख्स उसी सड़क पर आया जहां बालक जगदीप काम किया करता था। उसे 5 से 10 साल तक के बच्चों की तलाश थी। जगदीप के पूछने पर उसने बताया कि एक फिल्म में एक सीन में उसे कुछ बच्चों की जरूरत है जहां सिर्फ बैठे रहना है और इसके लिए हर एक बच्चे को रोज के 3 रुपए मिलेंगे। बस फिर क्या था, उस सड़क के बहुत से बच्चों की टोली चल दी शूटिंग के लिए। इसमें बालक जगदीप भी थे। शूटिंग में एक दिन जगदीप को एक डायलॉग बोलने के लिए कहा गया। चूंकि जबान इनकी बड़ी साफ थी, उर्दू बहुत अच्छी बोल लेते थे, लिहाजा डायलॉग बोलने के उन्हें 3 रुपए अलग से मिले। ये काम जगदीप को बहुत भाया। वो फिल्म थी अफसाना, निर्देशक थे बीआर चोपड़ा और इनके सहायक निर्देशक थे यश चोपड़ा। बस यहीं से शुरू हुआ बालक जगदीप का फिल्मी सफर बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट।
1: क्या नाम है तेरा?
2: मुन्ना।
1: और अपना नाम है लक्ष्मण जी, राम जी, हनुमान जी, पोस्टर चिपकाने वाला एंड कंप्लीट, समझा?
0: फिल्म दर फिल्म जगदीप काम कर रहे थे, प्रतिभा निखर रही थी, फिल्म सर्किट में लोग पहचानने भी लगे थे। तभी फणी मजूमदार की फिल्म धोबी डॉक्टर में नायक किशोर कुमार के बचपन की भूमिका निभाने का जगदीप को मौका मिला और इनके अपोजिट थी बालिका आशा पारेख। धोबी डॉक्टर में जगदीप का काम देखकर फिल्मकार बिमल रॉय ने जगदीप को फिल्म 2 बीघा जमीन में काम दे दिया।
3: कन्हैया यार, तू पूरा चपल घंचू, काम से जा रहा तूने टोक दिया।
2: कहाँ जा रहे थे?
3: बगदाद
2: है?
3: अबे यार, बगदाद सिनेमा, रंजन है उसमें।
2: वाह वाह, क्या तलवार चलाता है, सेट सेट सड़ा, क्या जान से मार देता है।
3: हाँ चल, चलता है
2: ना बाबा?
3: अबे चल, मैं दिखाऊंगा, आज जेब गरम है अपनी, सालिम 2 रुपए कमाए। हाँ
2: 2 रुपए इतने कहाँ से मिले?
3: अरे जूता पॉलिश करके, आज एक असली साहब फंसा, ऐसा जूता पॉलिश किया के बेटा कायल हो गया, हैंडशेक करके अंग्रेजी में बोला वेरी गुड फर्स्ट क्लास, और फटाक से 2 रुपए हाथ पर धर दिए।
0: अब तक जगदीप ने जवानी में कदम रख दिया था और फिर हीरो भी बन गए। फिल्म आई भाभी, आज भी लोग याद करते हैं।

0: जगदीप ने हर तरह की फिल्मों में काम किया, हर तरह के किरदार निभाए, लेकिन दर्शकों ने इनके मजाहिया अवतार को बेहद सराहा। फिर जब फिल्म शोले आई तो सूरमा भोपाली ने जगदीप को और जगदीप ने सूरमा भोपाली को तो मानो अमर ही कर दिया।
1: अरे कोशिश, ये थी कोशिश, जान तोड़ कोशिश करी, मगर मैं भागने दूं तब ना, एक को दी मैंने पटखनी के वो लंबू निकला भागने को, मैंने पकड़ के टांग जो खींची है के जाते के नरवा और कस के दो दिए लबाड़े के चलो छाने, बस फिर क्या था, पैर पकड़ लिए दोनों ने।
2: वीरू और जय ने तुम्हारे पैर पकड़ लिए?
1: हाँ हाँ,
2: मैंने तो सुना बड़े बदमाश है वो।
1: अरे बहुत बदमाश है, मगर हमारा नाम भी सूरमा भोपाली ये नहीं है। अब आप समझो कि पैर पका के दोनों रो दिए हैं कि सूरमा भाई माफ कर दो, वो तो मैं माफ कर देता, मगर मुझे इस बात पर गुस्सा कि मेरे इलाके में आ कैसे गए।
3: फिर क्या हुआ?
1: अरे फिर होना क्या था, मैं तो स्टिक रखता हूँ, अब जो मैंने फिन फिनाई है तो जरा सुधाई कर दी, जटा बहुत मारा बहुत मारा।
3: फिर क्या हुआ?
1: बस फिर होना क्या था, मैंने दोनों के पकड़ के गले बांध और मैंने कहा।
3: क्या कहा?
1: क्या कहा? हाँ, क्या कहा मैंने? हाँ, मैंने कहा कि और कोई खिदमत हो मेरे लायक तो आप बताओ मुझे।
0: जगदीप साहब के बेटे जावेद और नावेद भी फिल्मों और टीवी पर सक्रिय हैं। जावेद तो जगदीप साहब की तरह ही हरफन मौला कलाकार हैं, बहुत ही अच्छे डांसर माने जाते हैं। जावेद जाफरी।

जगदीप साहब ने एक बहुत ही लंबी पारी खेली अपने फिल्मी करियर में और अपने सभी सहकर्मियों फिल्मकारों के चहेते बने रहे और दर्शकों के तो आज भी चहेते।

0: करते हैं।
1: देखो हाँ, अब बहुत हो गया, अब तो आप यहाँ से रवानगी डाल दो, वरना मेरा नाम भी सूरमा भोपाली ये भाई नहीं है, समझे?
0: जी हाँ बिल्कुल, आपका हुक्म सर आंखों पर। तो ये था बेहतरीन अदाकार जगदीप पर केंद्रित प्रोग्राम आज के फनकार।
2: अरे हम पंछी एक डाल के, एक डाल के।
0: अपने हिस्से का किरदार निभाकर दुनिया की डाल से उड़ गया ये पंछी। जगदीप साहब भले ही चले गए हों, लेकिन उनका निभाया हर एक किरदार हमारे आसपास हमेशा रहेगा।
2: ओए संग

0: डाल के।
1: शोध, आलेख और स्वर अमरकांत का। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह। प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। अब नमस्ते।
2: आज के फनकार।

0: छाया गीत
1: लग जागने।
0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। जिले की चिट्ठी अब हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे।

भोपाल से प्रस्तुत है दमोह जिले की चिट्ठी। आलेख अनिल जैन, वाचन स्वर दीपा सिंह। दमोह जिले के लिए बीता महीना विकास, संस्कृति, कृषि और जन स्वास्थ्य गतिविधियों पर आधारित समसामयिक रूप से समृद्ध रहा। पिछले दिनों हुई वर्षा के बाद गर्मी के तपन और तेज धूप से अब जिले वासियों को राहत मिली है। बारिश की बूंदों और रिमझिम बारिश ने नदियां, बांध, कुओं में न केवल जल भर दिया है बल्कि चारों तरफ हरियाली हरियाली नजर आने लगी है। पर्यटक प्रकृति की सुंदरता को देखने और लुत्फ उठाने सिंग्रामपुर, सिलापरी, मटककुंड, भदभदा और राजनगर जलाशय सहित जिले की प्रसिद्ध लघु वृहद सिंचाई परियोजनाओं की तरफ रुख कर रहे हैं। मौसम विशेषज्ञ राजेश कपसे ने आगामी समय में जिले में भारी बारिश की संभावना जताई है। जिले में सोयाबीन की बोनी के लिए 10 से 12 जुलाई तक का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। जिन खेतों में पानी भर गया है वहां से जल निकासी कर दें ताकि खेत जल्दी तैयार हो सकें। जिले में खरीफ सीजन की बोनी शुरू हो चुकी है। कृषि विभाग ने इस साल जिले में 3,09,50 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसलों की बोनी की है जो पिछले वर्ष से लगभग 1,000 हेक्टेयर से अधिक है। इसमें धान 80,500 हेक्टेयर, मक्का 40,000 हेक्टेयर, उड़द 60,000 हेक्टेयर और सोयाबीन 1.25 लाख हेक्टेयर में बोई जानी है। खरीफ सीजन के बीच किसानों को राहत देते हुए जिले में 2600 मीट्रिक टन डीएपी की खेप पहुंच गई है। जिले में आई एफको की डीएपी खेप में से 2000 एमटी विपणन संघ, 1200 मीट्रिक टन सहकारी समितियां और 800 एमटी मार्कफेड गोदाम में भेजे गए हैं। वर्तमान में समितियों में 1200 मीट्रिक टन पहुंच चुका है। इसके अलावा 1000 मेट्रिक टन डीएपी मिलने की संभावना है। वहीं 100 एमटी डीएपी पहले से स्टॉक में है। कुल मिलाकर समितियों के पास करीब 2300 मेट्रिक टन डीएपी उपलब्ध होगा। वहीं जिले में करीब 2000 मेट्रिक टन यूरिया की भी स्टॉक मौजूद है। दमोह जिले में साइबर अपराधों के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पिछले दिनों सेफ क्लिक 2.0 साइबर जागरूकता मैराथन का आयोजन किया गया जिसमें सांसद राहुल सिंह लोधी, विधायक दमोह जयंत कुमार मलैया ने भी भाग लिया। मैराथन के माध्यम से ऑनलाइन ठगी, फिशिंग, साइबर फ्रॉड और सोशल मीडिया से जुड़े खतरों के प्रति आमजन को जागरूक करते हुए सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाने का संदेश दिया गया। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत जिले के 256 श्रद्धालु पिछले दिनों हरिद्वार, ऋषिकेश की तीर्थ यात्रा पर रवाना हुए। इस दौरान दमोह रेलवे स्टेशन पर प्रदेश की संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास, धर्म राज्य मंत्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी, पशुपालन और डेयरी विभाग राज्य मंत्री लखन पटेल, दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी और दमोह विधायक जयंत कुमार मलैया ने तीर्थयात्रा ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और सभी श्रद्धालुओं को मंगलमय तथा सुरक्षित यात्रा की शुभकामनाएं दी। कुछ दिनों पहले दमोह नगर के प्रसिद्ध बेलाताल जलाशय में जलगंगा संवर्धन अभियान

0: 2026 का समापन हुआ, जिसमें राज्य मंत्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी और पूर्व कैबिनेट मंत्री रामकृष्ण कुसमारिया और दमोह विधायक जयंत मलैया ने भाग लिया। इसी दौरान मंत्री ने जल संरक्षण और संवर्धन की आमजन को शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में जल संरक्षण जन जन का अभियान बन गया है। आपको बता दें कि सिंचाई परियोजनाओं से न केवल दमोह की तस्वीर बदली है, बल्कि किसानों की आय भी बढ़ी है। प्रदेश भर में 3.62 लाख से अधिक जल संरक्षण कार्य पूरे हुए हैं। 10,514 करोड़ रुपए की लागत से जल संरचनाओं के संरक्षण को नई गति मिली है। दमोह नगर टर्फ हॉकी स्टेडियम में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। स्वस्थ आयु के लिए योग थीम पर सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में पशुपालन, डेयरी राज्य मंत्री लखन पटेल और विधायक जयंत मलैया सहित गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। राज्य मंत्री पटेल ने सभी नागरिकों से योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर स्वस्थ और निरोगी जीवन जीने की अपील की है। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल से प्रसारित प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के लाइव संबोधन को भी उपस्थित जनों द्वारा देखा और सुना गया। जिले में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने जिला अस्पताल में बच्चों को दवाई पिलाकर की। जन्म से लेकर 5 साल तक के बच्चों को दवा पिलाई गई। अभियान के दौरान लक्ष्य पूर्ति के लिए 1339 बूथ बनाए गए थे। दमोह जिले के हटा की धरती पर जन्मे तबला वादक रामेंद्र सिंह सोलंकी का चयन प्रतिष्ठित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार के लिए किया गया है। रामेंद्र सिंह हटा स्थित डाइट में शिक्षक रहे अजय सिंह सोलंकी के सुपुत्र हैं। इन्होंने न केवल अपने देश में बल्कि विदेश में भी न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और दक्षिण कोरिया में तबला वादन की प्रस्तुतियां दी हैं। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे दमोह जिले की चिट्ठी। आलेख अनिल जैन का था और वाचन स्वर दीपा सिंह का। ये प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया गया।
2: जिले की चिट्ठी अभी हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित कर रहे थे। ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। अब प्रस्तुत है नारी जगत कार्यक्रम।

नमस्कार सखियों, स्वागत है आपका अपने मनपसंद कार्यक्रम नारी जगत में और मैं हूं आपकी सखी मीनू जैन। सखियों, आज का युग डिजिटल युग है, जहां इसने काम को आसान किया है वहीं मुश्किलें भी आई हैं। मोबाइल फोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया ने हमारे जीवन को आसान बना दिया है। अब हम घर बैठे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं और दुनिया भर के लोगों से जुड़ सकते हैं। महिलाओं को भी डिजिटल तकनीक ने नए नए अवसर दिए हैं। वे ऑनलाइन व्यवसाय चला रही हैं, घर बैठे काम कर रही हैं और अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने ला रही हैं। लेकिन सखियों, कहते हैं ना, जहां सुविधाएं होती हैं वहां कुछ चुनौतियां भी आती हैं। इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के साथ साइबर अपराधों की घटनाएं भी बढ़ी हैं। महिलाओं को फर्जी प्रोफाइल, ऑनलाइन धोखाधड़ी, साइबर बुलिंग, पहचान की चोरी और सोशल मीडिया पर उत्पीड़न जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए मजबूत पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए। पासवर्ड में अक्षर, अंक और स्पेशल कैरेक्टर जैसे हैश, स्पेस, डॉट शामिल होने चाहिए। एक ही पासवर्ड को सभी अकाउंट्स में उपयोग नहीं करना चाहिए। दूसरी ज़रूरी बात ये है सखियों कि अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे घर का पता, बैंक खाते की जानकारी, OTP या पासवर्ड किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। ये याद रखें, बैंक या कोई भी सरकारी संस्था कभी भी फ़ोन या संदेश के माध्यम से आपका OTP नहीं मांगती। महिलाओं को अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल की गोपनीयता सेटिंग्स पर भी ध्यान देना चाहिए। केवल विश्वसनीय लोगों को ही अपनी निजी जानकारी और तस्वीरें देखने की अनुमति दें। अगर किसी महिला को ऑनलाइन उत्पीड़न, धमकी या गलत मैसेज मिलते हैं तो उसे चुप नहीं रहना चाहिए। ऐसे लोगों को तुरंत ब्लॉक करें, उनके संदेशों का स्क्रीनशॉट सेव रखें और ज़रूरत पड़ने पर साइबर क्राइम पोर्टल या स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं। माता पिता की भी जिम्मेदारी है कि वे अपनी बेटियों को डिजिटल सुरक्षा के बारे में जानकारी दें। बच्चों और किशोरियों को इंटरनेट का सुरक्षित और जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग सिखाना आज समय की आवश्यकता है।

सखियों, डिजिटल साक्षरता सिर्फ तकनीक का उपयोग करना नहीं है, बल्कि उसका सुरक्षित और समझदारी से उपयोग करना भी है। सखियों, जब आप कहीं घूमने जाएं तो तुरंत वहां की फोटोज सोशल मीडिया पर अपडेट नहीं कीजिए, बल्कि कुछ दिनों बाद आप कर सकती हैं। सखियों, जब महिलाएं डिजिटल रूप से सक्रिय और सुरक्षित होगी, तभी वे इंटरनेट और तकनीक के सभी लाभों को पूरा कर पाएंगी। और अब बारी है गीत संगीत की, तो सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: सखियों, हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा उच्च शिक्षा प्राप्त करे और इसलिए वो अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं। इसके लिए कुछ तैयारी भी करनी होती है। अगर आप भी अपने बच्चे को पढ़ने के लिए बाहर भेज रही हैं तो चिंता ना करें, क्योंकि हम इसी विषय पर आपके लिए वार्ता लाए हैं जिसमें हमें जानकारी दे रही है सखी मून चौधरी। तो सुनते हैं ये वार्ता। विषय है बच्चों को बाहर पढ़ने भेजते समय क्या तैयारी करें।
1: नमस्कार सखियों, आज मैं आपको बाहर पढ़ने जाने वाले बच्चों की तैयारी कैसे की जाए इस विषय पर कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रही हूँ। बच्चों को बाहर पढ़ने यानि घर से बाहर स्कूल, कॉलेज या अन्य शैक्षणिक संस्थानों में भेजना आजकल उनके संपूर्ण विकास और कठिन प्रतिस्पर्धा के ज़माने में बहुत ज़रूरी हो गया है। इसके कई फायदे और कारण भी हैं जो आज मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। बच्चों को बाहर भेजने के कारण हैं उनकी सामाजिक विकास। बाहर पढ़ने से बच्चे दूसरों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं और समाज में रहने के ज़रूरी कौशल जैसे आपसी सहयोग, नेतृत्व, सहनशीलता सीखते हैं। बाहर जाकर पढ़ने से बच्चे अनुशासन और समयबद्धता, स्कूल और कॉलेज का एक निश्चय समय होता है जिससे बच्चे समय का महत्व समझते हैं और अनुशासन में रहना सीखते हैं। घर से बाहर निकलने पर बच्चे विभिन्न प्रकार के विचारों, संस्कृतियों और अनुभवों से रूबरू होते हैं जो उनके सोचने का दायरा बढ़ाता है। अध्यापकों और संसाधनों की पहुंच मिलती है। बाहर बड़े शहरों में स्कूलों और कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षक, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं और अन्य शैक्षणिक सुविधाएं होती हैं जो घर पर उपलब्ध नहीं होती। इन्हीं कारणों से बच्चों को बाहर भेजना अत्यंत आवश्यक है। प्रतियोगिता और प्रेरणा। साथियों के साथ पढ़ने से बच्चों में स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना आती है, यानी हेल्दी कॉम्पिटिशन की भावना, जो उन्हें बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करती है। घर से बाहर रहकर पढ़ने से बच्चों में खुद निर्णय लेना और समस्याओं का समाधान करना और आत्मनिर्भर बनना सीखते हैं। बदलाव को स्वीकार करना भी एक महत्वपूर्ण गुण है जो बच्चे बाहर जाकर सीखते हैं। तो पालकों को भी इमोशनल लेटिंग गो करना होता है। ये आसान नहीं होता, पर यह ज़रूरी है ताकि बच्चा खुद निर्णय ले सके। तो इसी प्रकार से ये कुछ ज़रूरी कारण हैं जिसके कारण हम बच्चों को आजकल बाहर भेजना अत्यंत आवश्यक हो गया है जिससे उनका संपूर्ण विकास हो सके। तो आइए आज हमारे अभिभावकों और सखियों को बताएं। बाहर जाने वाले बच्चों की तैयारी आसान नहीं होती, पर हमारी आज की इस वार्ता के बाद आप सभी को मैं ये विश्वास दिलाती हूँ कि बहुत आसान हो जाए।

पाएगी। ये तैयारी आज की नहीं, बचपन से ही की जाने वाली तैयारी होती है, पर हम आज भी कुछ दिनों में अमल करके अपने बच्चों को बाहर जाने के लिए तैयार कर सकते हैं। बाहर जाने वाले बच्चों की तैयारी एक मानसिक, भौतिक और जीवन कुशलताओं की तैयारी होती है। ये तैयारी अगर अच्छे से की जाए तो उनके लिए एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। इसीलिए ये तीन मुख्य क्षेत्र में होनी चाहिए। इसमें सबसे पहले उनकी मानसिक तैयारी आती है, जिसमें मेंटल और इमोशनल दोनों तैयारी होनी चाहिए। खुद पर भरोसा सिखाना, बच्चों को बाहर भेजने के लिए कुछ दिनों या सालों पहले से ही अपने निर्णय लेने की प्रैक्टिस करवाएं। छोटी छोटी चीज़ों का फैसला लेने दें, जैसे क्या पहनना है, कैसे किसी चीज़ को खरीदना, कब पढ़ना आदि के निर्णय लेना सिखाएं। अलग रहने की आदत डालें। उन्हें अल्प समय के लिए रिश्तेदारों के घर भेजना या समा कैंप जैसे अनुभव देना उनकी मदद करेगा। उन्हें ये बताएं कि अगर उन्हें होम सिकनेस यानी घर की याद आने लगे या परेशानी हो तो आपसे बात करना सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। समय का महत्व सिखाएं, टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन सिखाना उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वह अकेले खुद को संभाल सकें। चुनौतियों से लड़ने की तैयारियां करवाएं। उन्हें बताएं कि हर किसी की पसंद या अप्रूवल पाना ज़रूरी नहीं है। अगर किसी ने गलत व्यवहार किया तो कैसे आपसे शेयर करें। उन्हें बताएं, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं और उन्हें लचीलापन, धैर्य और सहनशीलता सिखाएं। सीमाओं की समझ देना, बच्चों को ये समझाना कि आज़ादी का मतलब अनुशासनहीनता नहीं है। उन्हें खुद पर नियंत्रण रखना सिखाएं, रिश्तों को संभालना सिखाएं। बाहर रहकर बच्चों को नए लोगों से मिलना होता है। उन्हें ये सिखाएं कि किससे कैसे व्यवहार करना है और किसी की नेगेटिविटी यानी नकारात्मकता से कैसे बचना है और सकारात्मकता को अपनाना है। उन्हें सिखाएं, दूसरों के दृष्टिकोण को सुनना आना चाहिए और अपने सिद्धांत मूल्यों के साथ हमेशा खड़ा रहना चाहिए। इसमें तीसरे नंबर पर आती है भौतिक या ज़रूरतों की तैयारी। ज़रूरी सामानों की लिस्ट बनाएं, साथ में उन्हें कपड़े, पर्सनल हाइजीन का सामान, बेसिक मेडिसिन किट, स्टेशनरी, सभी डॉक्यूमेंट्स जैसे आईडी प्रूफ, एडमिट कार्ड आदि की पूरी तैयारी करवाएं। डिजिटल सेफ्टी सिखाएं। अगर फ़ोन या इंटरनेट होगा तो उन्हें ऑनलाइन सेफ्टी, साइबर क्राइम और डिजिटल एडिक्शन के बारे में ज़रूर बताएं। बच्चों को प्रैक्टिकल बातें समझाएं। लीगल डॉक्यूमेंट्स सेफ रखना सिखाएं। किसी अनजान व्यक्ति पर तुरंत भरोसा ना करें, आपसे बात करके ही उनकी बातों का जवाब दें। ट्रैवल सेफ्टी सिखाएं। लेट नाइट आउटिंग, पार्टी से बचना सिखाएं। बच्चों के पास हमेशा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिस्ट देना चाहिए। बच्चों को सुरक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य की बात समझाना भी ज़रूरी है, जैसे रेगुलर एक्सरसाइज करना, अच्छा खाना खाना और नींद लेना भी ज़रूरी है। इमरजेंसी सिचुएशंस में जैसे एक्सीडेंट के समय, मेडिकल हेल्प में क्या कैसे करना चाहिए उसका प्लान बना कर दें। उनमें सेल्फ डिपेंडेंसी यानी आत्मनिर्भरता का विकास भी करना चाहिए, जैसे अपना काम खुद करना सिखाएं। बेसिक लाइफ स्किल्स जैसे बेसिक कुकिंग, रोटी बनाना, इसके अलावा कपड़े संभालना, अपना रूम मैनेज करना, रूम की सफाई करना सिखाना भी बहुत उपयोगी है। उन्हें बेसिक रिपेयरिंग्स की आदत भी डालें।

0: नए लोगों से मिलना, टीचर्स से बात करने, हेल्प मांगने का कॉन्फिडेंस डेवलप करना सिखाएं। बच्चों को भाषा और संस्कृति के लिए तैयार करना ज़रूरी है। अगर बच्चा किसी दूसरे देश या राज्य में जा रहा है तो उसकी भाषा और लोकल संस्कृति से परिचित करवाएं। अब ये तो हो गई बच्चों को सिखाने वाली बात। अब कुछ महत्वपूर्ण टिप्स मैं अपनी सखियों और पेरेंट्स के लिए भी देना चाहूँगी। जैसे बच्चों को कंट्रोल ना करें, उन्हें सपोर्ट करें, गाइडेंस दें, उनसे रोज़ बातचीत करें। पालकों को अपने बच्चों के साथ हर दिन या सप्ताह में एक बार या कभी भी वीडियो कॉल या मैसेजेस के ज़रिए बात करते रहना चाहिए। उनके हालचाल पूछें, उन्हें अपने हालचाल बताएं। हाँ, उनसे बात ज़रूर करें, गाइड करें, लेकिन उनकी प्राइवेसी का सम्मान करें। उनकी छोटी छोटी प्रोग्रेस पर भी उन्हें अप्रिशिएट करें। किसी गलती पर डांटने के बजाय उन्हें समझाने की कोशिश करें और उन्हें समझने की भी कोशिश करें। उन्हें यह एहसास दिलाएं कि आप उनके साथ हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। उनके फैसलों पर भरोसा दिखाएं, पर समय समय पर उनका मार्गदर्शन भी करें। उन्हें इमोशनल तौर पर मजबूत बनाएं और स्ट्रेस कैसे संभालें, हर मुश्किल का सामना हिम्मत से करना सिखाएं। हर बात पर शक या टोकने के बजाय उनसे खुला संवाद करें। इन तैयारियों के साथ साथ उन्हें आर्थिक तौर पर भी समझाना ज़रूरी है, जैसे पैसों का सही इस्तेमाल कैसे करें, इसकी ट्रेनिंग दें, बजट बनाना, सेविंग्स करना, फिजूल खर्ची से बचना, इसके अलावा बैंक अकाउंट, एटीएम, ऑनलाइन पेमेंट, इन सब बातों का भी सही इस्तेमाल कैसे करें ये ज़रूर सिखाएं। लॉन्ग टर्म विजन दें। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि बाहर भेजने का उद्देश्य पेरेंट्स का सिर्फ पढ़ाई या नौकरी पर नहीं होना चाहिए। बच्चों को एक उद्देश्यपूर्ण यानि पर्पस ड्रिवन लाइफ जीने के लिए प्रेरित करें। उन्हें ये सिखाएं कि उन्हें जीवन में लक्ष्य के साथ साथ अपने मूल्यों और संस्कृति को हमेशा संभालना है। तो आइए एक भरोसे का रिश्ता स्थापित कर अपने बच्चों को आराम से इन बातों का ध्यान रखकर बाहर भेजें। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, बच्चों को उड़ने दें, लेकिन आकाश का नक्शा थमाकर।
1: बच्चों को बाहर पढ़ने भेजते समय क्या तैयारी करें? अभी हमने सखी मून चौधरी से ये वार्ता सुनी। अच्छी लगी ना आपको? तो फिर पत्र और ईमेल के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। सखियों, बरसात का मौसम किसे अच्छा नहीं लगता। इस मौसम में हर तरफ हरियाली ही नज़र आती है, पेड़ पौधे तेज़ी से बढ़ते हैं। अगर हमारे घर में गृह वाटिका है तो वो भी हरी भरी दिखाई देती है। लेकिन जितना ये मौसम पौधों के लिए अनुकूल होता है, उतनी ही कुछ चुनौतियां भी लेकर आता है। अगर सही समय पर सही देखभाल न की जाए तो पौधों में फफूंद लग सकती है, जड़ें सड़ सकती है और कीटों का प्रकोप भी बढ़ सकता है। इसके लिए सखियों, सबसे पहले जल निकासी का विशेष ध्यान रखें। गमलों या क्यारियों में पानी जमा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो पौधों की जड़ें सड़ सकती है। इसलिए गमलों के नीचे बने छेद खुले रखें। दूसरी है खरपतवार हटाना। सखियों, बारिश में अनचाही घास बहुत तेजी से उगती है। यह पौधों के पोषक तत्व और पानी का हिस्सा ले लेती है, इसलिए समय समय पर खरपतवार निकालते रहें। अब बात करते हैं कीट पतंगों की। वर्षा ऋतु में नमी ज़्यादा होने से फफूंद, सफ़ेद मक्खी और घोंघे जैसे कीट पौधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके लिए नीम के तेल का घोल या दूसरे जैविक उपाय अपनाकर कीटों से बचाव किया जा सकता है। सखियों, छटाई करना भी बहुत ज़रूरी है। सूखी, पीली या रोगग्रस्त

टहनियों और पत्तियों को समय पर काट दें। इससे पौधे स्वस्थ रहते हैं और नई शाखाएं अच्छी तरह निकलती है। सखियों, बारिश के मौसम में पौधों को संतुलित पोषण भी चाहिए। अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या जैविक खाद का सीमित मात्रा का उपयोग करें। बहुत ज़्यादा खाद देने से भी पौधों को नुकसान हो सकता है। अगर तेज़ बारिश हो तो नाजुक पौधों को सुरक्षित स्थान पर रखें या उनके ऊपर जाली का पारदर्शी सीट लगाकर उन्हें तेज़ बारिश से बचाएं। सखियों, इस मौसम में तुलसी, पुदीना, धनिया, पालक, मेथी

हो तो नाजुक पौधों को सुरक्षित स्थान पर रखें या उनके ऊपर जाली का पारदर्शी सीट लगाकर उन्हें तेज बारिश से बचाएं। सखियों, इस मौसम में तुलसी, पुदीना, धनिया, पालक, मेथी, मिर्च और भिंडी जैसी कई सब्जियां और औषधीय पौधे अच्छी तरह विकसित होते हैं। अगर आप कोई नया पौधा लगाना चाहती हैं तो वर्षा ऋतु सबसे अच्छा समय है। सखियों, ग्रह वाटिका केवल घर की सुंदरता ही नहीं बढ़ाती बल्कि हमें ताजी, पौष्टिक और रसायन मुक्त सब्जियां भी देती है। पौधों की थोड़ी सी नियमित देखभाल उन्हें स्वस्थ और हरा भरा बनाए रखती है। इस तरह से कि हम सभी अपने घर के छोटे से बगीचे को संवारें, ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं और प्रकृति के संरक्षण में अपना योगदान दें।

सखियों मौसम है बारिश का, बारिश की हल्की हल्की फुहारें जब चेहरे पर पड़ती है तो कितना अच्छा लगता है। तो चलिए सुनते हैं ये मधुर गीत।

सखियों, आज बुधवार है और आज के दिन हम आपको बताते हैं रेसिपी। तो इस सुहाने मौसम में हम आपको बता रहे हैं पनीर सैंडविच बनाने की रेसिपी। इसके लिए आप सामग्री नोट कर लीजिए। बारीक कटा प्याज 2 बड़े चम्मच, अगर आप खाते हैं, नहीं तो आप इसे हटा भी सकते हैं। बारीक कटी शिमला मिर्च 2 बड़े चम्मच, बारीक कटा पनीर 2 बड़े चम्मच, शेजवान सॉस 2 बड़े चम्मच, पेरी पेरी मसाला 1.5 बड़ी चम्मच, स्प्रेड चीज़ 1.5 बड़े चम्मच और 2 ब्रेड की स्लाइस। अब इसे बनाने की विधि है। सखियों, बाउल में प्याज, शिमला मिर्च, पनीर, सॉस और चीज़ डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। फिर ब्रेड पर मक्खन लगाकर हल्का सा सेक लें। अब एक ब्रेड स्लाइस पर तैयार मिश्रण डालकर फैलाएं। ऊपर से दूसरी ब्रेड स्लाइस रखकर अच्छी तरह से दबा दें। बस तैयार सैंडविच को बीच से काटें और हरी चटनी के साथ खाएं। अब सैंडविच का आनंद लेते हुए सुनते हैं ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे नारी जगत कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज कलाकार हैं शंकर महादेवन।

शंकर महादेवन की गाई सुगम संगीत रचनाएं आज आप सुन रहे हैं। गीतकार हैं जावेद अख्तर।

आकाशवाणी खंडवा से सुगम संगीत की आज की आखिरी पेशकश एक बार फिर जावेद अख्तर का लिखा गीत। कलाकार हैं शंकर महादेवन।

0: शंकर महादेवन की गाई चंद सुगम संगीत रचनाएं अभी आप सुन रहे थे। गीतकार थे जावेद अख्तर। हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। अब हम अनुप्रसारित करेंगे राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।
1: विविध राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम रंग तरंग में।

हम सुन रहे थे ये भजन हे गोविंद हे गोपाल एल्बम से जगजीत सिंह और साथियों की आवाज़ में सुदर्शन फकीर के बोल और जगजीत सिंह के संगीत के साथ।

0: प्यार का पहला एल्बम से ये लिया गया गीत, जिसे लिखा हस्ती ने, जगजीत सिंह ने गाया और उन्होंने ही संगीतबद्ध किया।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
3: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
2: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं अगला नगमा मरासिम एल्बम से। जगजीत सिंह की आवाज़ है, उन्होंने उसे संगीतबद्ध किया है और गुलजार ने बोल लिखे हैं।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम रंग तरंग में आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत सा नगमा, जिसे संगीतबद्ध किया है उत्तम सिंह ने, गाया है जगजीत सिंह और प्रीति उत्तम ने, फिल्म पिंजर से जिसे लिया गया है। आइए सुनते हैं साथियों की आवाज़ के साथ में ये नगमा।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग का अंतिम नगमा, जो कि है द खजाना कॉन्सर्ट से। तलत अजीज़ की आवाज़ है और तलत अजीज़ के संगीत से सजा हुआ था। और हम अभी थोड़ी देर पहले सुन रहे थे एक और नगमा जिसे पंकज उदास ने गाया था और पंकज उदास की ही संगीत से सजा हुआ है। आइए सुनते हैं ये नगमा खुशबू बनकर द खजाना कॉन्सर्ट से।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दिन के ठीक 12 बजने वाले हैं। हम थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित करेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकर्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। प्रधानमंत्री का पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर धुन और शास्त्रीय नृत्य के साथ स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के तहत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। संयुक्त बयान में राष्ट्रपति प्रबोवो ने कहा कि प्रांबानन भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत बंधन का प्रतीक है। उन्होंने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार पूरी योजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: यहाँ पर आकर के करीब करीब 1200 साल पुराना ब्रह्मा विष्णु महेश इन यादों को साथ जुड़ी हुई एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ।
1: प्रधानमंत्री तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा उड़ीसा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल उड़ीसा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया है कि शोपिया के चानापोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक वीके बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव भी बरामद हुआ है और उसकी पहचान की जा रही है। केरलम सरकार ने वायडनास भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की दो टीमें अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद हैं। 5 लोग अब भी लापता हैं और तलाशी

0: अभियान जारी है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बातचीत की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी आज मूसलाधार वर्षा हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में दिन के दौरान तेज वर्षा की संभावना है। गुजरात क्षेत्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में गरज के साथ आंधी की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। केरल में 11 जिलों में तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड जिले में बारिश की तीव्रता में कमी आई है, हालांकि जिले में येलो अलर्ट जारी है। होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर ताजा हवाई हमले किए। अमेरिका की केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा है कि हमलों में ईरानी वायु रक्षा प्रणाली, कमान और नियंत्रण केंद्रों, तटीय रडार स्थलों, जहाजरोधी मिसाइल प्रणालियों और होर्मुज जलडमरू मध्य तथा उसके आसपास स्थित इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की 60 से अधिक नौकाओं को निशाना बनाया गया। ईरान ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि बंदर अब्बास, केशम और सिरिक में विस्फोटों की आवाजें सुनी गई। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आज एक नया परामर्श जारी किया है। इसके अंतर्गत तीर्थयात्रियों से पंजीकरण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में।

दो कलियां फिल्म से सुन रहे थे हम यह गीत, जिसे गाया लता मंगेशकर ने। साहिल लुधियानवी के बोल हैं और रवि का है संगीत। आज जन्मदिवस है अभिनेत्री नीतू सिंह का, तो चलिए सुनते हैं आज यादों की महफिल में उनके ही द्वारा, अभिनय के द्वारा सजाए गए गीतों को।

0: हम सुन रहे थे याराना फिल्म से यह गीत, किशोर कुमार की आवाज़ में, अनजान के बोल और राजेश रोशन के संगीत से सजा हुआ कार्यक्रम यादों की महफिल में। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: एक बेटी की यादों में उसके पिता
4: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
3: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
4: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
3: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
4: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
3: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: लेते हैं एक छोटा सा विराम।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन यादों की महफिल कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला गीत। रफू चक्कर फिल्म से कंचन शैलेंद्र सिंह की आवाजें, गुलशन बावरा के हैं बोल और कल्याण जानन जी का है संगीत।

0: हम सुन रहे थे जानी दुश्मन फिल्म का यह गीत आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ में वर्मा मलिक के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
2: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं।

0: हम सुन रहे थे ये गीत प्रियात्मा फिल्म से, किशोर कुमार की आवाज में योगेश के बोल राजेश रोशन के संगीत के साथ।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। आइए सुनते हैं गीत परवरिश फिल्म से आशा भोसले, आरती मुखर्जी, शैलेंद्र सिंह, अमित कुमार की आवाज़ों में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ यह गीत।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का अंतिम गीत जिंदा दिल फिल्म से। सुन रहे थे हम अभी ये गीत जिंदा दिल फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज़ में, वर्मा मलिक के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। और आइए सुनते हैं आज के इस कार्यक्रम का अंतिम गीत, जो कि द ग्रेट गैम्बलर फिल्म से है। किशोर कुमार, आशा भोसले की आवाज़ें हैं, आनंद बख्शी के बोल और राहुल देवर्मन का है संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सुरीला सफर हाजिर होगा आपके बीच में बस थोड़ी ही देर के बाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। सुरीला सफर एक कार्यक्रम जहां पर लेकर आते हैं हम कुछ बातें यानी इबारत के रूप में और ढूंढते हैं कुछ नगमों को। आज की इबारत है, जीवन में रोटी कपड़ा और मकान तो आवश्यक है, पर इनके साथ वे छोटे छोटे सपने और अपनापन भी ज़रूरी है जो चेहरे पर मुस्कान ले आए। फिल्मों में अभिनेता और अभिनेत्रियां इन्हीं जीवन रंगों को जीते हुए कभी डॉक्टर, नर्स, शिक्षक, वकील, पुलिसकर्मी, गायक गायिका, बावर्ची, टूरिस्ट गाइड, तांगा चालक या अनेक अन्य किरदारों में नज़र आते हैं। तो आपको बताना है आपका कौन सा अभिनेता या अभिनेत्री किस किरदार या गणवेश में आपको अधिक पसंद आया। हो सकता है आपकी और हमारी पसंद और उनसे जुड़े गीत भी एक जैसे हों, और यदि ना भी हों तो उन सुनहरे दिनों को याद करके अपनी यादों को ताज़ा करने का आनंद ही अलग होगा। चलिए चलते हैं, हम उन साथियों के संदेशों को पढ़ते हैं जिनमें हमारे एक साथी ने लिखा है कि आज के गद्यांश में जीवन की बड़ी सच्चाई को उजागर किया गया है, इसे जीवंत बनाने वाली फिल्म किरदार की बात कही गई है। छोटे छोटे सपने होते हैं जो मन में उम्मीद की किरण जगाते हैं। जीवन में कोई बहुत बड़ी और जटिल पहेली नहीं है, बल्कि यह उन अनगिनत छोटे छोटे पलों और एहसासों का खूबसूरत गुलदस्ता है जिन्हें हम रोज़ जीते हैं। खुशियाँ हमारे भीतर ही मौजूद हैं, और इसी तरह से उन्होंने सारी बात कही है। इसके साथ ही हमारे एक और श्रोता ने बताया है कि कोई व्यक्ति अगर डॉक्टर है या कोई व्यक्ति वो कोई रोल नहीं निभा रहा है, वह अपना काम कर रहा है अपनी आजीविका के लिए, पर अभिनेता और अभिनेत्री उस किरदार को किसी फिल्म की कहानी की ज़रूरत के हिसाब से निभाता है, अभिनय करता है और उसके हिसाब से उसका मेकअप किया जाता है। शायद वह स्वयं का मेकअप भी करता होगा। तो चलिए चलते हैं आज के पहले गीत की तरफ, जिसके लिए हमारे श्रोताओं ने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन इस गीत के बाद हम उसके बारे में बात करेंगे और पढ़ेंगे। लेकिन ये बताइए कि डाकिया से मिले कितने दिन हो गए हैं, या पिछली बार किसी को चिट्ठी या खत कब डाला था, बताइएगा। तब तक सुनिए ये गीत।

0: किया बाबू।
1: क्या रे?
0: छह महीना हुई गवा, खतो नहीं लिखेंगे।
1: खतो नहीं लिखन, बोल क्या लिखूं?
0: बस जल्दी से अभी का लिख दो।

डाकिया डाक लाया। और ये डाकिया हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आता है। हमारे श्रोताओं से हमने पूछा कि आप पिछली बार डाकिया से कब मिले थे, तो हमारी एक श्रोता लिख रही हैं कि हम मिले तो कई दिनों से नहीं, लेकिन आज आपने मिलवा दिया। ये भी अच्छी बात है। पर एक बात देखिए ना, कि ये जो डाकिया के रोल में हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि राजेश खन्ना ने बहुत अच्छी भूमिका अदा की है और यह गीत उनके ऊपर बहुत अच्छा फिट होता है। पत्र मिलने वाले के दिल की बात इस गीत में कही गई है, साजन के आने की खबर, शादी की बात, बहुत सारी बातें इसमें बताई गई हैं। जी बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता बता रहे हैं कि आकाशवाणी और डाक से उनका गहरा संबंध था, परंतु अब कम हो गया है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम भी तो मनचाहे गीत लेकर आते हैं ना आपके बीच में, तो अपने पत्र हमारे पास भेजते रहिए। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मोबाइल ने हमसे चिट्ठी और खत लिखने का काम कम हो गया, ख़त्म ही हो गया है, और मोबाइल ने वो भी छीन लिया है। कई साल हो गए खत लिखे, डाकिया अब भी कम नज़र आ रहे हैं। खत आप विविध भारती के लिए लिख सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। हमारी श्रोता बताती हैं कि कभी उन्होंने एक पोस्ट पार्सल किया था और किसी के शुभकामनाओं के साथ उनके जन्मदिन के लिए ड्रेस भेजी थी, बहुत बढ़िया बात है। तो चलिए हम चल रहे हैं हमारे श्रोताओं की बातों की ओर, कि वो बड़े अच्छे से बता रहे हैं कि उन्हें कौन कौन से किरदार पसंद हैं, जिसमें राजेश खन्ना का ये डाकिया डाक लाया, उसके साथ पलकों की छाँव में जो गीत है उन्हें पसंद है, बड़ा अच्छा किरदार था इस फिल्म का। इसके साथ उन्होंने कई सारी फिल्मों को पसंद किया है, और हम ये प्यारा सा गीत सुन रहे थे पलकों की छाँव में, फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़ में, गुलजार के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। अब हमारे श्रोताओं ने बताया है कि जैसे थ्री इडियट्स में करीना कपूर ने इस फिल्म में डॉक्टर पिया नाम की मेडिकल छात्रा और डॉक्टर का किरदार किया, आनंद में अभिनेता अमिताभ बच्चन ने डॉक्टर भास्कर बनर्जी का किरदार किया, जो एक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। जी बिल्कुल। इसके साथ ही आयुष्मान खुराना ने भी एक मेल गायनेकोलॉजिस्ट यानी पुरुष महिला रोग, जो पुरुष डॉक्टर हैं वह महिला रोग विशेषज्ञ का किरदार निभा रहे थे, वह काम किया। कबीर सिंह में अभिनेता शाहिद कपूर की एक बड़ी जुनूनी गुस्सेल अलग तरीके का किरदार निभाया, लेकिन ऑर्थोपेडिक सर्जन के रूप में निभाया। इसके साथ ही कई सारी चीज़ें हैं जो कई सारे किरदार हैं, जैसे डॉक्टर बनते हैं, पुलिस बनते हैं, कभी एक गुंडे का किरदार भी करते हैं, और कभी कभी कई किरदार ऐसे कर जाते हैं जिन्हें देखकर

हम खुद भी डर जाते हैं, और शायद यही अभिनय की पराकाष्ठा है और वो वहां से जीत जाते हैं। हमारे श्रोता बताते हैं, फिल्म अवतार में राजेश खन्ना ने एक मेहनती पिता का किरदार निभाया जो किसी भी परिस्थिति में हारता नहीं है। आत्मसम्मान और परिश्रम के बल पर वह संदेश देता है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका हौसला है। बिल्कुल सही बात है। अब हम चल रहे हैं अगले गीत की तरफ, तो बताइएगा कि ये जो गीत है इसमें हम किस किरदार की बात कर रहे हैं, किरदार कौन है और किरदार करने वाला कौन है, दोनों चीज़ें आपको बतानी है। और इस फिल्म से जुड़ी हुई कोई याद अगर आपकी है तो ज़रूर साझा कीजिएगा। और इसके साथ एक प्रश्न और हम आप तक पहुंचा रहे हैं, वो ये है, ऐसा कौन सा किरदार है जिसे बचपन में आपने देखा था और सोचा था हम ऐसे ही बन जाएंगे। तो चलिए दोनों प्रश्नों का उत्तर देते हैं और सुनते हैं ये गीत।

हम ये सुंदर सा गीत सुन रहे थे और हमने आपसे प्रश्न किया था कि इसमें कौन किरदार है, फिल्म क्या है। बहुत सारी बातें इसमें हुई थी, लेकिन इसके पहले हम जो गीत सुन रहे थे डाकिया पर, उसके लिए हमारे श्रोता ने बहुत अच्छा लिखा है। बचपन में पिताजी दिल्ली अहमदाबाद में नौकरी पर जाते थे तो पत्र लिखते थे, उनका खत आता तो माँ को पढ़कर सुनाते थे। गाँव में डाकिया आता था जो घर घर चिट्ठियाँ बांटता था, गांव वाले उसकी बड़ी इज्जत करते थे। कॉलेज पढ़ने गए तो विवाह हो चुका था, तो उनकी पत्नी की सहेली खत भेजती थी और हम उसका जवाब भेजते थे। क्या बढ़िया बात है ना, ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होती है ना याद करने के लिए। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है, राजेंद्र कुमार डॉक्टर के रूप में, मीना कुमारी नर्स के रूप में, दिल एक मंदिर में बहुत ही शानदार फिल्म रही है। इसमें नाव पर बैठकर जो गीत है जी, बहुत खूबसूरत गीत है, हमने भी सुना है। इसके साथ ही हमारे श्रोता ने लिखा है कि पोस्ट ऑफिस बंद हो गए हैं अधिकतर गांव में, और पोस्ट कार्ड अंतर्देशीय और लिफाफे आने भी बंद हो गए हैं। इस बात की ये चिंता भी कर रहे हैं और चिंता होना चाहिए। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, आखिरी खत कब लिखे थे ये तो याद नहीं, पिछले साल गाँव गए थे तब पिताजी को 1978 में लिखा अंतर्देशीय मिला, उसे संभाल कर रखे हैं। इंक पेन से इसे सजाया हुआ बड़ा सुंदर सा पत्र इनके पास में है और जिसके बारे में ये चर्चा कर रहे हैं। और अब हम आ जाते हैं अभी इस गीत की तरफ जो अभी हम सुन रहे थे, बड़ा सुंदर सा, बड़ा मोहक सा, बड़ा प्यारा सा गीत, जिसके लिए हमने आपसे पूछा कि जो भी आपने देखा है, यानी इन सब इस किरदार को देखा है, तो ये गाइड फिल्म का, राजू गाइड का, देव आनंद का किरदार है और इसने रोजी के लिए ये गीत गाया है, ये हमारे एक और श्रोता बता रहे हैं। बहुत सुंदर गीत है और इसके साथ हमारे श्रोताओं ने बताया है कि सबसे ज़्यादा अभिनेता जयराज ने सबसे ज़्यादा फिल्मों में इंस्पेक्टर बने हैं और उन्हें विनोद खन्ना को इंस्पेक्टर की वर्दी में देखना अच्छा लगता है। क्या बढ़िया बात है। इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे बहुत प्यार से उत्तर देखे हैं और हमारे श्रोता कह रहे हैं कि उन्होंने गाइड देखी थी और बचपन से डॉक्टर बनने का सपना देखा था। कितना अच्छा था ना, हम सपने भी उनके साथ जी लेते थे कई सारे। और इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे ढेर सारे उत्तर दिए हैं, पर हमें ऐसा लगता है कि हमें अगले गीत की तरफ बढ़ना चाहिए। और एक बात और हमारे श्रोताओं के पास से आ रही है, बात ऐसी, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि ज़िंदगी की असली दौलत केवल रोटी कपड़ा और मकान नहीं, बल्कि वो छोटे छोटे सपने, रिश्तों का अपनापन, चेहरे खिलौटने वाली मुस्कान है जो हर दिन को खास बना देते हैं। यही जीवन के रंग हमारी फिल्मों को भी मैं भी बड़े सलीके से सहेजे हैं। कभी सफ़ेद कोट में डॉक्टर, कभी सादगी भरे शिक्षक, कभी खाकी वर्दी में पुलिस अधिकारी, तो कभी सुनो की महफिल सजाते गायक गायिका, स्वाद बिखेरता हुआ बरची, तो मुसाफिरों का हम सफर बनता टूरिस्ट गाइड। हर अभिनेता में अपने अपने अंदाज में अलग अलग अमिट छाप छोड़ी है। बिल्कुल सही बात है। अब इसके साथ ही कई सारे सुखद क्षण हैं, कई सारी कल्पनाएं हैं, कई सारी चीजें हैं। अब एक बात हम सोचते हैं कि अगर एक अभिनेता किसी किरदार को निभाने के लिए जाता है तो वो कितनी मेहनत करता होगा, क्योंकि वो डॉक्टर नहीं है फिर भी वो डॉक्टर बन रहा है, वो पुलिस इंस्पेक्टर नहीं है फिर भी वो पुलिस इंस्पेक्टर बन रहा है, वो डाकिया नहीं है या वो वकील नहीं है या वो किसी भी काम को नहीं कर रहा है, पर उस किरदार को पूरी तरह से समझ रहा है कि वो कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, किस तरह से बात करता है, उसका मुड़ने का अंदाज क्या होगा, हर बात को ध्यान में रखा जाता है। इसीलिए तो अभिनेता उस किरदार को बिल्कुल हूबहू हमारे फिल्म के पर्दे पर ले आते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले गीत की तरफ। बहुत सरल सा प्रश्न है, इसके गीतकार बता दीजिए और फिर वही पहचानना है कि किरदार और अभिनेता दोनों का नाम बता दीजिए, ये किरदार कौन सा है और उस किरदार को कौन से अभिनेता ने निभाया है। बड़ा सुंदर सा गीत है, आपको बताना है इसके गीतकार का नाम भी।

तुम बिन जीवन कैसा जीवन, ये गीत हम सुन रहे थे उस फिल्म से जिसके बारे में हमने आपसे पूछा था। और जब हम आपसे पूछे तो आप गलत कैसे बता सकते हैं। बिल्कुल सही आपने बताया कि बावर्ची फिल्म से है, और हमने आपसे ये पूछा था कि इसके गीतकार कौन है, तो आपने बताया कैफी आसमी। बिल्कुल सही उत्तर।

और हम बता दें कि इसे गाया है मन्ना डे ने। बड़ा खूबसूरत सा गीत है ये, और इस गीत के लिए सभी ने बड़े अच्छे से पसंद भी किया, प्यार भी किया। हमारे श्रोताओं ने बताया कि उन्होंने ये बावर्ची का गाना है और इसे टीवी पर देखा है, इन्हें याद नहीं है। हमारे श्रोता ने बताया कि पहले, हाँ ये बहुत अच्छी बात बता रहे हैं हम, पहले घर पर तार का बना हुआ एक हैंगर हुआ करता था, जिसमें पिताजी आने वाले हर पत्र को बहुत सलीके से फंसा कर रख देते थे। आज तो पिताजी है नहीं, और समय के साथ हैंगर भी गायब हो गया है। जी हमारे घर पर भी यही होता था, सभी के घर पर ये चीज़ होती थी उस समय। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि बावर्ची फिल्म में राजेश खन्ना ने एक बावर्ची का रोल निभाया, एक संयुक्त परिवार के मन मुटाव को दूर करके आपस में सद्भावना और लगाव को लगाने की, फिर से जगाने की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रेरणा देने वाला किरदार है, बिल्कुल सही बात है ये कि इतना सुंदर किरदार उन्होंने जो निभाया है। हमारे श्रोता बता रहे हैं कि ये गाना राग हेमंत में है और मन्ना डे की आवाज़ है, बावर्ची फिल्म का ये गीत है। बिल्कुल सही पहचाना आप सभी ने। इसके साथ हमारे श्रोताओं ने भी बहुत अच्छी बात कही है कि हाँ इस फिल्म में हरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय और राजेश खन्ना की बेहतरीन किरदार जो उन्होंने निभाया है, ये फिल्म कितनी बार भी देख लें बुरा नहीं लगता है ना। हमारे श्रोता बता रहे हैं कि भारतीय डाक इंडियन पोस्ट के द्वारा साधारण पोस्ट कार्ड की वर्तमान कीमत 50 पैसे है, 5 पैसे का पोस्ट कार्ड दशकों पुरानी बात है और वह बदल गया। जी बिल्कुल, बहुत समय बाद बदला। हमारे श्रोता कह रहे हैं कि आपने फिर से मनचाहे गीत कार्यक्रम शुरू किया है जिससे हम पोस्ट कार्ड तक पहुँचने लगे हैं, ये भी तो एक अच्छी बात है ना हमारे और आपके मिलने का। हमारे श्रोता को डाकू के रोल में धर्मेंद्र और सुनील दत्त इतने बेहतरीन लगते हैं कि वह छोटे थे तो उन्हें लगता था कि वास्तव में डाकू ऐसे होते होंगे, शायद होते भी होंगे, हम सब ने तो देखा ही नहीं है ना। और भी बहुत सारे किरदार होते हैं, जैसे क्लर्क होते हैं, जैसे दूसरे और भी किरदार होते हैं जिन्हें हम जानते हैं, तो उन किरदारों के बारे में भी, उन किरदारों के नाम भी आप लिख सकते हैं हमारे साथ में, तो आप ज़रूर लिखिएगा हमारे साथ में। और हमारे एक श्रोता ने एक किरदार के बारे में जिक्र किया है कि बलराज साहनी की स्वाभाविक अभिनय बहुत अच्छा लगता है, उन्होंने 2 बीघा ज़मीन में रिक्शा वाला की भूमिका निभाई थी कलकत्ता में, उस समय हाथ से खींचने वाला रिक्शा चलता था, हाथ से खींचने वाले रिक्शे वाले का असाधारण अभिनय किए थे बलराज साहनी, और उनका यह किरदार जो है वह उन्हें बहुत अच्छे से याद आता है। अब देखिए जंजीर में इन्हें प्राण, एक श्रोता लिखते हैं प्राण साहिब ने गुंडे का किरदार निभाया था जिसमें उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है, उसके बारे में वह देख रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। अब हम चल रहे हैं कि अभी हम जो इन सभी किरदारों के बारे में बात कर रहे हैं उसमें हमारे एक श्रोता लिखते हैं बचपन में टारजन का किरदार देखा था और सोचा था ऐसे ही बिंदास उन्मुक्त होना है। आप टार्जन होना चाहते थे, बढ़िया बात है, वैसे सही बात है, जंगल में रहो, आराम से खाओ पियो और ऐश करो। वैसे हमारे एक श्रोता लिखते हैं एक किरदार है तेल मालिश वाला, सर जो तेरा चक्रा है, हाँ ये भी जीवंत अभिनय है जॉनी वॉकर का। ऐसे ही हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, सब चीज़ें नहीं पढ़ सकते परंतु हम आप तक अगला गीत ज़रूर पहुँचा सकते हैं, और अगला गीत जो है वो आप सुनेंगे। इसमें हम जो किरदार है वो डॉक्टर का है और गाना जो गा रहा है वो मरीज गा रहा है, अब उस डॉक्टर का किरदार किसने निभाया ये बता दीजिएगा, और ये बता दीजिएगा कि इस गीत के गायक कलाकार कौन है, गायक बता दीजिए और जो डॉक्टर हैं उनका नाम बता दीजिए। वैसे इस फिल्म में 2 डॉक्टर हैं, अगर दोनों का नाम बता देंगे तो अच्छा लगेगा, दोनों अभिनेताओं का नाम बता देंगे तो अच्छा लगेगा। और इस गीत के साथ मेरा एक और प्रश्न मन में चल रहा है कि कोई ऐसा किरदार, कोई ऐसा काम जो सोचा था और पूरा हो गया और सच में आपने वो किरदार निभाया हो, ज़रूर से बताइएगा। बताइए इस गाने को किसने गाया और इस फिल्म में डॉक्टर का जो किरदार है वो किन्होंने निभाया।

रणी का किरदार रमेश देव निभा रहे हैं। उसके साथ में बताया कि ललिता पवार एक सहृदयी नर्स का जो किरदार है जी, जहाँ पर उन्हें माँ का एक उपाय दिया गया है, माँ का एक पद दिया गया है, उस पद के साथ में उसे निभा रही हैं। ये सारी सूचनाएं आप सभी देते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि हमारे श्रोता कितने ज्ञानी हैं, कितना नॉलेज है उन्हें, हर विषय पर आपके पास में ज्ञान है। और ऐसे ही एक और ज्ञान हमारा और हमारे श्रोता का मिल गया जो हमें बहुत अच्छा लगा पढ़कर। उन्होंने बताया कि अगला जो गाना हम आपको देने वाले हैं उसके बारे में बताया, पर उसके पहले एक दो संदेश हैं जो पढ़ लिए जाने चाहिए। हमारे श्रोता लिखते हैं, प्राण की भूमिका हमेशा विलेन और हमेशा कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े वाले काम होते थे, और पर्दे पर प्राण को देखकर मन खराब हो जाता था, और उपकार जंजीर फिल्म में वो अलग रूप में ही दिखे। हालांकि ऐसा उनके साथी कलाकार कहा करते थे कि ये सबसे बढ़िया इंसान थे, व्यक्तित्व थे, लोगों की मदद में लगे रहा करते थे। हमारे श्रोता कह रहे हैं, साप्ताहिक सत्संग में ढोलक हारमोनियम वादक की कम उपस्थिति होने के कारण। अच्छा जी, कुछ उन्होंने संदेश भेजा है, उसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। हमारे एक श्रोता ने बताया कि उनके पतिदेव का पसंदीदा गीत है, हम उनसे हमेशा फरमाइश करते हैं कि वह गाया करें। ऐसे ही बहुत सुंदर सा गीत है बाबू मुशाई, इस गीत के साथ में हम इस गीत को इस शब्द के साथ याद करते हैं। और चलिए अब हम चलते हैं उस अगले गीत की तरफ जिसमें हमारे श्रोता ने भी बताया और ये गीत हमने भी छांट के रखा था कि एक अभिनेता या एक अभिनेत्री किसी एक ही फिल्म में 1, 2, 3, 4, 5 या कई सारे अन्य किरदारों को भी निभा लेते हैं। और ऐसा ही एक फिल्म नया दिन नई रात में संजीव कुमार 9 अलग किरदारों में दिखे हैं। तो चलिए हम ये वाला जो गीत है वो आपको सौंप रहे हैं, और आप याद कीजिए ऐसी कौन सी फिल्में देखी हैं जिसमें एक ही व्यक्ति ने कई सारे किरदार निभा लिए हों, वही पुलिस वाला भी बन गया हो तो वही गुंडा भी बन गया हो, कौन जाने कि वही व्यक्ति एक सामान्य किसान हो, थोड़ी देर बाद उसका ही बहरूपिया आ गया हो, है ना, किसी और रूप में। ऐसे कई सारी बातें होंगी आपके मन में, तो जल्दी से हमें बताइए। एक ही प्रश्न दे रही हूँ इस बार में आपको, जल्दी से बताइए ऐसा कौन कौन से किरदार आपको याद हैं, ऐसी कौन कौन सी फिल्में आपको याद हैं जहाँ पर बहुत सारे किरदार एक ही अभिनेता ने या अभिनेत्री ने निभाए हैं। बहुत मेहनत लगी होगी ये काम करने में, पर किया तो होगा, चलिए बताइएगा जरूर।

हम सुन रहे थे फिल्म आनंद का ये गीत, योगेश के बोल, सलिल चौधरी का संगीत। और हमने आपसे पूछा था कि इस गीत को गाया किसने, तो आपने सही उत्तर दिया, गायक कलाकार का नाम है मुकेश। और इनके गाने के इस गीत के साथ में कुछ संदेश हैं, उन सब संदेशों को मिलाकर हमारा अगला उत्तर बन जाता है। हमने आपसे पूछा था कि इसमें डॉक्टर की भूमिका किसने निभाई, तो हमारे श्रोता ने बहुत अच्छे से उत्तर दिया कि मरीज आनंद फिल्म में, जिस फिल्म में अमिताभ बच्चन डॉक्टर हैं और साथ में भास्कर बनर्जी नाम के डॉक्टर का किरदार वो निभा रहे हैं, और डॉक्टर प्रकाश कुल

हम सुन रहे थे ये प्यारा सा गीत, और इस गीत में हमने बस आपसे ये पूछा था कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, ऐसे कौन कौन से किरदार हैं जो कई लोगों ने कई बार निभाए हैं, एक ही अभिनेता ने कई सारे किरदार निभाए हों, तो ऐसी भी कई फिल्में हैं। तो संजीव कुमार को ही याद किया लोगों ने, और बड़े अच्छे से हमारे श्रोता ने बताया कि अंगूर में जो उन्होंने दोहरी भूमिका निभाई है, जी बिल्कुल, बड़ी मज़ेदार भूमिका रही है वो। और हमारा दिमाग भी कुछ समय के लिए घूम जाता है, पर जब पूरी फिल्म देखते हैं तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ ही जाती है। तो इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बताया कि राजेश खन्ना फिल्म सच्चा झूठा, दिलीप कुमार राम श्याम, हेमा मालिनी सीता गीता, और हमारे श्रोता ने जो बात बताई थी वह भी यहीं पर है कि बहुत अच्छे से राम श्याम, गोरा काला, हम दोनों इज्जत, जॉनी मेरा नाम जैसे फिल्म का नाम लिया कि कॉमेडी में ट्रिपल रोल, पहला राम, दूजा राम, तीजा राम का आयस जौहर ने, अभिनेता आयस जौहर ने इस किरदार को निभाया था। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा किरदार था और बड़ा आनंद के साथ था। इसमें मलयालम अभिनेता जॉनसन जॉर्ज ने फिल्म अरानु नजान में अभिनय की मात्रा 45, एक ही अभिनेता द्वारा 45 अलग अलग अभिनय किए गए एक ही फिल्म में, क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने आखिरी रास्ता में अभिनेता अमिताभ बच्चन ने 3 अलग अलग भूमिकाएं निभाई। ऐसे करके हमारे श्रोताओं ने सच्चा झूठा, राम श्याम, सीता गीता, इन सभी फिल्मों की फिर से जिक्र किया है। गोविंदा को देखा था फिल्म हद कर दी आपने में, दादा दादी, माँ पिता, बहन, सारे रोल उन्होंने ही किए थे। जी जुड़वा, बेटों की तेरी भूमिका कई सारे निभाए हैं अमिताभ बच्चन ने, इसके बारे में जिक्र कर रहे हैं फिल्म महान के बारे में। राज राणा, रणवीर, इंस्पेक्टर शंकर और गुरु, दूसरा बेटा जो एक स्टेज एक्टर है, इसके बारे में, आंटी नंबर वन के बारे में जिक्र हो रहा है, कई सारी फिल्मों के बारे में जिक्र हो रहा है। और इन सब फिल्मों के साथ में एक और है रेलवे इंजीनियर, ये भी बड़ा अच्छा काम करते हैं, और इनका बर्निंग ट्रेन में विनोद खन्ना ने इस किरदार को निभाया, ऐसे हमारे श्रोता बता रहे हैं। पर देखिए कितनी सारी बात होती है ना, कितनी अच्छी बात होती है ना कि हमारे ये किरदार हमें कई लोगों से जोड़ देते हैं, कई किरदारों से जोड़ देते हैं। अब अगर हम तारे जमीन पर की बात करें तो वहाँ पर एक शिक्षक है और एक बालक है, दो अलग अलग किरदार निभा रहे हैं, और दोनों किरदार हमें ये बता रहे हैं कि हमें किस तरह से बच्चों को संभालना है। अगर हम सोनम कपूर की बात करें तो एयर हॉस्टेस बनती है नीरजा 2016 की इस फिल्म में, और क्या बढ़िया किरदार निभाती हैं। नासा के वैज्ञानिक के रूप में शाहरुख खान दिखाई देते हैं, ये हमारे श्रोताओं ने बताए, उन्हीं में से हम जिक्र कर रहे हैं कि शाहरुख खान नासा के वैज्ञानिक बनते हैं स्वदेश फिल्म में, और वह बताते हैं कि अपना देश कितना अच्छा है, कैसे आना है वापस, वो किसी तरह से वह वापस आ जाते हैं। नायक द रियल हीरो में अनिल कपूर एक दिन के मुख्यमंत्री बनते हैं और वह बड़े अच्छे से उसके बारे में बताते हैं। एक और फिल्म का जिक्र हमारे श्रोता कर रहे हैं, अनुरोध, वह कहते हैं कि राजेश खन्ना ने पर्दे पर अपने असली नाम को छिपाकर छद्म नाम से अपने गायन को प्रदर्शित किया है और बहुत बढ़िया गीत गाए हैं। जी बिल्कुल, हिचकी फिल्म में रानी मुखर्जी ने उन लोगों की समस्या को भी बताया जो बराबर से लगातार बोल नहीं सकते, बीच बीच में अटकते हैं या कोई समस्या आती है, वो कई बार हम भी हंस देते हैं उनके ऊपर, तो हम भी गलत हो जाते हैं, है ना। कितनी सारी चीज़ें हमें फिल्मों से देखने और सीखने को मिलती हैं। वह एक श्रोता बताते हैं कि पिंक में अमिताभ बच्चन ने एडवोकेट दीपक की, और फिल्म जॉली LLB में अरशद वाशी ने, फिल्म बंदा में मनोज बाजपेयी ने एडवोकेट पीसी सोलंकी का किरदार, फिल्म मुल्क में ऋषि कपूर और तापसी पन्नू, फिल्म बत्ती गुल मीटर चालू में अभिनेत्री यामी गौतम ने एडवोकेट की गुलजार रिजवी का, और फिल्म दामनी में अभिनेता सनी देओल

हम सुन रहे थे ये गीत आला फिल्म से यशुदास की आवाज़ में, और इसको संगीतबद्ध किया जयदेव ने। हमने आपसे पूछा था कि इस फिल्म के कौन से किरदार को ये सभी बड़े अच्छे से निभा रहे थे, इसमें जो अभिनेता हैं, तो आप सबने बताया कि अमिताभ बच्चन ने कवि और गायक का किरदार निभाया, और हमारे श्रोता ने बताया कि अहीर भैरव राग है। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया तरीके से आप रागों के बारे में जानते हैं और आप जानकारी देते भी हैं, उसके लिए धन्यवाद। हमारे श्रोता बता रहे हैं कि इसमें बिजली मिस्त्री बने हैं और सौदागर में गुड़ बेचते नजर आ रहे हैं। हालांकि इसमें उन्होंने तांगा यानी वो घोड़ा गाड़ी वाला जो तांगा है उसे भी चलाया है जब अपने खुद के पिता को अपने घर तक उन्हें छोड़ने के लिए आते हैं। तो ये भी एक बढ़िया बात है कि एक पुत्र बगावत करता है लेकिन अपने संगीत के लिए बगावत करता है और संगीत के लिए जीता भी है। हमारे श्रोता ने बताया बनारस का गबरू जबान फिल्म घातक में सनी देओल मुंबई शहर पहुंचकर अजब की भूमिका निभाई है। दाग में राजेश खन्ना ने व्यक्ति दोहरी भूमिका निभाई है। हमारे श्रोता बहुत सारी बातें कर रहे हैं, उसमें लिख रहे हैं देश की सेवा में फौजी का रोल करने वाले धर्मेंद्र फिल्म हकीकत में बेहतरीन अभिनय किया था। जी आखिरी रास्ता में दो अमिताभ थे, महान में तीन अमिताभ थे। बहुत सारी बातें आप जानकारी दे रहे हैं, प्रियंका चोपड़ा के बारे में जानकारी भी आप दे रहे हैं। इसके साथ ही आपने नई फिल्मों पुरानी फिल्मों की जानकारी दी है। साल 1960 में आई फिल्म ज़मीन के

के रूप में, किसी को साधना जी, किसी को अलग अलग सुलोचना जी, दुर्गा कोटे जी, अलग अलग किरदार बड़े लोगों को पसंद आए हैं। और माँ का किरदार करना इतना आसान नहीं होता, माँ का किरदार करने के लिए माँ बनना पड़ता है और लोग बने हैं। और अंत में मैं आपको ये गीत सौंप रही हूँ वहीदा रहमान की फिल्म खामोशी से, जो नर्स का रोल उन्होंने निभाया है, उस नर्स के किरदार को याद करते हुए सुनिए ये गीत। अगर बता सके तो बताइए कि इसके गायक कलाकार कौन है।

कर ही मन की शुद्धि संभव है। हर दिन कुछ समय निकालकर अपने कार्यों और विचारों पर हमें विचार करना चाहिए, अपनी गलतियों को पहचानना और उसमें

त्रिवेणी के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। दोस्तों, जीवन में भौतिक उन्नति से ज्यादा आत्मिक उन्नति ज्यादा जरूरी है। आत्मिक उन्नति का मुख्य अर्थ अपनी आत्मा को सांसारिक विकारों और अहंकार से मुक्त करना है। ये नियमित ध्यान, आत्मसमीक्षा और निष्काम सेवा के अभ्यास से संभव है। सही और सकारात्मक विचारों को अपना

अपने व्यक्तिगत विकास, मानसिक शांति और गलतियों में सुधार के लिए आत्ममंथन अपनी कमियों को दूर कर बनने में मदद करता है। आत्म परीक्षण या आत्मनिरीक्षण व्यक्तिगत विकास और कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण अभ्यास है। हमारा जीवन ईश्वर द्वारा दिया गया एक अत्यंत अनमोल उपहार है। ये खुशियों, चुनौतियों और अनुभवों से भरा एक खूबसूरत सफर है। जीवन का असली उद्देश्य हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना और निरंतर आगे बढ़ना है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि व्यक्ति को जितना कोई बाहरी सिखा सकता है, उससे कहीं अधिक वो अपने आत्म अवलोकन या आत्म समीक्षा से सीख सकता है। आत्म समीक्षा यानी अपना मूल्यांकन करने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि हमें हमसे बेहतर कोई और नहीं जानता। इसलिए आत्मिक उन्नति के लिए आत्म समीक्षा बेहद जरूरी है।

0: शेख कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से जुड़ने का उन्हें बार बार सौभाग्य मिला है। इंडोनेशिया के प्रांबानन मंदिर में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को अपने लिए विशेष महत्व का बताया। उन्होंने कहा कि वाराणसी में काशी विश्वनाथ महादेव के आशीर्वाद से उन्हें हमेशा मार्गदर्शन मिला है। केदारनाथ और महाकालेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण में योगदान को भी उन्होंने अपना सौभाग्य बताया।
1: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स का जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में लियुगोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नए विनिर्माण संयंत्र का भूमि पूजन करेंगे। चीन की अग्रणी निर्माण उपकरण कंपनी गुमांगशी लियुगोंग मशीनरी की भारतीय इकाई 272 करोड़ रुपए के निवेश से यह संयंत्र स्थापित कर रही है। नया संयंत्र लगभग 20 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। प्रारंभिक चरण में यहां हर साल 6,500 निर्माण उपकरणों के उत्पादन की क्षमता होगी, जिसमें मुख्य रूप से एक्सकवेटर बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। प्रदेश सरकार के एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि सरदार सरोवर योजना का 30 से 40 साल पुराना विवाद सुलझा लिया गया है। अब गुजरात 75% लागत वहन करेगा। उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम योजना में प्रदेश पांडुलिपि संकलन में देश में पहले नंबर पर है। टीकमगढ़ से जम्बूद्वीप का नक्शा और बुरहानपुर से 220 वर्ष पुरानी श्री भागवत गीता पांडुलिपि मिली है। वहीं जलगंगा संवर्धन अभियान में साल करीब 7 करोड़ परिवारों की भागीदारी रही और 10,600 करोड़ रुपये से अधिक का व्यय हुआ। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में कल नई दिल्ली में नर्मदा अवार्ड के लंबित भुगतान पर ऐतिहासिक समझौता हुआ। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये सरदार सरोवर परियोजना की लागत साझाकरण के दीर्घकालिक विवाद को समाप्त करने की दिशा में मील का पत्थर है। श्री शाह ने इसे सहकारी संघवाद का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकारों से राज्यों के बीच विवाद तेजी से सुलझ रहे हैं। भोपाल में 13 जुलाई को एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जीसीसी डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश पर फोकस रहेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से संवाद करेंगे। पिछली दो कॉन्क्लेव में कुल 32,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। कार्यक्रम में देश विदेश की कई अग्रणी कंपनियां शामिल होंगी। लखनऊ कोचिंग हादसे के बाद भोपाल नगर निगम ने फायर सेफ्टी को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए निगम ने अब तक फायर सेफ्टी नियमों के उल्लंघन पर 8 कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया है। अन्य संस्थानों को 15 से 30 दिन में कमियां दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी भवनों में फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम और 2 सुरक्षित इमरजेंसी एग्जिट अनिवार्य होंगे। कड़ी सुरक्षा के बीच आज अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का 7वां जत्था जम्मू बेस कैंप से रवाना हुआ। यात्रियों में बाबा बर्फानी के दर्शनों को लेकर भारी उत्साह देखने को मिला। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में मानसून पूरी रफ्तार से सक्रिय है। पन्ना, छतरपुर, खंडवा समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। मौसम विभाग ने आज श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, सागर और टीकमगढ़ में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 4 दिनों तक भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले के नलखेड़ा स्थित मां बगलामुखी मंदिर में दान चढ़ावे की गड़बड़ियों की शिकायत पर जांच समिति बनाई गई है। कलेक्टर प्रीति यादव ने 3 सदस्यीय समिति गठित की है, जिसके अध्यक्ष सीईओ बीएस सोलंकी हैं। आगरमालवा जिला पुलिस ने कल जिले भर के स्कूलों, ग्राम पंचायतों और सार्वजनिक स्थलों पर सेफ क्लिक 2.0 जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इसी प्रकार से रायसेन में भी सेफ क्लिक 2.0 साइबर जागरूकता अभियान का समापन कल किया गया। नर्मदापुरम के पिपरिया रेलवे चिकित्सालय और रेलवे स्टेशन पर जबलपुर रेल मंडल द्वारा टीबी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिवपुरी कलेक्टर अर्पित वर्मा ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में जर्जर और जीर्णशीर्ण भवनों में स्कूल संचालित नहीं करने के निर्देश दिए हैं और भारतीय खेल प्राधिकरण राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र एनसीईओई भोपाल के 2 कैनो खिलाड़ी एल नेहा देवी और हर्षवर्धन सिंह सक्तावत का चयन 2026 आईसीएफ कैनो स्प्रिंट व पैरा कैनो वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के लिए हुआ है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्यकर्ता में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा संपन्न। 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए

0: सवाल ये उठता है कि आत्मिक उन्नति के लिए आत्म समीक्षा कैसे की जाए। जब हम सुबह उठते हैं तो ये भावना प्रकट करनी चाहिए कि हमें अनमोल मनुष्य जीवन मिला है, तो सबसे पहले हम उस ईश्वर का धन्यवाद करें, फिर उस ईश्वर के दिए गए इस दिन रूपी जीवन का अच्छे से अच्छा उपयोग करें। दिन भर मेहनत मशक्कत कर रात्रि को सोने जाएं तो अपने दिन भर के कार्यों का मूल्यांकन करें। अच्छे कार्यों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें और जो कार्य गलत हुए हैं उनके लिए ईश्वर से क्षमा याचना करें। गलती हो जाने पर हमें खुद को माफ करना भी सीखना चाहिए।
1: इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: ऑस्ट्रेलिया रवाना। महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में ब्रिक्स देशों के महिला मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान। अमरीका के हमलों के बाद ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में 2% से अधिक की बढ़ोतरी। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में कोलंबिया को 4-3 से हराया। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना से मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकर्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर का दौरा किया। प्रधानमंत्री का पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर धुन और शास्त्रीय नृत्य के साथ स्वागत किया गया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के तहत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। संयुक्त बयान में राष्ट्रपति प्रबोवो ने कहा कि प्रांबनन भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत बंधन का प्रतीक है। उन्होंने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
1: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रांबनन मंदिर में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उनके लिए विशेष महत्व रखता है और इसके विकास की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी उन्हीं पर है। श्री मोदी ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ महादेव के आशीर्वाद से उन्हें हमेशा मार्गदर्शन मिला है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इन परियोजनाओं में योगदान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
1: एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ। यहाँ के जीवन में, यहाँ की बातों में, यहाँ की हवा में एक संस्कृति की खुशबू है, वो खुशबू जो हम भारत की धरती पर पल पल अनुभव करते हैं। ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत अपने आप में अपनत्व से जोड़ती है।
0: भारत और इंडोनेशिया ने उच्च शिक्षा में सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल घोषणा की कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु इंडोनेशिया में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के लिए अब रवाना हो गए हैं। इस यात्रा का उद्देश्य प्रवासी समुदाय पर विशेष ध्यान देते हुए दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूती प्रदान करना है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मेलबर्न स्थित प्रख्यात फार्मासिस्ट और ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सदस्य दीपक संघवी ने द्विपक्षीय संबंधों के बारे में अपने विचार साझा किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन आज से केरलम के कोची में आज सवेरे शुरू हुआ। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी तथा मंत्रालय में सचिव अनिल मलिक सहित अन्य मंत्री सम्मेलन के मुख्य सत्र में शामिल हुए। मुख्य सत्र के दौरान संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाएगा। सम्मेलन में भाग ले रहे मंत्री ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सिलसिले में आयोजित एक प्रदर्शनी का दौरा करेंगे और शिक्षा मंत्री जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व आधारित विकास में भारत की उपलब्धियों को दर्शाने वाली प्रदर्शनियां भी लगाई गई हैं। भारत वस्तु समझौते से संबंधित 13वीं आसियान भारत व्यापार संयुक्त समिति की नई दिल्ली में बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसका उद्देश्य आसियान भारत व्यापार समझौते की समीक्षा को आगे बढ़ाना है। संयुक्त समिति की बैठक और उससे जुड़ी बैठकें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से 10 जुलाई तक जारी रहेंगी। इन बैठकों से भारत और आसियान के बीच सहयोग और आपसी समझौता होगा। वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय नवाचार चुनौती हथकरघा हैकाथॉन 2026 का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य

0: के हथकरघा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए प्रौद्योगिकी डिजाइन और उद्यमशीलता का उपयोग करना तथा सतत समाधान प्रदान करना है। इस पहल का आयोजन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। ऑनलाइन पंजीकरण 20 जुलाई तक खुले हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा उड़ीसा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल उड़ीसा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। प्राधिकार पत्र वर्ष 2026 के भारतीय ध्वज वाले मत्स्य पोतों द्वारा खुले समुद्र में मत्स्य संसाधनों के सतत दोहन संबंधी दिशा देशों के तहत एक अनिवार्य प्रावधान है। प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली एनसीआर में 5 परिसरों पर तलाशी अभियान चला रहा है। ये छापेमारी सब्सिडी पर मकान खरीदारों को ठगने के 3 मामलों की चल रही जांच के सिलसिले में चलाया जा रहा है। इससे पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई जांच में पता चला है कि बिल्डरों ने सब्सिडी योजनाओं के नाम पर मकान खरीदारों और निवेशकों को धोखा दिया है। इससे ये भी पता चला है कि बिल्डरों ने पोजेशन तक कोई ईएमआई नहीं योजना शुरू की है, जिनके तहत घर खरीदारों ने आवास ऋण लेकर फ्लैट बुक किए। हालांकि कई साल बीत जाने के बाद भी उन्हें फ्लैटों का पोजीशन नहीं दिया गया है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के बरोईपुर में दुष्कर्म और हत्या मामले का मुख्य आरोपी प्रभास मंडल मुठभेड़ में मारा गया है। मंगलवार और बुधवार की रात लगभग 12:45 पर घटना के नाटकीय रूपांतरण के दौरान प्रभास ने पुलिस अधिकारी की बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की और एक राउंड गोली चलाई। मुठभेड़ में प्रभास गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में मृत घोषित किया गया। इस मामले में गिरफ्तार 3 अन्य आरोपी फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं। जम्मू कश्मीर के शोपिया के चनापोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक वीके बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव बरामद हुआ और उसकी पहचान की जा रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पत्रकारों से बातचीत में श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष अप्रैल में ही अल नीनो की चुनौती से निपटने की तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने ये भी बताया कि अल नीनो निगरानी प्रकोष्ठ और नोडल अधिकारियों के माध्यम से बुवाई, फसल और बाजार की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। श्री चौहान ने कहा कि मॉनसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन, कपास और अन्य फसलों की बुवाई प्रभावित हुई है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज तेज बारिश, बाढ़ जैसी स्थिति और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बात की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। गृहमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से राज्य में तेज बारिश और जलभराव से उत्पन्न स्थिति के बारे में भी बातचीत की और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इस बीच केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने वायनाड आपदा के संबंध में उनसे फोन पर बात की। श्री सतीशन ने कहा कि श्री शाह ने स्थिति का जायजा लिया और राहत और पुनर्वास प्रयासों के लिए केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। केरलम के मुख्यमंत्री ने बताया कि गृह मंत्री ने घटना की उच्च स्तरीय जांच की भी आवश्यकता पर बल दिया है। केरलम सरकार ने वायनाड भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीम अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद है। 5 लोग अभी भी लापता हैं और तलाशी अभियान जारी है। लद्दाख में स्थानीय मौसम विभाग ने नालों में तेज और अचानक जलधाराओं के खतरे और बाढ़ की आशंका की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने सिक्किम को पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 के एक खंड को 11 से 13 जुलाई तक अस्थायी रूप से एक दिन में 5 घंटे के लिए बंद करने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड NHIDCL ने आपातकालीन मरम्मत कार्य और वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 20वें माइल बरदांग स्थित NH10 के एक हिस्से को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। ये मार्ग 11 से 13 जुलाई तक प्रतिदिन सुबह 5 बजे से 10 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद रहेगा। यह बंदी चल रहे

0: आपातकालीन मरम्मत कार्य के कारण आवश्यक है। अधिकारियों ने इस दौरान यातायात जाम और सुरक्षा संबंधी जोखिम की आशंका जताई है। यात्रियों के असुविधा कम करने के लिए NHIDCL ने वाहन चालकों के लिए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था भी की है। मानुष प्रतिम शर्मा के साथ मोइनक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गांतोक।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने होर्मुज़गान प्रांत और माशहर बंदरगाह पर अमरीकी हमलों के जवाब में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। ईरानी मीडिया के अनुसार इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने मिसाइल और ड्रोन हमले करते हुए अमरीका के 85 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें बहरीन स्थित सलमान बंदरगाह और अमरीका के 5वें बेड़े का मुख्यालय तथा कुवैत में अली अल सलेम वायुसेना अड्डा शामिल है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान के बुशहर प्रांत में अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराया गया। इस बीच बहरीन के गृह मंत्रालय ने चेतावनी सायरन बजने पर लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है। इससे पहले होर्मुज़ जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर फिर हवाई हमले किए। ईरान की केंद्रीय सैन्य कमान ने इसे आक्रामकता और आतंकवाद का कृत्य बताते हुए जवाबी हमले की चेतावनी दी है। ईरान ने यह भी कहा है कि होर्मुज़ जलडमरू मध्य में किसी भी तरह के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही किसी को इस पर नियंत्रण करने दिया जाएगा। इस बीच अमेरिका ने अंतरिम समझौते के तहत ईरान को दी गई तेल बेचने की छूट रद्द कर दी है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अमरीकी हमले और कार्रवाई द्विपक्षीय समझौतों का गंभीर उल्लंघन है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: और अब मौसम का भी रुख कर लेते हैं। मौसम विभाग ने देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा और बिजली चमकने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 से 3 दिन में उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष भागों सहित पूरे देश में आगे बढ़ने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के निचले इलाके, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण कर्नाटक के भीतरी भागों में आज मूसलाधार बारिश हो रही है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह से हल्की बारिश हो रही है, जिससे गर्मी से राहत मिली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.8% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 590 अंक फिसलकर 77,591 पर, जबकि निफ्टी 185 अंक गिरकर 24,213 पर था। और अब खेलों में, अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अंतरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सका। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। वहीं क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आज एक नया परामर्श जारी किया है। इसके अंतर्गत तीर्थयात्रियों से पंजीकरण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक तीर्थयात्री सीमा लागू रहेगी। श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे अग्रिम पंजीकरण कराएं और यात्रा केवल अपने परमिट में तय तिथि पर ही करें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्याकर्ता में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रांगण मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा संपन्न। 3rd भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में ब्रिक्स देशों की महिला मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

हम सुन रहे थे आशिक फिल्म का यह गीत मुकेश की आवाज़ में शैलेंद्र की बोल और शंकर जयकिशन के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे का अगला गीत अपना बना के देखो फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले की आवाज़ों में, एसएच बिहारी के बोल और रवि के संगीत के साथ।

0: हम सुन रहे थे ये गीत हरियाली और रास्ता फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज़ में, शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से

0: संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
2: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सदाबहार नगमे कार्यक्रम में आइए सुनते हैं बात एक रात की फिल्म से। सुमन कल्याणपुर की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी के पोल और सचिन देवर्मन के संगीत के साथ यह गीत।

0: हम सुन रहे थे कैलाशपति फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। मदन ने इसे लिखा और अविनाश व्यास ने इसे संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस

0: चिट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: एक बेटी की यादों में उसके पिता
3: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
2: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
3: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
3: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा,
4: रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
2: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं अगला गीत, आजाद फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज है, राजेंद्र कृष्ण के हैं बोल और सी रामचंद्र का है संगीत।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अंतिम गीत। असली नकली फिल्म से लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, हसरत जयपुरी के हैं बोल और शंकर जयकिशन का है संगीत। और इसी गीत के साथ आज्ञा दीजिए मुझे यानी विधि जैन को, नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: नमस्कार मंदाकिनी जी, आपको और सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को, सखियों को, सखाओं को नमस्कार।
2: नमस्कार चंचल, आपको भी और सभी सुनने वालों को, सखी सहेली के हमारे सभी श्रोताओं को प्यार भरा मंदाकिनी जोशी की ओर से नमस्कार। क्या हाल है चंचल?
1: हाल बहुत अच्छे हैं। और देखिए ना, कितनी बार हमें ना शिकायतें बहुत करते हैं, बारिश नहीं हो रही है, बारिश हो गई तो हम शिकायत करते हैं, अरे इतनी बारिश हो रही है। तो ये जो शिकायत करने का हमारा एक आदत जो बन चुकी है, अच्छा हो रहा है तो भी शिकायत, अच्छा ना हो
2: तो भी शिकायत। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। और इन दिनों देखिए ना, हमारे मुंबई में तो मूसलाधार वर्षा हो रही है, हमें शिकायत है कि ओहो इतनी बारिश, कैसे जाए, कहाँ जाए, और आप ही की तरह चंचल हवाएं बह रही हैं। बड़ी मुश्किल में हैं हम लोग, और लगता है कि अरे कैसे क्या होगा। लेकिन बाहर कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ पर आश्वासन दिए गए कि भी बारिश आने वाली है,
1: हाँ।
2: लेकिन एक बूंद भी नहीं गिरी है।
1: बिल्कुल, तो होता यही है कि शिकायतें भी हैं, आश्वासन है, और आश्वासन पूरे हो गए तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, फिर कई बार हमारे मन से शुक्रिया भी निकलता है, लेकिन ना हो हमारी मन चाही बात पूरी तो झट से हम शिकायत करने लगते हैं। ये एक मानव स्वभाव ही कह लीजिए, लेकिन मेरे ख्याल में आपका या मेरे और सुनने वालों का ये मानना होगा कि शिकायतें जिंदगी में कम और शुक्रिया का भाव अगर ज्यादा ले आए तो जिंदगी कुछ आसान हो जाती है।
2: हाँ बिल्कुल सही कहा चंचल आपने, और इसलिए शायद आज का विषय ये रखा गया है कि शिकायत कम और शुक्रिया ज्यादा। बिल्कुल,
1: इसके अलावा शब्द जो हम देते हैं हमारे श्रोताओं को, जिसमें वो अपने विचार हमें लिखकर देते हैं, इसमें हम आश्वासन की बात करेंगे कि आश्वासन शब्द उनके लिए क्या मायने रखते हैं, और आश्वासन को लेकर उनकी जिंदगी किस तरह से शब्द से जुड़ी हुई है, उन्हें कौन से आश्वासन दिए गए जो कुछ पूरे हुए कुछ नहीं हुए, और क्या शिकायतें उनके मन में रही।
2: बिल्कुल बिल्कुल, हमारे श्रोताओं के लिए है ये सेगमेंट, और शब्द हमारा विचार आपके इसलिए रखा जाता है ताकि आप अपनी बात, अपने जज्बात, अपने भाव, अपने अनुभव हमारे साथ साझा कर सकें। तो आश्वासन जिंदगी में एक ऐसा शब्द है जो बहुत मायने रखता है। हमें कोई थोड़ा सा भी आश्वासन दे देता है ना, मैं हूं ना, तो ये बहुत बड़ा आश्वासन होता है हमारे लिए, और हम पूरी जिंदगी उसको याद रखते हैं। तो इसको बहुत हल्के में मत लीजिए। जब हम किसी को आश्वासन देते हैं तो तभी दीजिए जब आप उसको पूरा कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का दिल हम जाने अनजाने तोड़ देते हैं ये कहकर कि अरे मैं हूं ना, मैं कर दूंगा, मुझसे उम्मीद करिए, मैं हूं ना, मैं आपके साथ रहूंगी, मैं आपका साथ दूंगी। लेकिन जब किसी को साथ की आवश्यकता होती है तो हम उन्हें दोराहे पर, चौराहे पर छोड़कर अलग हो जाते हैं।
1: तो ऐसे समय पर पल्ला झाड़ने वाले इंसान को भी हम हमेशा याद रखते हैं कि इन्होंने कहा था साथ देंगे, लेकिन साथ देने का समय आने पर पल्ला झाड़ के अलग हो गए।
2: बिल्कुल, तो आज आश्वासन पर आप बताइए श्रोता लोग की किन किन को आपने आश्वासन दिया, या आपको दिए गए आश्वासन किसी ने पूरे किए या नहीं।
1: बिल्कुल, और साड़ियों का संसार, इसमें जब हम अंदर होंगे तो बात होगी कोटा की साड़ी, तो बहुत फेमस है कोटा डोरिया उसके बारे में।
2: बिल्कुल, ऐसी साड़ी है ये जिसे हर माहौल में पहना जा सकता है, और राजस्थान में तो इसकी बहुत ही मतलब भरमार है साड़ी की, और हर लगभग औरत के पास कोटा डोरी की साड़ी तो मिलेगी आपको। बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, उसमें महिलाएं जो है कोटा डोरिया की साड़ी पहने भी मिलती है, और कुछ महिलाएं ऐसी है चंचल जो सिर्फ कोटा डोरिया ही पहनती है।
1: तो हमारी कौन सी सखियां हैं जिनके वार्डरोब में ये साड़ी जरूर है, और उन्होंने क्यों खरीदी या उन्हें ये क्यों पसंद है, और जिन्होंने नहीं खरीदी है वो अब चाहती हैं कि उन

0: उनकी वार्डरोब में ये साड़ी आ जाए तो वो क्यों चाहती है, ये जरूर हमें बताएं। इसके अलावा आज चावल के कुछ व्यंजन हम चाहेंगे कि हमारी सखियां हम तक भेजें।
1: अच्छा।
0: इसमें चावल की तो बहुत अच्छी चीजें होती है, नी डोसा होता है, अनार से जो है खास अवसरों पर बनाया जाता है, चावल के कई तरह के पापड़ भी बनाए जाते हैं, इसमें कुछ कच्चे चावल के होते हैं, कुछ पकाए हुए चावल के भी होते हैं। तो पके या कच्चे जिस भी तरह की चीजें आप चावल की बनाती हैं वो रेसिपीज हमारे साथ साझा करें। फिलहाल हम साझा करते हैं अपने सखियों के साथ में एक खूबसूरत सा गीत।
1: बिल्कुल।

0: जी,
1: तो गाना
0: तो बहुत
1: बड़ा अच्छा था, है ना?
0: बहुत सुंदर, इसलिए आपसे आज शिकायत कम करेंगे और चंचल आपको शुक्रिया अदा करूंगी मैं अच्छे गाने सुनवाने के लिए।
1: तो भाई एक बड़ा सुंदर सा संदेश है, इसमें किसी हमारे विषय से जुड़ी बात नहीं है, लेकिन यूं ही हमारी सखी ने लिखा है कि रेडियो की मधुर तरंगों पर जब शब्दों के फूल खिलते हैं, चंचल जी प्यारी बातों से मन के आंगन में रंग मिलते हैं।
0: क्या बात,
1: मंदाकिनी जी की मुस्कान में अपनापन सा झलकता है, उनकी मीठी आवाज सुनकर हर श्रोता का दिल महकता है। सखी सहेली केवल कार्यक्रम नहीं, रिश्तों की एक सुंदर डोरी है, ज्ञान मनोरंजन का अपनापन जिसकी हर बात बड़ी ही प्यारी है। ये ही गूंजती, यूं ही गूंजती रहे ये आवाजें, खुशियों का संदेश सुनाती रहे। चंचल जी और मंदाकिनी जी के संग सखी सहेली यूं ही मुस्कुराती रहे।
0: क्या बात है, क्या बात है, यानी हमारी सखियों को, हमारी सखाओं को हमारी मुस्कुराहट भी यहाँ से दिख जाती है ना?
1: ये जो, और ये जो सुनकर जो

0: देखना होता है ना, ये कई बार हम गानों में भी महसूस करते हैं कि किस तरह के जो भाव हैं और गायक जिस तरह से गाते हैं हम उसे पूरा महसूस कर पाते हैं, हम देख पाते हैं, चाहे हमने वो चलचित्र ना देखा हो, लेकिन वो भाव जिस तरह से चल रहे होंगे अपने दिमाग में एक चित्र हम बना लेते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और उद्घोषक जो खास तौर से जब प्रोग्राम प्रेजेंट करता है तो हमारी श्रोता एक पिक्चर बना के चलते हैं कि भाई चंचल जो है कैसी दिखती होंगी, चंचल लगती है कि नहीं, और मंदाकिनी जी कैसी लगती है, मुस्कुराकर बात कर रही है कि नहीं, उनकी एक पिक्चर चलती है और वो उसी हिसाब से सोचते भी, और हमें भी अच्छा लगता है जब हमारे श्रोता उस पिक्चर में हमारी सूरत देखते हैं, बोलने का अंदाज देखते हैं, तरीका देखते हैं। तो चलिए अभी शिकायत करेंगे हमारे श्रोता की, दोनों सखियां अपनी तारीफों में उलझ गई है ना। तो अगर हम अपने जीवन में चंचल ये मूल मंत्र अपना लें कि बात बात पर हम शिकायत नहीं करें बल्कि हर बात के लिए शुक्रिया अदा करें, तो शायद कहते हैं जिंदगी बहुत आसान बन जाती है। और जिंदगी में हमें शिकायत नहीं, कहते हैं शुक्रिया ज्यादा अदा करना चाहिए। हमें दूसरों से तारीफ की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। और संसार की 90% समस्याएं बातचीत के असंतुलित लहजे से ही पैदा होती है।
0: बिल्कुल सही बात है। हमने बात को जिस तरीके से कहा अगर वो उसी तरह से सामने वाले तक पहुंची तब तो ठीक, अगर शब्दों का थोड़ा भी हेर फिर उन्होंने अपने तरह से सोच लिया तो बात का पूरे मायने ही बदल जाते हैं। और ये जो आपने कहा ना असंतुलित लहजा जो है, इसी से फिर सारी शिकायतें पैदा हो जाती है। और किसी ने कहा भी है कि हर लफ्ज महकता हुआ गुलाब है, लहजे के फर्क से इसे तलवार ना बनाओ।
1: क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही कहा। अगर आप गुलाब की तरह अपनी बात कहते हैं तो वो वैसे ही पहुंचेगी, और अगर उसे तलवार बना देते हैं तो फिर वो तलवार की तरह ही अगले को जो है कलम करने की।
0: तो हमारी जो श्रोता हैं उनके शब्दों के तलवार ना चले, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं। उनका कहना है कि शिकायतों के दफ्तर में अब ताला लगा दिया है, जो मिला है झोली में उसे गले से लगा लिया है। गिले शिकवे करने से बस दिल भारी होता है, और शुक्राना करने से हर लम्हा प्यारा होता है।
1: क्या बात, क्या है? बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि शिकायतें कम शुक्रिया ज्यादा, अब यही जीने का सीधा सा वादा। धूप अगर तीखी है तो छांव का भी तो एहसास है, प्यास अगर लगी है तो घड़े में पानी भी पास है। कांटों को गिनकर क्यों अपना दिल दुखाना, फूलों की महक से ही तो महकता है जमाना। क्या बात है, हमारे सभी सखियां और सखा तो कवि बन गए हैं, मुझे लगता है शायर बन गए हैं, है ना?
0: और इसी के आगे हमारे श्रोता ने लिखा है कि शिकायतें कम और शुक्रिया ज्यादा हम अक्सर करते हैं। छोटी छोटी बातों पर शिकायत, अरे ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, और हम शुक्रिया तो अदा ही नहीं करते। हमारे पास जो है उसमें हम संतुष्ट नहीं रहते। हालांकि मैं इस बात को मान रही हूँ, संतोष में रहना बहुत मुश्किल है। आजकल का जमाना ही ऐसा है कि शिकायतें हो ही जाती हैं, लेकिन हम अगर खुश रहने की कोशिश करें तो हमारे पास जो भी है उसमें हम खुश रह सकते हैं, ये इतना मुश्किल भी नहीं होता। और ऐसा ही करें कि छोटी छोटी बातों में शिकायत करने की जो आदत है, उसके पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, उसकी वाली इतनी अच्छी है, हमारी वाली इतनी अच्छी नहीं है, ये चीज़ें हमारे जीवन को मुश्किल और तनाव से भरा हुआ बना देती हैं। इसीलिए हम खुद तो तनाव में इसे हम खुश तनाव में आते ही हैं, खुश नहीं रहते। लेकिन हम शिकायत करने से हमारा जो जीवन के प्रति नजरिया है वो भी खराब होता जा रहा है। तो जारी है कि शिकायतें ना करें, जो है उसमें खुश रहें, आपके पास जो मिला है उसका हमेशा शुक्रिया अदा करते रहें, और भगवान ने जो आपको दिया है उसके लिए धन्यवाद करें, शिकायत करना बंद कर दीजिए।
1: बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि शिकायतें कम और शुक्रिया ज्यादा हम अक्सर करते हैं, छोटी छोटी बातों पर शिकायत, अरे ये नहीं हुआ, अरे वो नहीं हुआ, हम शुक्रिया अदा नहीं करते हैं, हमारे पास जो है हम उससे संतुष्ट नहीं रहते हैं। हालांकि मैं मान रही हूँ कि संतोष रहना बहुत मुश्किल है, आजकल का जमाना ही ऐसा है कि शिकायतें हो ही जाती हैं, लेकिन अगर हम खुश रहने की कोशिश करें तो हमारे पास जो है हम उससे खुश रह सकते हैं, बस ये इतना मुश्किल नहीं है। तो ऐसा ही करें, जो छोटी मोटी बातों में शिकायत करने की आदत है उसके पास ये है कि हमारे पास नहीं है, ये हमें खुद ही दुखदायी बना देता है। और बिल्कुल सही कहा कि जब हम किसी का अभिवादन करते हैं ना चंचल, जब हम किसी का शुक्रिया अदा करते हैं तो हमारा अहंकार भी समाप्त हो जाता है। और इसलिए हमारी जो भारतीय संस्कृति में बड़ों को प्रणाम करना सिखाया जाता है, और दूसरों का आभार व्यक्त करना बहुत जो है अच्छा होता है, और हमें दूसरों से आशीर्वाद और दुआएं मिलती हैं, और दुआओं के लेन देन से हमारी सफलता का जो है मार्ग प्रशस्त होता है।
0: अब हमारे श्रोता कहीं ये शिकायत ना करते कि भाई गाना नहीं सुनवा रही हैं सखी, सिर्फ बातें किए जा रही हैं, तो बातें भी करेंगे, संदेश भी पढ़ेंगे गाना सुनने के बाद।
1: चलिए

चल, भूलना तो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर हमारा थोड़ा सा भी कोई काम कर देता है तो उसका शुक्रिया हमें हर हालत में अदा करना चाहिए, और किसी से थोड़ी सी मदद मिल गई तो उसका आभार व्यक्त कर दें। आभार और

0: क्षमादान कहते हैं, हमारे जीवन के दो बहुत महत्वपूर्ण आयाम हैं। आभार या शुक्रिया करने का मतलब है उसकी कद्र करना, यानी हम दूसरे का आदर तभी कर पाएंगे जब हमारे अंदर उनके प्रति स्वीकार्यता का भाव होगा, हम स्वीकार करेंगे उनकी सहायता को उनको। तो जब जब हम किसी को धन्यवाद कहते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, एक पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक सोच जागृत हो जाती है।
1: और इसी तरह से जो शिकायत का भाव है वो एक नकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है। नकारात्मक हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तभी तो शिकायत मन में आती है। तो देखिए हमारे श्रोता क्या कह रहे हैं कि भगवान या किसी भी उच्च शक्ति से शिकायत करने की बजाय शुक्रिया या कृतज्ञता व्यक्त करने से मानसिक शांति और सकारात्मकता बढ़ती है। जैसा भी आप भी बता रही थी, कृतज्ञता का अभ्यास करने से जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण आता है, तनाव कम होता है। शुक्रिया अदा करने से आपका ध्यान उन चीजों पर जाता है जो आपके पास है, न कि उनके पास जो आपके पास नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: शिकायत उस आम आदमी से भी नहीं, क्योंकि शिकायत भगवान से होनी चाहिए। अच्छा हुआ ये पल आपने मुझे दिखाया और उससे भी अच्छा कुछ मिलने की उम्मीद जगी। यानी कि हम उस भगवान से ही ये कहें कि भाई तुमने जो दिया है वही अच्छा।
0: हाँ, यानी भगवान को भी हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, शुक्राना अदा करना चाहिए। एक श्रोता लिखते हैं कि शिकायत कम शुक्रिया ज्यादा, ये हमारे जीवन का मोटो हो तो हम परेशान नहीं होते, लेकिन ऐसा हमसे हो नहीं पाता। हम समाज और परिवार से शिकायत ही रखते हैं, इसकी जड़ में नहीं जाते, जिसका कारण हम खुद ही हैं। हमें बचपन से शिकायत मिलती है, हम बड़े होकर भी वही करते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। हमें संतुष्ट रहने की कोशिश करनी चाहिए। शिकायत की भावना की जगह सहयोग की भावना हमारे अंदर आनी चाहिए। जो मिला है उसके लिए ईश्वर को शुक्रिया हमें अदा करना चाहिए।
1: इसी तरह से हमारे श्रोता लिखते हैं कि ये जो शिकायत और शुक्रिया वाली बात है, ये सुखमय जीवन का मूल मंत्र है और इसके चलते जीवन यापन भी भली भांति किया जा सकता है। क्योंकि शिकायतें दर्ज करवाने की इस आदत अगर पड़ जाती है तो ये अच्छी बात नहीं है। और शुक्रिया अदा करने पर तो कोई लोग भी अगर शुक्रगुजार होते हैं तो उसे हम नेक और भला आदमी मानने लगते हैं। इस दृष्टिकोण से शिकायत करने वाले अपने आप में कमजोर होते जाते हैं, जबकि शुक्रिया अदा करने वाले व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा बनी रहती है।
0: बिल्कुल, वही एक श्रोता लिखते हैं कि शिकायत कम शुक्रिया ज्यादा करना चाहिए। भाई ये तो सुखमय जीवन का मूल मंत्र है और इसके चलते जीवन यापन भी भली भांति किया जा सकता है। क्योंकि शिकायत जो दर्ज करवाते हैं उनको आदत हो जाती है कि हर वक्त वो शिकायत ही करते रहते हैं, और शुक्रिया अदा करने वाले तो जो लोग हैं वो तो भाई शुक्रिया ही अदा करेंगे और उसे नेक और भला आदमी हम मानते भी हैं। इस दृष्टिकोण से शिकायत करने वाला खुद ही जो है कमजोर होता जाता है।
1: आगे हमारे श्रोता लिखते हैं कि अब यही है जीने का सीधा सा वादा, धूप अगर तीखी है तो छांव का भी तो एहसास है, अगर प्यास लगी है तो घड़े में पानी भी पास है, कांटों को गिनकर क्यों अपना दिल दुखाना, फूलों की से हो तो महकता है जमाना।
0: बिल्कुल, वही एक श्रोता ने लिखा है कि शिकायत कम शुक्रिया ज्यादा। मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं और मेरी धर्म पत्नी हमेशा माता रानी और प्रभु परमेश्वर का शुक्राना ही अदा करते हैं, क्योंकि देने वाली तो माता रानी ही है जो हमें देती है, और जो हमें देना चाहिए जो भी वो उन्हें मालूम होता है। तो शिकायत किस बात की, क्योंकि ये भी एक सच्चाई है कि वक्त से पहले और तकदीर से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। और हमारे जीवन में भी हम दोनों शिकायत कम और शुक्रिया ज्यादा करते हैं, ये भी हमने बच्चों को सिखाया है हर बार लघु कथाओं के माध्यम से। ज्यादातर मेरी धर्मपत्नी और मुझे जब भी समय मिलता है बच्चों को बताकर और समझाने की हम पूरी कोशिश करते हैं, है ना। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि लगातार शिकायत करने से हमारे मस्तिष्क में नकारात्मक विचार घर कर जाते हैं, जिससे तनाव और मानसिक थकान बढ़ती है। सकारात्मक दृष्टिकोण जब हम शुक्रिया धन्यवाद भाव देते हैं तो हमारा दिमाग जीवन के सकारात्मक पहलुओं की ओर आकर्षित होने लगता है।
1: और हमारे श्रोता लिखते हैं कि शिकायत दूरियां बढ़ाती है रिश्तों में, जबकि शुक्रिया का एक छोटा सा शब्द दिलों को करीब ले आता है। किसी की मदद के लिए धन्यवाद कहना, माता पिता के स्नेह के लिए आभार व्यक्त करना और मित्रों के लिए कृतज्ञ होना, ये छोटी छोटी बातें जीवन को सुंदर बना देती हैं।
0: बिल्कुल बना देती हैं। लेकिन एक श्रोता का मैं और विचार लेना चाहूंगी, ये लिखते हैं कि किसी बात पर निश्चित सकारात्मक भरोसा या तसल्ली देना, यानी आश्वासन। जीवन में आश्वासन मिलने पर मानसिक शांति और काम को प्रोत्साहन मिलता है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है, हम भी तुम्हारे साथ हैं, ये वचन चंदन सी शीतलता देता है। खोखले और झूठी बातें बिल्कुल करना गलत बात है, बार बार ऐसा करने से समाज में हमारी कीमत कम हो जाती है, इसलिए हमें अच्छा बनना चाहिए और अच्छे आश्वासन देने चाहिए।
1: तो अभी गीत सुन ले।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सखी सहेली कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
0: जी।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली और हम फिर से हाजिर हैं लेकर हमारे श्रोताओं के बहुत सारे संदेश और उनकी बातें।
0: बिल्कुल, और इस वक्त हम बात करने वाले हैं कोटा डोरिया साड़ी के बारे में, है ना। तो कोटा डोरिया साड़ी जो है चंचल राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध और पारंपरिक हथकरघा यानी हैंडलूम साड़ियों में से एक मानी जाती है। कोटा डोरिया छोटे बुने हुए वर्गों में बने हुए हल्के बुने हुए कपड़े का नाम है जो अपनी हल्की फुल्की बनावट, पारदर्शिता और चौकोर डिजाइन जिसे खट कहा जाता है उसके कारण देश भर में प्रसिद्ध है।
2: ये बिल्कुल आपने बात सही कही कि भाई राजस्थान की तो बड़ी प्रसिद्ध साड़ी है और कोटा डोरिया का जो इतिहास है ना इस साड़ी का, ऐसा माना जाता है कि ये भी करीब करीब 300 साल पुराना रहा होगा। और ऐसा बताया जाता है मंदाकिनी जी कि 17वीं-18वीं जो शताब्दी थी उसमें राजस्थान राज्य के कोटा के महाराव ने दक्षिण भारत के जो खास तौर पर जो मैसूर क्षेत्र है ना वहाँ के कुशल जो कारीगर थे, जो बुनकर थे, उनको कोटा बुलाया और इन बुनकरों ने वहाँ के जो स्थानीय कारीगर थे उनके साथ मिलकर एक नई बुनाई तकनीक का विकास किया जिसमें सूती और रेशमी धागों को मिला जुलाकर कुछ इस्तेमाल किया गया था। और हाथ से बुनाया गया जो आरामदायक कपड़ा था इसमें बहुत चमक भी होती है और इस विशेष बुनाई से बनने वाले जो चौकोर जाल जैसे पैटर्न बनते हैं जिन्हें खट कहा जाता है आपने बताया, और कोटा डोरिया की ये पहचान बन गया।
0: बिल्कुल सही कहा चंचल। और कोटा डोरिया नाम कैसे पड़ा ये भी एक बहुत ही रोचक बात है कि कोटा राजस्थान का एक ऐतिहासिक शहर है जहाँ ये कला विकसित हुई और डोरिया का मतलब है डोरा यानी धागा जिसका मतलब है धागों से बुना हुआ महीन कपड़ा। तो शुरुआत में ये कपड़ा राजघरानों के लिए बनाया जाता था और लेकिन जैसे जैसे समय बीता तो ये आम लोगों में भी लोकप्रिय होता चला गया
2: और यही सारी बातें हमारे श्रोता भी लिखकर हम तक पहुंचा रहे हैं। कोटा डोरिया जो साड़ी है इसे कोटा डोरी, कोटा साड़ी, कोटा मसूरिया ऐसे अलग अलग नामों से भी लोग जानते हैं और इन साड़ियों की खासियत ये होती है कि ये बहुत ही हल्की फुल्की और आरामदायक होती हैं। सूती और रेशमी धागों का सुंदर मिश्रण होने के कारण वैसे तो किसी भी मौसम में इन्हें पहन सकते हैं लेकिन गर्मियों में खास तौर पर बड़ा उपयोगी माना जाता है इन्हें पहनने के लिए। और राजस्थान जहाँ की गर्मी बहुत चिलचिलाती हुई होती है तो वहाँ की महिलाएं इसीलिए शायद इसे ज्यादा पसंद करती हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। वहाँ जो लड़कियां हैं वो भी कोटा डोरिया के सूट भी पहनती हैं ताकि गर्मी का जो मौसम है वो आराम से निकल जाए।
2: और जब कोई साड़ी बहुत प्रचलित होती है ना उसके दुपट्टे भी चल जाते हैं।
0: हाँ, कोटा डोरिया के दुपट्टे भी बहुत प्रचलित हैं और बहुत सुंदर होते हैं लाइट शेड के सारे, जो हल्का रंग पसंद करते हैं ना उनके लिए तो बहुत खूबसूरत।
2: आजकल एक फैशन और भी है कि जब कोई खास समारोह होते हैं तो जब कुर्ता पायजामा पुरुष पहनते हैं तो उन पर भी दुपट्टा डालने का जो चलन है तो जैसे और जो चीजें हैं ना बांधनी के डाले जाते हैं तो वहाँ कोटा डोरिया का दुपट्टा भी
0: डाला जाता है और बहुत सुंदर लगता है पुरुषों के साथ में साइड में रखा हुआ ये जो कोटा डोरिया का दुपट्टा है ये भी चार चांद लगाता है उनकी खूबसूरती में। और जालीदार बुनाई होती है इसकी बहुत हल्की, लगभग 250 से लगभग 400 ग्राम और ये बहुत हवादार होता है जो हमारे अभी आपने कहा कि गर्मी में पहनने के लिए सबसे आरामदायक माना जाता है। और बाना की खास बुनाई के कारण इस पर छोटे छोटे चौकोर खाने बनाए जाते हैं जिसे खट अभी आपने बताया खट कहते हैं। उसकी सबसे बड़ी पहचान भी यही है, हाथ से बुनी होने के कारण हर एक साड़ी अपनी अलग सुंदरता लिए होती है।
2: और जितनी भी हैंडलूम या हथकरघा की साड़ियां हैं ना वाकई में वो बड़ी प्यारी लगती हैं देखने में भी और पहनने में भी। और इस तरह से एक साड़ी को जब बनाया जाता है तो बनाने में डिजाइन के अनुसार करीब 10 दिन से लेकर 3 महीने भी लग जाते हैं। कई भी होते ना बहुत
0: बारीक काम होता है और थोड़ा सा खास समारोह के लिए जब बनाई जाती है तो उसमें टाइम लगता ही है।
2: और अपनी शुद्धता और कारीगरी के कारण इनकी जो कीमत है वो भी अलग अलग हो सकती है। हो सकता है आपको कहीं 10,000 से शुरू होकर मिले और कहीं इसके 10 गुना तक भी कीमत पहुंच सकती है।
0: बिल्कुल, और इसे हल्के में भी मिलती है, आप आम स्त्री भी इसे खरीद सकती है और उसके बजट में ये साड़ी शामिल हो सकती है। और कोटा डोरिया साड़ी को उसकी विशिष्ट पहचान के लिए तो जाना ही जाता है, साथ ही इसकी क्षेत्रीय पहचान भी है। इससे असली डोरिया साड़ी की पहचान और बुनकरों के हितों की रक्षा में थोड़ा मदद भी मिलती है और हजारों बुनकर परिवारों की आजीविका इसी उद्योग से चलती भी है।
2: कोटा के पास एक जगह है, छोटी सी कस्बा है कैथून, जहां पर कोटा डोरिया साड़ियां ज्यादा बनाई जाती है, वहीं इसका मुख्य केंद्र माना जाता है। इसके अलावा कोटा के आसपास के कुछ और भी क्षेत्र हैं जहां पर ये साड़ियां बनाई जाती हैं। कोटा डोरिया साड़ी राजस्थान की सांस्कृतिक

0: विरासत और हथकरघा कला का महत्वपूर्ण प्रतीक है। देश विदेश में भी इसकी मांग बनी रहती है मंदाकिनी जी, और
1: बिल्कुल
0: राजस्थान के हस्तशिल्प की को ये वैश्विक पहचान भी दिलवाती है।
1: बिल्कुल। और चंचल, हमने तो ये भी देखा है बड़े बड़े पदों पर काम करने वाली जो महिलाएं हैं ना, कोटा डोरिया की साड़ी को पसंद करती है, क्योंकि
0: जी
1: बहुत ही ग्रेसफुल साड़ी है ये,
0: जी
1: बहुत ही
0: जी
1: अच्छी लगती है पहने हुए। और कोटा डोरिया साड़ी केवल परिधान नहीं बल्कि राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। पारंपरिक बुनाई की एक कला है और बुनकरों की पीढ़ियों से चली आ रही मेहनत का एक जीवंत प्रतीक भी है। और इसकी हल्की सी बनावट, आकर्षक इसकी डिजाइन और उत्कृष्ट हस्तशिल्प से इसे भारतीय वस्त्र परंपरा में एक खास स्थान भी मिल चुका है।
0: तो भाई, क्योंकि गर्मियों में इसे खास पसंद किया जाता है, तो जहां बारिश नहीं है गर्मी है, वहां के लिए थोड़ी सी रिमझिम फुहार पहुंचा दी जाए।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो चंचल, बात चल रही थी
3: कोटा डोरिया साड़ी के लिए और इस बारे में हमारी सखी लिखती हैं कि कोटा डोरिया साड़ी मैंने बहुत पहनी है, बहुत हल्की और गर्मियों में आरामदायक होती है और बहुत ही शानदार लगती है।
2: क्या बात है, बहुत बिल्कुल सही कहा आपने। जिन महिलाओं ने कोटा डोरिया को पहन लिया एक बार, तो उनकी चॉइस में कोटा डोरिया साड़ी हर बार होती है।
3: और जो हमारे सुनने वाले हैं वो भी आश्वस्त हो गए हैं इस बात को लेकर कि कोटा डोरिया साड़ी अगर वो खरीदते हैं तो ये फैसला उनके लिए गलत साबित नहीं हो।
2: हाँ, यानी आपने आश्वासन दे दिया उनको।
3: और आश्वासन को लेकर बहुत सारे संदेश भी आ रहे हैं। आश्वासन की अगर हम बात करें, जिसे अंग्रेजी में अश्योरेंस कहते हैं, इसका सरल अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति को विश्वास दिलाना या भरोसा देना, ये कहना कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा या उसकी सहायता की जाएगी, या किसी कार्य के पूर्ण होने के या परिणाम सही होने के विश्वास दिलाने के लिए भी हम आश्वासन शब्द को इस्तेमाल कर सकते हैं।
2: बिल्कुल सही कहा, जब कोई व्यक्ति परेशान होता है, डरावा होता है या असमंजस में होता है, तब उसे हिम्मत और भरोसा देने वाली बात को ही हम आश्वासन कहते हैं। और आश्वासन मतलब विश्वास पैदा करना होता है चंचल। डर और चिंता किसी की अगर हम कम कर देते हैं, मन में साहस और उम्मीद जगाते हैं, संबंधों को हम मजबूत बनाते हैं, तो ये एक आश्वासन है।
3: इसीलिए हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि मैं हूं ना, आश्वासन के 3 शब्द हमारे जख्मों पर मरहम का काम करते हैं, हमारी परेशानियों को आधा कर देते हैं, किसी भी लड़ाई के लिए हमें बहुत सारी ऊर्जा प्रदान करते हैं।
2: बिल्कुल, और देखा आपने चंचल की जो हमारे टीचर्स होते हैं, हमारे शिक्षक, वो अपने छात्रों को यानी हमें आश्वासन देते हैं कि हम आपको अच्छा पढ़ाएंगे बच्चों, पर आपको पढ़ना है और आपको पास होना है। और डॉक्टर भी जो है पेशेंट को, मरीज को एक आश्वासन देता है उसके परिवार को कि भाई ये ठीक हो जाएगा, बस हमारे कहे से आप दवाएं देते रहिए और इलाज करते रहिए। और हमारे माता पिता हमारे लिए हर वक्त हर परिस्थिति में साथ खड़े रहते हैं और वो हमें आश्वासन देते हैं कि बेटा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।
3: ये जो आपने 3 उदाहरण अभी हमें दिए, एक शिक्षक का, एक चिकित्सक का और एक माता पिता का, सही बात है, ये आश्वासन अगर मैं ना दें तो लगता है कि बहुत कुछ अधूरापन सा या लगे हम हार गए हैं। अगर हमारा कोई प्रियजन अस्पताल में है और डॉक्टर हमें आश्वासन ही ना दे उनके सही होने का, तो वहीं हम चिंता में घुलते रहेंगे कि इनके स्वास्थ्य का क्या होगा
2: और जिंदगी बहुत अजीब सी हो जाती है। अगर हमारे माता पिता हमारा साथ छोड़ दें तो सोचो क्या हो एक बच्चे की जिंदगी। लेकिन वो कभी साथ नहीं छोड़ते हैं, जिंदगी के आखिरी पल तक वो अपने बच्चे का साथ देते हैं।
3: इसीलिए हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आश्वासन भरोसा तसल्ली या पक्का विश्वास दिलाना है, किसी व्यक्ति को उसकी चिंता या शंका से मुक्त करने के लिए आश्वस्त करना कि सब ठीक हो जाएगा या तुम्हारा कार्य निश्चित रूप से पूरा कर लिया जाएगा, विकट परिस्थितियों में अगर कोई ये सब कुछ कहता है तुम निश्चिंत रहो तुम्हारा काम हो जाएगा, तो ये सबसे बड़ा आश्वासन होता है उस पल के लिए।
2: बिल्कुल आपने सही कहा, हम किसी ऑफिस में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं या नौकरी करते हैं, हमारे साथी लोग हमें आश्वासन दे देते हैं, भाई आपका ये काम मैं कर दूंगी, तो हम निश्चिंत हो जाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि जब व्यक्ति बहुत परेशान होता है तो एक छोटा सा आश्वासन डूबती नैया को किनारा सा लगता है। क्यों दुखी हो, मैं हूं ना, ये शब्द दुखती रग को आराम देते हैं। आश्वासन अगर देकर निभाया जाए तो कुछ बात और है, नहीं तो ऐसे कहकर मुकर जाने वाले तो बहुत सारे लोग हैं।
3: आगे हमारे श्रोता

0: पर लिखते हैं एक अन्य संदेश में कि आश्वासन विश्वास रूपी एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसके सेवन से सामने वाले को भरोसा बैठ जाता है और तसल्ली होती है कि उसके द्वारा होने वाला कार्य निश्चित रूप से पूर्ण हो जाएगा। जब परिस्थिति उनके पक्ष में होती है तब एक मजबूत व्यक्ति का आत्मविश्वास यानी मनोबल इससे मजबूत हो जाता है।
1: वही एक श्रोता ने लिखा है कि आश्वासन इंसानियत की वो भाषा है जो बिना किसी लागत के किसी का जीवन बदल सकती है। हमें दूसरों को ढांढस बंधाने में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, लेकिन साथ ही ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शब्द सिर्फ होठों से नहीं निकले बल्कि वे सीधे हमारे दिल से आए और हमारे कर्म में बदल जाएं। ऐसे बहुत से कम लोग हैं चंचल, है ना?
0: सही कहा आपने।
1: और करनी में फर्क हो जाता है।
0: हाँ, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाता है तो उसका साथ आप कभी ना छोड़ें। आगे एक संदेश में हमारे श्रोता ने लिखा है कि आश्वासन शब्द की सार्थकता उसकी प्रामाणिकता में है। यदि इसके पीछे सच्ची सहानुभूति और प्रयास करने की नियत है तो ये संजीवनी की तरह काम करता है, लेकिन यदि ये केवल एक जिम्मेदारियों से बचने का जरिया मात्र बनकर रह जाए तो मानसिक चोट भी पहुंचाता है। यानी आश्वासन देने से पहले अपनी क्षमता और नियत को टटोलना बेहद ही जरूरी है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और वही एक श्रोता लिखती हैं कि आत्ममंथन आत्मनिरीक्षण करते हुए ईश्वर का हमें धन्यवाद देना चाहिए और साथ ही जो है ये भी देखना चाहिए कि हमने किसे आश्वासन दिया है, क्योंकि डूबते को तिनके का सहारा, ये जो कहावत है वो बहुत महत्वपूर्ण है।
0: चलिए अब एक गीत सुन लेते हैं।

0: हाँ तो रुकिए तो कहा है लता मंगेशकर जी ने, लेकिन हम नहीं रुक पाएंगे क्योंकि अब बात आ गई व्यंजन पर। चंचल
1: जी
0: क्या बनाने वाली हो?
1: देखिए, बहुत सारी रेसिपीज आई हैं।
0: देखिए बरसात के दिनों में एक रेसिपी हमें इतनी खास अच्छी मिली है कि बिहार झारखंड में अनरसे के साथ साथ ये व्यंजन खूब बनाया जाता है। ऐसा हमारे एक श्रोता लिखते हैं, खिरौरी दुधौरी, क्या नाम है, खिरौरी दुधौरी। इस नाम के अनुसार ही चावल को दूध चीनी के साथ पका लेते हैं। चावल इतना पकाना है कि वो आपके हाथ से दब जाए और दूध भी सूख जाए, ठंडा हो जाए, और उसे किसी बर्तन की सहायता से खूब मसल के डो के रूप में कर लीजिए। हाथ में थोड़ा घी लगाने के बाद गुलाब जामुन जैसा शेप बना लीजिए और तेज आँच में घी या तेल में इसे सुनहरा तल लीजिए। अगर आपको इसे सूखा खाना है तो इसे आप डार्क ब्राउन तल लें, और अगर चाशनी में डालना है तो इसे हल्का गुलाबी सेक लें। गुलाब जामुन की तरह हल्के चाशनी में खिरौरी को कुछ देर डूबा रख दे, ये गुलाब जामुन की तरह ही स्वादिष्ट लगेगा और सूखा वाला भी खाने में बहुत अच्छा लगता है, ऊपर से कुरकुरे और बेहद सॉफ्ट। ध्यान रहे इसे बहुत नहीं मसलना है, इसे हाथों से मसलें, उसमें चावल के छोटे छोटे टुकड़े दिखाई देने चाहिए। सूखा वाले में चीनी की मात्रा थोड़ा बढ़ा दें तो चाशनी वाले में चीनी की मात्रा थोड़ा कम कर दें। आँच धीमा पर तलने में तेल पिएंगे और तेल में बिखर भी जाएंगे, इसका ध्यान रखना है।
1: बिल्कुल। और एक बड़ी अच्छी रेसिपी हमारे पास आई है, और इसमें हमारे श्रोता ने बताया है कि कच्चे चावल से झटपट और स्वादिष्ट नाश्ता बनाने के लिए 1 कप चावल को धोकर 1 घंटा भिगोएं। पानी को निथार कर चावल, 2 चम्मच दही, स्वाद अनुसार नमक मिलाकर इसे मिक्सी में पीस लें। इसमें 1/2 कप सूजी और कटी हुई सब्जियां जिसमें प्याज, गाजर, अन्य सब्जियां भी आप डाल सकते हैं। तवे पर थोड़ा सा तेल लगाकर बैटर को फैलाएं और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेक लें। कच्चे चावल और आलू का चटपटा नाश्ता तैयार करने के लिए ये सुबह के नाश्ते के लिए बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। और अब सुन लेते हैं कार्यक्रम का ये आखिरी गीत।
0: बिल्कुल।

0: जी, और अब तो ये आश्वासन हम भी अपने श्रोताओं को दे रहे हैं कि उनके लिए हम बहुत कुछ हैं और श्रोता हमारे लिए बहुत कुछ हैं।
1: बहुत बड़ा सहारा है हमारे प्रोग्राम को लोकप्रिय बनाने के लिए।
0: बिल्कुल, लेकिन अब वक्त जो है हमें इजाजत नहीं दे रहा कि इससे कार्यक्रम को और बढ़ाया जाए और बातचीत की जाए। तो सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी और
1: चंचल वर्मा को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: आज के मेहमान। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं जाने माने लेखक हरिशंकर राढ़ी से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आज सुनिए इस बातचीत का दूसरा भाग।
1: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों,

0: आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है वरिष्ठ साहित्यकार, कवि, कथाकार, व्यंग्यकार, गजलकार, निबंधकार, आलोचक, समीक्षा लेखक और अनुवादक संपादक हरिशंकर जी राठी साहब को। हरिशंकर जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका मंदाकिनी जी मुझे यहाँ बुलाने के लिए।
0: आज हम बात कर रहे हैं आपकी साहित्यिक कृतियों पर कि आपने क्या लिखा, कैसे लिखा, क्यों लिखा। राठी साहब, एक व्यंग्यकार और यायावर ललित निबंधकार कैसे बन जाता है, ये मैं जानना चाहती हूँ।
1: ये आपने ऐसा प्रश्न पूछा है कि सही पूछिए तो इसका सही उत्तर मेरे पास भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ललित निबंध और व्यंग दो परस्पर विरोधी ध्रुव हैं।
0: जी,
1: एक में भाषा का तंज होता है, कसैलापन होता है, एक मीठी सी मार होती है, किसी को ऐंठना होता है, तोड़ना होता है, और दूसरी तरफ ललित मंद है जिसके साथ ललित लगा हुआ है, लालित्य है जिसमें, मिठास है जिसमें।
0: जी,
1: तो इसकी भाषा बड़ी मृदु होती है, बड़ी कोमल होती है, ये हृदय स्पर्शी होता है, हृदय पक्ष को लेके चलता है।
0: जी,
1: व्यंग मस्तिष्क पक्ष को लेके चलता है। तो ये दोनों विधाएं परस्पर विरोधी हैं, और मुझे भी लगता है कि अपने साहित्यिक यात्रा में, हो सकता है कि मेरी जानकारी कम हो, मैं किसी ऐसे साहित्यकार को नहीं जानता जिसने व्यंग और ललित निबंध दोनों एक साथ लिखा हो।
0: जी बिल्कुल।
1: लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैं ये खुद नहीं जान पाता हूँ कि मैं व्यंग से ललित निबंध में कब ट्रांसफर कर जाता हूँ, ये कायांतरण कब होता है। इस पर मैंने सोचा, कुछ वस्तुएं मन को पीड़ा पहुंचाती हैं, जो विसंगतियां होती हैं उस पर व्यंग बनता है, और कुछ चीज़ें दिल को छू जाती हैं, बड़ा विस्तार मांगती हैं, बड़ी मिठास होती है
0: जी।
1: हमारी यादों से जुड़ी होती हैं। थोड़ा सा मैं नॉस्टैल्जिक हूँ, मुझे अपना बचपन और गांव गिराव बहुत याद आता है, वहाँ की मिट्टी मेरे साथ अभी भी चली आ रही है
0: जी।
1: तो परंपराएं जो पहले हुआ करती थी, मैं परंपराओं की बात कर रहा हूँ, रूढ़ियों की बात नहीं कर रहा हूँ
0: जी, बिल्कुल,
1: जो अच्छी परंपराएं थी उनकी बात मैं कर रहा हूँ। तो ललित निबंध में बड़ी मिठास होती है, जो पक्ष हृदय स्पर्शी लगता है, मुझे लगता है मैं उस पर ललित निबंध लिखता हूँ, और वहाँ पर मेरी भाषा, मुझे लगता है कि मेरे ऊपर संस्कृत का, अंग्रेजी का और हिंदी का प्रभाव तो है ही, मुझे लगता है कि वहाँ मुझे संस्कृत का प्रभाव ज़्यादा पड़ जाता है, क्योंकि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें व्यंग नहीं लिखे गए हैं, उसमें सब कुछ मीठा मीठा अच्छा अच्छा ही लिखा गया है। इसे मैं एक तो संस्कृत साहित्य की देन मानता हूँ, और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मेरा हृदय पक्ष प्रबल है। ये बड़ी विचित्र बात है कि मैं व्यंग लिखता हूँ, लेकिन हृदय पक्ष मेरा प्रबल है, और उस हृदय पक्ष के वश में जब होता हूँ मैं, तो मैं ललित निबंध लिखता हूँ। और मैंने ललित निबंध लिखना बड़े देर से शुरू किया, बहुत देर से, उसकी बड़ी रोचक कहानी है
0: जी, वो जानना चाहेंगे हम कहानी। लेकिन मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि व्यंग्य का तीखापन ललित निबंध की मिठास को
1: जी
0: कैसे प्रभावित कर लेता है।
1: जी जी, ये जो है मेरे दो ललित निबंध संग्रह आ चुके हैं, एक तो है कुल्हड़ की चाय पहला, जो कि NBT से राष्ट्रीय पुस्तक न्यास से छपा है
0: जी,
1: और दूसरा है नयन अरुबानी, वो सर्वभाषा ट्रस्ट से प्रकाशित हुआ है। तो मेरे पाठक, मेरे कुछ आलोचक और साहित्यकार मित्र इस बात को रेखांकित करते हैं कि आपके ललित निबंधों में व्यंग मिल जाता है। ललित निबंध में व्यंग की आवाजाही है, यहाँ तक कि NBT की जो मेरी कुल्हड़ की चाय आई है उसके संपादक ने भी इस बात को कहा था, शायद ही आपके किसी ललित निबंध में व्यंग मिलेंगे
0: जी।
1: लेकिन जो व्यंग मेरा मूल स्वभाव है, वह थोड़ा सा रूप बदल करके ललित निबंध में आ जाता है, और लोग कहते हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो क्या समझता हूं, मैं क्या कहूंगा, कि वह उसमें एक स्वाद में वृद्धि कर देता है, और वो उसमें एक तरह से व्यंग का तड़का, जैसा उसको कहते हैं, व्यंग का तड़का आपने दिया है, हालांकि मैं जानबूझ के नहीं देता हूं। मेरा मानना है कि जो लेखन अनायास होता है, बिना किसी परिश्रम के होता है, वही लेखन सफल होता है। अगर आप प्रयास करके लिखते हैं तो दूर हो जाता है, तो अपने आप वह व्यंग उसमें आ जाता है, और जहां भी संगतियां दिखती हैं, लेकिन उसकी भाषा जो होती है वो बड़े मीठे व्यंग की होती है। तो ये आवाजाही दोनों में चलती रहती है, और कहीं कहीं मेरे व्यंग में भी मेरा ललित निबंध एक दो लाइन आ जाता है, वो आवाजाही हो जाती है
0: जी। तो व्यंग्य का तीखापन आ ही जाता है आपके ललित निबंधों में, तो ललित निबंध की कोई निश्चित सीमा या ढांचा होता है क्या?
1: एक तो हमारे यहाँ ललित निबंध लिखने वाले कुछ ही लोग हुए हैं, हजारे प्रसाद द्विवेदी जी और विद्यानिवास मिश्र जी, बाद में कुबेरनाथ राय जी, विवेकी राय, श्याम सुंदर दुबे, और भी कई लोग लिख रहे हैं व्यंग, अभी भी लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं। लेकिन अगर जैसे व्यंग में हम भीष पितामह

0: परसाई जी को मानते हैं, उसी तरह से अगर ललित निबंध की बात करें उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी और विद्यानिवास मिश्र जी हैं। विद्यानिवास मिश्र जी बहुत बड़े ज्ञानी थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी के भी ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, मैं तो उनके सामने बहुत तुच्छ हूँ, कुछ नहीं है, उतना अध्ययन उतना नहीं है मेरा। इनके निबंधों में अध्ययन बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन लोक से जुड़ा रहा है। जैसे आप विद्यानिवास मिश्र जी के मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसको आप पढ़ें तो शुरू करने के बाद बिना समाप्त किए आप नहीं रह सकते। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कुटज है, वो एक छोटे से पौधे को लेकर के न जाने कितने लोगों की यात्रा करवा देता है। ये लोग मुझे लिखते रहे हैं, तो सीमा इनकी भी कोई नहीं रही है। एक इसका अगर आकार की बात करें तो ये लगभग 3,000-3,500 शब्दों का लिखते हैं, या थोड़ा उससे बड़ा भी हो सकता है। इसका जहाँ तक मैंने अध्ययन किया, लोक से जुड़ाव होना चाहिए, इसमें हृदय पक्ष भारी होता है, इसमें आप वैज्ञानिक तर्क नहीं ढूंढ सकते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक तर्क कड़वा होता है, वो साहित्य में नहीं। साहित्यिक सत्य और होते हैं, वैज्ञानिक सत्य और होते हैं। तो ललित निबंध की सीमा कोई नहीं है, उसकी सीमा इतनी है कि वह लोक को, परंपरा को, आपके अतीत को, अच्छी परंपराओं को जोड़ करके कुछ ज्ञान दे सके और आपको सहज प्रवाह में ले चले, आपके हृदय को जोड़ता चले, तो वही उसकी सीमा है।
1: राडी साहब, बातचीत तो हमारे बीच चल ही रही है, इस बीच एक गीत सुन लिया जाए।
0: जी जरूर, उमराव जान फिल्म का एक गाना है, गजल है, गजल मुझे बहुत पसंद है, आशा भोसले की, इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजार।
1: क्या बात है, क्या बात।
0: जी जी जी,
1: आइए आपकी पसंद की ये गजल सुनते हैं।

0: हरिशंकर जी, यहाँ पर हम बात उस घुमक्कड़ी की भी कर लेते हैं
1: जी।
0: क्या घुमक्कड़ी का अनुभव निबंध में कल्पनाशीलता को बढ़ाता है?
1: जी हाँ, निश्चित रूप से। मैं तो मानता हूँ कि घुमक्कड़ी का असर साहित्य में ही नहीं, साहित्य, संगीत और किसी तरह की कला हो, और उसको छोड़िए व्यक्ति के निजी जीवन में बहुत रचनात्मक प्रभाव छोड़ता है। अगर आपने भ्रमण किया है, यात्रा कर रहे हैं और यात्रा को यात्रा की दृष्टि से कर रहे हैं, तो चाहे आप ललित निबंध लिखें, चाहे आप कहानी लिखें, चाहे आप व्यंग्य लिखें, आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्रोत नज़र आता है। आप किस यात्रा में कहाँ कौन सा बिंदु पकड़ लेंगे और वह बिंदु किस रचना के रूप में पलवित हो जाएगा, यह आप नहीं जानते हैं। बस आपके अंदर वो कल्पनाशीलता होनी चाहिए, वो चिंतनशीलता होनी चाहिए कि उसको आप एक उचित आकार दे पाएं, उसको उस संबंधित भाषा से जोड़ करके जनता से जोड़ पाएं, पाठक से जोड़ पाएं। तो यायावरी का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। मेरा एक ललित निबंध है कालिदास की उज्जैनी। मैं उज्जैन की यात्रा पर गया था। उज्जैन की कई बार यात्राएं मैं कर चुका हूं। तो उज्जैन की यात्रा में मैं एक बार वहां के एक मंदिर के दर्शन के लिए एक जंगल में पहुंच गया। तो जब वहां मैं पहुंचा तो वहां से देखा मैं कि उस जंगल में मुझे तुरंत कालिदास याद आ गए। कालिदास का एक खंड काव्य है मेघदूत। कालिदास मेरे बड़े प्रिय कवि रहे। कालिदास का मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम, मैं इसको अनपैरेलल मानता हूँ, इसके बराबर कोई नहीं। तो कालिदास उसमें मेघ को उज्जैनी के रास्ते भेजते हैं यक्षिणी के पास। तो जिस प्रकार के वनों का वर्णन वो करते हैं, मुझे उस जगह पर दिखने लगा, और उसी को लेकर के मैंने अपना ललित निबंध लिखा कालिदास की उज्जैनी। वो मेरे ललित निबंध संग्रह में है। तो मैं तो पूरा का पूरा श्रेय उस घुमक्कड़ी को ही देता हूँ। ना मैं वहाँ जाता, ना वो मेरा ललित निबंध मिलता
0: जी,
1: और मेरे पाठकों ने, मेरे आलोचकों ने उसकी प्रशंसा की कि वो कहाँ से यात्रा और कहाँ से पूरा कालिदास को लेकर चल पड़े। वो पूरा उसमें कालिदास आ जाते हैं, कालिदास की अक्षरी आ जाती है, कालिदास का उज्जैनी का वर्णन आ जाता है, उस वन में क्या क्या होता है, अभिशारिकाएं जाती हैं, कैसे जाती हैं, बादल से क्या कहते हैं। कालिदास विलक्षण व्यक्ति, उनकी कल्पनाशीलता का कोई जवाब नहीं है, और वो मुझे वहीं जाकर के मिला।
0: तो आपकी घुमक्कड़ी और आपकी जो अत्यधिक पठन पाठन की जो प्रवृत्ति है, गहन अध्ययन करने की प्रवृत्ति, एक लेखक को बहुत समृद्धशाली बना देती है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
1: जी, जी।
0: आपका ललित निबंध संग्रह जो नयन अरुबानी है उनकी, उसकी समीक्षा में पढ़ रही थी
1: जी, जी।
0: और उसमें समीक्षक लिख रहे हैं कि ये संग्रह समकालीन हिंदी गद्य संवेदना और विवेक का दुर्लभ संतुलन है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में?
1: जी, ये तो आलोचक या समीक्षक की सदा सहायता है कि उन्होंने मेरे निबंध संग्रह के बारे में इतने अच्छे विचार रखे। नयन अरुबानी तुलसीदास के रामचरितमानस की एक अर्धाली है। गिरा अनयन नयन बिनु बानी, ये सीता स्वयंवर से पहले जनक वाटिका का प्रसंग है। राम और लक्ष्मण वाटिका में घूम रहे हैं, सीता की सखियां देखती हैं और वो सीता से आकर के कहती हैं कि श्याम गौर की मैं कहूँ बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी, कि उनकी सुंदरता का वर्णन मैं कैसे करूँ, क्योंकि आंखों के पास जुबान नहीं है, गिरा नहीं है, और जबान के पास, जीभ के पास नयन नहीं है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन अचानक मुझे एक दिन लगा कि नहीं, नयनों की भाषा बड़ी तगड़ी होती है। मैं तुलसीदास का बड़ा सम्मान करता हूँ। वो भले करें कि गिरा अनयन नयन बिन बानी, उनके हिसाब से गिरा जो है और नयन एक दूसरे से कटे हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता कि नयन बिन बानी नहीं है, नयन और बानी है, और नयनों की भाषा के लिए शाब्दिक भाषा की आवश्यकता नहीं, वो सीमा से परे है। तो उस प्रसंग को लेकर के मैंने उसको लिखा, उसमें और भी चीज़ें आई हुई हैं। अच्छा, मैं बताता लूँ कि ललित निबंध में श्रृंगार का बड़ा महत्व होता है। हम कितने भी आपाधापी कुछ कर लें, लेकिन श्रृंगार, या उसको आप सीधे सरल शब्दों में कहें तो प्रेम का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। जिसके जीवन में प्रेम है उसको किसी भी तरह की कमी दुखी नहीं कर सकती है
0: जी।
1: तो नयन प्रेम के प्रतीक हैं, ललित निबंध में प्रेम आना चाहिए, उस चीज को लेकर मैंने लिखा था गिरा अनयन नयन बिनु बानी। और उसमें इस तरह के बहुत सारे निबंध हैं जो हमारी परंपरा को, हमारे संवेदना को, हमारी दृष्टि को, हमारी जड़ों को जोड़ते हैं, सींचते हैं। तो उससे प्रभावित होकर के समीक्षक ने ऐसा लिखा होगा।
0: प्रभाव होना एक अलग है, लेकिन पढ़ने के बाद लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात है जो समीक्षक को अपील करती है।

0: तब
1: जी
0: जाकर
1: जी
0: एक
1: जी
0: इतनी
1: जी
0: बड़ी बात कही जाती है।
1: जी
0: तो राणी साहब अपनी पसंद का एक गीत और बताइए।
1: जी मेरे पसंदीदा गायकों में किशोर कुमार जी भी रहे हैं। बड़ी मस्त आवाज़ उनकी है, बड़ा मस्त गाते हैं। उनका एक गाना है अजाराना फिल्म से, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा।
0: जी
1: यह गाना मुझे बहुत ही पसंद है, तो मैं इसे सुनना चाहूँगा।
0: आइए सुनते हैं।

0: क्या इशारा।
1: हरिशंकर जी, ये बताइए कि तेज रफ्तार और सोशल मीडिया के दौर में ललित निबंध लेखन के सामने क्या चुनौतियां आ गई होंगी, या क्या चुनौतियां रही होंगी या हैं आज भी?
2: ललित निबंध के सामने मुझे एक चीज, एक चुनौती लग रही है कि इसको कई लेखक और कई आलोचक भी मानते हैं कि ये विलुप्त प्राय प्रजाति हो गई है, विलुप्त विधा हो गई है, इसके लिखने वाले कम हैं
1: जी,
2: बहुत कम लोग लिखते हैं। मेरा खुद ही कम से कम आप मान के चलिए कि 20 साल के लेखन के बाद मैं ललित निबंध में आया
1: जी।
2: तो ललित निबंध में लेखन कम हो रहा है, एक तो एक दौर ऐसा चल रहा है, ये संक्रमण का दौर है ये, जिसमें लोग प्रसिद्धि बहुत जल्दी पाना चाहते हैं, और वो प्रसिद्धि तरह तरह के राजनीतिक विमर्श, गुटबाजी और इन सब में है। तो साहित्य की और विधाओं में चीज़ें चल रही हैं, ललित निबंध में किसी तरह की गुटबाजी का कोई चांस नहीं होता है, क्योंकि ये हृदय पक्ष है, इसमें धैर्य की आवश्यकता पड़ती है, और जो धैर्यवान व्यक्ति होगा, बहुत पढ़ेगा, वही ललित निबंध लिख पाएगा। जो कम पढ़ता है, कम सोचता है, जिसके दिमाग में प्रेम पक्ष नहीं घुस पाता है, वो शायद ललित निबंध नहीं लिख पाएगा। तो ललित निबंध के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि इसके लेखक कम रह गए हैं। हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा कि पाठक इसका मुरीद आज भी है, पढ़ते हैं लोग।

0: अच्छा
1: जी पढ़ते हैं लोग, मैं अपने बारे में नहीं कहता। मेरी कुल्हड़ की चाय
0: जी
1: का एक संस्करण खत्म हो गया और दूसरा संस्करण आ गया है, जबकि व्यंग दूसरे संस्करण कम आए हैं, तो कहीं ना कहीं पढ़ा तो जा रहा है ललित निबंध।
0: तो कुल्हड़ की चाय किस तरह से लिखी गई उसके बारे में थोड़ा बताइए हमें, हमारे श्रोता भी सुनना चाहेंगे।
1: जी ये आप देखेंगे कि बहुत ही सामान्य विषय लिया गया है
0: जी।
1: शायद ऐसे विषयों पर, ऐसे शीर्षकों पर ललित निबंध नहीं लिखे गए हैं। सब इससे पहले जो मेरा पहला ललित निबंध था, क्या करते हो कालिदास, पहला निबंध मेरा वो था। इसको बताने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा बताना जरूरी है
0: जी।
1: एक दिन मैं, एक सब्जी होती कुंदरू,
0: कुंदरू की,
1: उसे मैं लाया बाजार से और श्रीमती जी ने बनाया, मैं उसे खा रहा था। अचानक मेरे दिमाग में आया कि कुंदरू को संस्कृत में बिंब कहते हैं, और जब बिंब कहते हैं तो कालिदास मेरे प्रिय है। मैंने बताया आपको, कालिदास ने अपने मेघदूतम में एक छंद लिखा है, यक्षिणी का वर्णन करते हैं वो। बादल से कहते हैं कि तुम जाओगे और पर्वत पर मेरी प्रेयसी यक्षिणी मिलेगी। शंका उनको होती है पहचाने का कैसे, तो उसका लक्षण बताते हैं। तो वो उसका लक्षण बताते हैं, उसके श्लोक की वो छंद की पहली लाइन है
0: जी।
1: तन्वी श्यामा शिखरी दसना पक्व बिंबा धरोष्ठी
0: जी,
1: मध्य क्षमा चकित हरड़ी प्रेक्षणा निम्न नाभि। श्लोक लंबा है इसमें, तो पहले आता है पक्व बिंबा धरोष्ठी, पके हुए बिंब यानी कुंदरू के फल के समान
0: जी।
1: फिर वो सब्जी वहीं रह गई बनी हुई और मुझे वो पूरा कालिदास का मेघदूत दिखने लगा, उनकी पूरी यात्रा दिखने लगी। और मुझे हैरानी हुई कि जो लोग कालिदास के छंद को पढ़े होंगे वो पहले कुंदरू को जानते हो ना जानते हो, लेकिन आप जान जाएंगे। तो मेरे मन में यही वहाँ पर एक विचार का उदा, और मैंने कहा क्या करते हो कालिदास। अंतिम लाइन उसकी है कि तुम्हें प्रसिद्ध तो करना था यक्षिणी को और तुमने प्रसिद्ध कर दिया कुंदरू को
0: जी।
1: तो ये जब मैंने लिखा और मैंने किसी को दिया, बड़े साहित्यकार को, तो वो बड़े प्रसन्न हुए। उसके बाद कोरोना काल में मैं कहीं कॉलोनी के बाहर जा रहा था, उस समय आना जाना बंद था। मैं चाय का बड़ा शौकीन हूँ, चाय पीता हूँ
0: जी।
1: तो कॉलोनी के बाहर एक कुम्हार की लड़की कुछ अपने मिट्टी के बर्तन बेचती थी, तो मेरा आना जाना बंद हो गया था, हर जगह सबका बंद हो गया था। तो वहाँ से मैं ले आया कुल्हड़, वो कुल्हड़ बेच रही थी, तीन कुल्हड़ लाया, कुल्हड़ की चाय बनवा के पिया। तो उस कुल्हड़ की चाय के पीने के साथ साथ मेरे कुल्हड़ को लेकर के बहुत सारे विचार पैदा हुए, और उसमें जो गंभीर बात या संदेशप्रद बात यह आई कि धीरे धीरे हम अपनी मिट्टी से दूर होते जा रहे हैं। इस ललित निबंध में आपको व्यंग मिलेगा, कई जगह मिलेगा कि देसी चीजें समाप्त होती जा रही हैं, हम थर्मोकोल और प्लास्टिक पर आते जा रहे हैं, पर्यावरण को कितना नुकसान कर रहे हैं, और अंततः क्या होता है कि वो कुल्हड़ की मिट्टी आती है ताल से, तालाब से चिकनी मिट्टी होती है, उस पर कब्जे हो रहे हैं, उसका पट्टा हो रहा है, और अब कुल्हड़ आपको कुम्हार का बनाया हुआ नहीं मिलता है। तो मैं उस पर व्यंग लिखा, उस व्यंग आया, लिखा नहीं व्यंग आया कि अब देसी और मिट्टी से जुड़ी चीज़ें खत्म हो रही हैं, उसको भी बड़ी कंपनियां बना रही हैं। अभी हम सौभाग्यशाली हैं कि अपने देश की मिट्टी का कुल्हड़ मिल जा रहा है, 10-20 साल बाद आयातित होगा, लोग पीकर फेंकेंगे, और सभ्यता के एक युग के बाद जब कभी जमीन की खुदाई होगी, तो जब ये मृत भांडे निकलेंगे, तो उस समय के लोग कहेंगे कि उस समय के लोग मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे, कितने असभ्य थे। तो ये व्यंग जो है, कितना मीठा व्यंग इसमें आया। यहाँ से फिर ये जो व्यंग मेरे अच्छे निकले, ललित निबंध अच्छे निकले, और फिर जो है वो देश की बड़ी पत्रिकाओं ने उसको प्रकाशित करना शुरू किया, अक्षरा, नवनीत, और वहाँ से फिर मैं ललित निबंध की लाइन में आ गया। और आज मुझे, मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे व्यंग ज़्यादा प्रिय है या ललित निबंध
0: जी। तो आपको अपनी सभी विधाएं पसंद हैं, क्योंकि एक लेखक जिस जिस विधा में हस्तक्षेप रखता है, और फिर अक्षरा और नवनीत जैसी राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं में अगर इस तरह के निबंध छपते हैं, तो उसका पाठक वर्ग भी कितना विस्तृत होगा,
1: जी, जी,
0: ये हम समझ सकते
1: जी,
0: हैं जी। तो एक गीत हो जाए पहले।
1: जी हाँ बिल्कुल, मुझे एक गीत बहुत पसंद है मोहम्मद रफी साहब का, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे पगला
0: कभी भी। क्या बात
1: जी,
0: है फिल्म पगला कहीं का
1: जी,
0: ये गीत हम सुनते हैं और उसके बाद हम आगे की आपकी यात्रा पर बात
1: जी,
0: कर
1: जी,
0: पाएंगे
1: जी जी जी। हाँ मैं भी सुनना पसंद करूंगा।
2: तुम

0: सबसे बड़ी बात कि एक लेखक जब लिखता है तो उसकी विधाओं को भी भुलाना आसान नहीं होता है, है ना हरिशंकर जी? आप भी जिस तरह से लेखन कर रहे हैं उसे जिसने भी पढ़ लिया है तो भूलना असंभव ही है। अभी एक बहुत महत्वपूर्ण आप काम कर चुके हैं, हिंदी के प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉक्टर रामदर्श मिश्र
1: जी
0: को लेकर
1: जी
0: आपने
1: जी
0: बहुत बड़ा काम किया है। तो आपके और रामदर्श मिश्र जी के बीच जो साहित्यिक संवाद और वैचारिक आत्मीयता बढ़ी, ये कैसे शुरू हुई पहले हम ये जान लें, उसके बाद आपने उनके साथ क्या क्या कार्य किए हैं वो उसका जिक्र हम करेंगे।
1: जी जी जी मुंताग्नि जी, इसे मैं अपने जीवन का बड़ा सुखद पक्ष मानता हूँ।
0: जी एक महान पल होंगे मुझे तो लगता है आपके जीवन के।
1: जी जी बहुत बहुत सुखद पक्ष रहा है मेरा कि मैं आदरणीय रामदर्श मिश्र जी के सानिध्य में रहने का मुझे मौका मिला है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है और मैं सौभाग्यशाली रहा हूँ कि उनका स्नेह मुझे बहुत मिला है। जैसा कि आपने पूछा तो मेरे अंदर का छात्र विद्यार्थी भी जिंदा है, मैं जब तक पढ़ ना लूँ मुझे चैन नहीं मिलता है। मेरी सबसे प्रिय हॉबी पढ़ना है तो पढ़ता रहता। रामदर्श मिश्र जी को मैंने बहुत पढ़ा था लेकिन व्यंगकार कहिए आप जो भी कहिए, होने के बावजूद मैं थोड़ा सा संकोची स्वभाव का हूँ। मुझे अपने आप को प्रस्तुत करने में या मिलजुल करके कुछ काम निकलवाने में बड़ा संकोच होता है, कभी ऐसा नहीं कर पाता मैं। तो सन 2002 में हमने एक पत्रिका निकालना शुरू किया था, समकालीन अभिव्यक्ति, त्रैमासिक पत्रिका। आज इस पत्रिका की थोड़ी पहचान बनी हुई है, निकल रही लगातार 2002 से। तो उस पत्रिका के लिए मैंने रामदर्श मिश्र जी को एक पत्र लिखा। मुझसे कई लोगों ने कहा था कि मिश्र जी से मिलिए आप, संकोच बस मैं नहीं गया। तो बहुत बड़े हस्ती थे, बहुत बड़े साहित्यकार, हम छोटे से तब नए तो संकोच होता था। तो उनको मैंने पत्र लिखा, तो पत्र लिखने के मेरे ख्याल से साधारण पत्रों का जमाना था वो, 10 दिन के अंदर मुझे उनकी रचना मिल गई। मैं बड़ा हैरान हुआ, एक अच्छी नई कहानी लिखी हुई
0: जी।
1: तो फिर मैंने उनको पत्र लिखा और धन्यवाद दिया। और हमारे पास उनका कोई आज की तरह से इंटरनेट का जमाना था नहीं, नया फोटो और वो नहीं था, वो मांगा मैंने। तो उन्होंने लिखा कि राढ़ी जी वैसे परिचय की आवश्यकता तो नहीं है लेकिन आप कह रहे तो दे रहा हूँ मैं। तो बड़े प्रभावित हुए कि एक नई सी पत्रिका जिसका कोई नाम इतना नहीं है उसके लिए इतना

0: साहित्यकार हमें ये तुरंत कहानी दे दे रहा है, राष्ट्रीय स्तर का साहित्यकार। फिर कुछ दिनों बाद मैं और मेरी पत्रिका के साथ में जो संपादक जी हैं उपेंद्र कुमार मिश्र जी, हमने प्रोग्राम बनाया कि चला जाऊँ, उनसे बात की तो बोले आप आ जाइए। और जब उनके यहाँ गए, मिश्र जी समय के बड़े पाबंद थे और समय का पाबंद मैं भी हूँ, वहाँ जब पहुँचे तो उस समय उनकी उम्र करीब करीब 87-88 साल थी।
1: अच्छा,
0: वो अभी 101 वर्ष पूरा करके
1: जी
0: गोलोकवासी हुए अभी 31 अक्टूबर को।
1: जी
0: जब हम गए तो अपने दरवाजे के गेट पर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे हमारा
1: जी।
0: तो कहा दुनिया में कितने महान लोग होते हैं। और फिर ले गए, पहली ही मुलाकात में उन्होंने हमको इतना सहज बना दिया कि उनसे जुड़ते गए, उनकी बहुत सारी रचनाओं को पढ़ा, उन पर बहुत सारी मैंने समीक्षाएं लिखी और उन समीक्षाओं को बड़ा पसंद करते थे। 2-3 साल बाद में उनसे एक साक्षात्कार लिया अपनी पत्रिका के लिए, और उस साक्षात्कार के बारे में उनका कहना था, उनका लिखित मेरे पास है, कि मेरे जीवन के साक्षात्कारों में ये सर्वाधिक प्रिय साक्षात्कार है।
1: क्या बात है।
0: और उसके बाद ऊपर तमाम विधाएं प्रकाशित हो

0: रचनाओं को पढ़ा, उन पर बहुत सारी मैंने समीक्षाएं लिखी और उन समीक्षाओं को बड़ा पसंद करते थे। 2-3 साल बाद मैं उनसे एक साक्षात्कार लिया अपनी पत्रिका के लिए, और उस साक्षात्कार के बारे में उनका कहना था, उनका लिखित मेरे पास है, कि मेरे जीवन के साक्षात्कारों में ये सर्वाधिक प्रिय साक्षात्कार है।
1: क्या बात है।
0: और उसके बाद ऊपर तमाम विधाएं प्रकाशित हो चुकी थी, तमाम लोगों ने साक्षात्कार लिए थे। तो एक बार ऐसे बातचीत में, अब उनके पास मैं जब मन होता था फ़ोन करता था, चला जाता था। तो उन्होंने कहा कि एक विचार है इसका, तो मैंने कहा मैं इसको करूँगा, तो उन्होंने स्वीकृति दे दी। तो संवाद यात्रा नाम से उनके साक्षात्कारों का पहला संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसका संपादन मैंने किया
1: जी।
0: उसके बाद सन 2020 में कोरोना काल में हमने अपनी पत्रिका का उनके ऊपर एक विशेषांक निकाला। और आपको मैं बता दूं मंदाकिनी जी, कि हमारी पत्रिका ने पिछले लगभग 24 साल में व्यक्ति केंद्रित केवल एक विशेषांक निकाला है, रामदर्श मिश्र जी पर।
1: क्या बात है।
0: दूसरे पर हमने विशेषांक निकाला ही नहीं, और वो ऐसे महान व्यक्ति की जीवन में कभी उन्होंने एक बार हमसे संकेत भी नहीं किया कि हमारे ऊपर विशेषांक निकालिए। हमने उसको निकाला, कोरोना काल की दिक्कतें थी उनकी, उस समय उम्र हो गई थी और ज़्यादा, करीब करीब मान लीजिए 95-96 के थे, तब तक उनको साहित्य अकादमी और को कई सम्मान मिल चुके थे। तो सारी तैयारी हमने फ़ोन पर की, क्योंकि उनके यहाँ जा नहीं सकते थे और उनकी अवस्था का और ध्यान देना था
1: जी।
0: तो विशेषांक निकला 120 पेज का। तमाम रचनाकारों से मैंने बड़े सख्ती से कह करके मांगा कि आपको नया लेख देना है तो दीजिए, हम पुराने लेख नहीं छापेंगे। और उस अंक के वो बड़े प्रशंसक रहे। कुल मिलाकर के मैंने जितना सहज व्यक्ति, जितना महान व्यक्ति रामदर्श मिश्र जी को देखा, उतना मैंने किसी और को नहीं देखा। उनसे जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिला है
1: जी।
0: उनकी तो एक गजल है जो बहुत ही वायरल है आजकल, शायद आपने भी सुना होगा, बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे।
1: जी जी जी।
0: तो वो गजल नहीं है, एक जीवन दर्शन है
1: जी। बिल्कुल,
0: आप कहें तो उसको मैं दो लाइनें उसको
1: बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए।
0: वो उनकी जो गजल है, बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे, जहां आप पहुंचे छलांगे लगाकर ये उनका शेर सबसे मशहूर है, जहां आप पहुंचे छलांगे लगाकर वहां मैं भी पहुंचा मगर धीरे
1: धीरे।
0: पहाड़ों की कोई चुनौती नहीं थी, उठाता गया यूं ही सर धीरे धीरे, गिरा तो बहुत मैं अकेले में रोया, गया दर्द से घाव भर धीरे धीरे। और आखिर एक लाइन देखिए, किसी को गिराया न खुद को उछाला, किसी को गिराया न खुद को उछाला, कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे, बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे।
1: कितना बड़ा जीवन दर्शन उन्होंने अपना बता दिया है
0: जी,
1: कि लोग कहाँ हैं और मैं कहाँ हूँ
0: जी। 100 से अधिक पुस्तकें लिखने वाले, नाटक छोड़ करके हर विधा में लिखने वाले, कोई भी व्यक्ति उनके पास जाता था उसको अपना बना लेते थे, कभी आभास होने ही नहीं दिया कि वो इतने बड़े हैं। और तब जाकर समझ में आया कि बड़प्पन इसको कहते हैं
1: जी,
0: साहित्य ये होता है, साहित्य लोग लिखते हैं और रामदर्श मिश्र जी ने साहित्य जिया है।
1: बिल्कुल। तो रैडी साहब, आपकी बातों से लग रहा है कि आप भी गाने सुनने के काफी मुरीद हैं ना, शौक रखते हैं। कोई गीत बताएं, कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
0: बैजू बावरा फिल्म का एक गीत है।

0: प्रोफेसर राम दर्श मिश्र का लेखन समझ लेना या देख मात्र भर लेना, 70 साल उनका साहित्यिक सफर रहा।
1: जी जी हाँ, ज्यादा ही रहा,
0: ज्यादा ही रहा,
1: ज्यादा ही रहा।
0: और उनको कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की परंपरा का भी एक सशक्त संवाहक माना जाता रहा है और प्रेमचंद परंपरा के उत्तराधिकारी के रूप में देखे जाते रहे हैं।
1: जी, असल में मिश्र जी के साथ एक प्रश्न उठाया जाता है और हमने भी अपनी पत्रिका में जब विशेषांक निकाला था उन पर, तो प्रश्न हमने उठाया था कि आप एक परिचर्चा करवाई थी हमने कि आप मिश्र जी को बड़ा गद्यकार मानते हैं या कवि मानते हैं, और इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। हालांकि मिश्र जी को जितने भी सम्मान मिले हैं बहुत ज़्यादा उम्र बीत जाने के बाद मिले, लेकिन सब कविताओं पर मिले, चाहे वो उनको साहित्य अकादमी मिला आग की हंसी पर, आम के पत्ते पर उनको व्यास सम्मान मिला, मैं तो यहाँ हूँ ऐसे कई पर उनको अभी सरस्वती सम्मान मिला, पद्मश्री मिला जीवन के अंतिम वर्ष में
0: जी।
1: लेकिन उनका गद्य बहुत ही रोचक होता है और मंदाकिनी जी मेरा मानना है कि कवि का गद्य बहुत अच्छा होता है, इसीलिए ऐसा संस्कृत में कहा गया है कि गद्य कवि नाम निक्षम वदंती। संस्कृत में हर लेखक को कवि माना जाता है और गद्य ही कवि की कसौटी होता है। तो मिश्र जी की कहानियां, चाहे वह विषय की बात हो, विमर्श की बात हो, चाहे भाषा की बात हो, एकदम सहज होकर के चलती हैं। उनमें गांव का पूरा स्पर्श है। वो शहर में रह गए लेकिन उनकी मिट्टी कभी छूटी नहीं। अच्छा, दूसरी बात उनकी कहानियों में यह है कि वो अपनी कहानियों में कभी नारेबाजी नहीं करते, लाउड नहीं होते हैं। उनकी जितनी भी कहानियां हैं वो चाहे दलित विमर्श की हों, चाहे नारी विमर्श की हों, या समाज की किसी और समस्या की हों, ज़्यादातर गांव पर आधारित हैं, शहरों के भी हैं, और वो गांव का जो चित्र खींचते हैं वो प्रेमचंद ही खींचते रहे हैं
0: जी।
1: और उनका एक उपन्यास है पानी के प्राचीर, संजोग से इसको प्रकाशित होने में थोड़ा विलम्ब हुआ, लेकिन उसको आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि अपने ज़माने की उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है, ये लेखन नहीं है, ये चित्र है।
0: बिल्कुल,
1: ये बात बिल्कुल सही आपने कहा कि वो प्रेमचंद की परंपरा के हैं और प्रेमचंद की परंपरा उनमें जीवित रही है।
0: जी बिल्कुल, प्रोफेसर रामदर्श मिश्र जी जैसे महान साहित्यकार से आपने जो ये संवाद यात्रा शुरू की, एक लंबा स्वर्णिम सफर उनका जो साहित्यिक जीवन का पूरा हुआ, आपने एक अंक निकाला
1: जी।
0: तो इसके उद्देश्य क्या रहे होंगे, क्या आपकी जिंदगी में ये विचार क्यों आया होगा, संवाद यात्रा का अनुभव क्या रहा होगा?
1: रामदर्श मिश्र जी बहुत बड़े वट वृक्ष थे, उनका ना होना हमें बहुत खलता है, खैर यह प्रकृति का नियम है, उनकी स्मृति को सादर नमन है। मिश्र जी ऐसे व्यक्ति थे कि मैं ही नहीं, कोई भी व्यक्ति उनके पास खींचा चला जाता था। और मिश्र जी में अभी खासियत थी कि सम्मान तो सबका करते थे, लेकिन कभी अपना कोई काम निकालने के लिए किसी की, क्या कहें, हमारी व्यंकारिक भाषा में चमचागिरी कहते हैं यह शब्द रामदर्श मिश्र जी के प्रसंग में कहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है
0: जी।
1: कभी उन्होंने कोई कवि से इच्छा नहीं रखी, महत्वाकांक्षा उन्होंने

0: भी पाले और साहित्य उनका उच्च स्तरीय, तो ये हमारे मन में ही पैदा हुआ कि मिश्र जी के ऊपर एक विशेषांक निकाला जाए। और उसके बाद जब उनसे मैंने इंटरव्यू लिया था तब उनकी बातों से बड़ा प्रभावित हुआ था। तो मेरा उद्देश्य ये था उसमें कि मिश्र जी के जीवन के साहित्य के जो पहलू हैं वो पाठकों के सामने ईमानदारी से रखे जाएं
1: जी,
0: कुछ नई चीज दी जाए, उन पर समीक्षाएं, उन पर संस्मरण, यहाँ तक कि हमने उनके परिवार के लोगों से उन पर लेख लिखवाए। उनकी पत्नी सरस्वती जी दिवंगत हो गई सन 2023 में, उन्हें माता जी कहते, तो वाकई वो माता की अवतार थी। कितने लोगों का आना जाना उनके यहाँ था, कोई भी व्यक्ति बिना उनके यहाँ से जलपान किए खाना पीना खाए नहीं आता था। उन्होंने मिश्र जी पर संस्मरण लिखा।
1: अच्छा।
0: उनकी पुत्र वधु ने लिखा, उनकी बेटी स्मिता जी हैं वो उनकी विरासत को संभाल रहे हैं। इन लोगों ने बहुत सामग्री उपलब्ध करवाई, ये चीज भी देखना जरूरी था। और जिन लोगों ने रामदर्श मिश्र पर नहीं लिखा था उनका दृष्टिकोण हमें देखना था, उनसे मैंने कहा कि लिखवाया। तो ये कुल मिलाकर के संवाद यात्रा और समकालीन व्यक्ति का अंक रामदर्श मिश्र जी के जीवन पर, उनके व्यक्तित्व पर, कृतित्व पर, उनकी महानता पर और उनकी अघोषित महानता में, शब्द आपके पास प्रयोग कर रहा हूँ, छोटा छोटा लोग लिख करके बड़े महान अपने आप को मान लेते हैं और वो इतने महान हो करके अपने आप को कुछ नहीं समझते थे, इस बात से प्रभावित हुए हम। इस चीज को दिखाने के लिए हमने इन अंकों पर इतनी मेहनत की और वो निकला।
1: और अब एक आपकी पसंद का गीत हम सुन लेते
0: जी,
1: हैं
0: जी, हाँ, जी,
1: उसके
0: जी,
1: बाद
0: जी,
1: आपकी अगली विधा पर हम बात करने वाले हैं।
0: जी मंदाकिनी, मुझे गजलें बहुत अच्छी लगती हैं
1: जी।
0: और जगदीश सिंह की एक गजल है प्रेम गीत फिल्म से, होठों से छू लो तुम
1: मेरे
0: गीत अमर कर दो, ये मुझे बहुत पसंद है
1: सुंदर
0: जी, इसे सुनना चाहूंगा मैं।
1: आई सुन जी।

0: जी, ये बात आप ठीक से जान रही हैं। जो डिजिटल क्रिएशंस होते हैं वो आंखों को लुभाते हैं। कहा भी जाता है कि जो दृश्य चीज़ें होती हैं, विजुअल्स होते हैं, वो ज़्यादा असर डालते हैं। साहित्य में भी इसीलिए सबसे पहले नाटक की कल्पना की गई थी। लेकिन जो डिजिटल माध्यम हैं, मुझे लगता है कि अस्थाई नहीं है। ये पुस्तकें अस्थाई हैं। कोई कितनी भी निराशावादी बात कर ले, लेकिन मैं इस बात का पूरी तरह से पुरजोर समर्थन करता हूं और पक्षधर हूं कि पुस्तकों का युग कभी अंत नहीं होगा।
1: जी
0: पुस्तकें थीं, पुस्तकें हैं और पुस्तकें रहेंगी। पुस्तकें मनुष्य के ज्ञान की पहली कृति हैं, पहले प्रमाण हैं,
1: जी
0: ये हमेशा रहेंगी। तो डिजिटल चीज़ें हैं, लेकिन जब हम उनसे बात करके, संवाद करके उनको पुस्तक के रूप में, पुस्तकाकार रूप में रखते हैं, तो एक अस्थायी चीज़ है। पढ़ने की आदत समाज में फैलेगी, रहेगी, कम हो रही है माना जा सकता है, लेकिन एक न एक दिन और आएगा कि जब ये पुस्तकें अपना महत्व आज की तुलना में ज़्यादा साबित करेंगी। ये हमेशा रहेंगी। उनको अक्षुण रखना, हमारी भावी पीढ़ी के लिए बचा के रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है और हम इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं।
1: जी बिल्कुल कहा, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक
0: जी
1: बहुत बड़ा धन है ये।
0: जी
1: बिल्कुल सही
0: हाँ
1: कहा। और आपने प्रोफेसर रामदर्श मिश्र जी की नारी प्रधान कहानियों पर भी एक अंक निकाला है और लाल हथेलियां किताब के नाम के माध्यम से, इसके बारे में भी हमें थोड़ा सा बताइए कि किस तरह की कहानियां इस अंक में आपने एकत्रित की हैं।
0: जी, असल में इस तरह के मिश्र जी के संग्रह और लगभग सभी साहित्यकारों के साथ आते हैं जिनका लेखन प्रचुर होता है। ये लेखन की या उम्र की उत्तरावस्था में आते हैं कि अब उनको कैटेगराइज किया जाए, श्रेणीबद्ध किया जाए। पहले तो कहानी संग्रह आते गए। मिश्र जी की कहानियाँ नारियों पर और दलितों पर, वैसे बहुत सारा उन्होंने विषय, उनका बड़ा व्यापक रहा है
1: जी।
0: इन दो तरह के विषयों का हमारे समाज को आवश्यकता थी, खास करके आज़ादी के बाद यह माना जाने लगा था और सच था कि जब तक समाज में स्त्री और दलित शोषित आगे नहीं आएंगे, हम विकास नहीं कर सकते। और ऐसा समाज, ऐसी सभ्यता जिसमें स्त्री पीछे हो, समाज का एक वर्ग पीछे हो, उसे हम विकसित सभ्यता कह ही नहीं सकते, उस संस्कृति की प्रशंसा हम कर ही नहीं सकते। तो जितने भी लेखक थे, उनका यह दायित्व था कि स्त्री विमर्श की कहानियाँ लिखें, स्त्री को आगे ले आएँ, उनके प्रति हो रहे अत्याचारों को दिखाएँ। ये दौर चला, नई कहानी का दौर चला। मिश्र जी बिना किसी गुट से जुड़े हुए स्त्री विमर्श के लिए संघर्ष करते रहे, स्त्री के पक्ष में लड़ते रहे। उनकी कहानियों में जो एक भिन्नता पाई जाती है, खास करके स्त्री विमर्श की कहानियों में, वो यह है कि उनकी स्त्रियां वाकई नायिकाएं हैं, वो योद्धा हैं, और वो इस तरह की योद्धा हैं जो सकारात्मक युद्ध लड़ती हैं, जो गाली गलौज ना करके अपना रास्ता खुद बनाती है।
1: जी।
0: जैसे उनकी एक कहानी है जिसमें एक उसकी पात्र भवानी, उसका पति मर जाता है, वो बड़े सवर्ण समाज से आती है और उस समय सवर्ण समाज स्त्रियों को बाहर आने की अनुमति नहीं देता है, उसकी खेती बाड़ी सब देखना है, तो वो खुद आती है, अपना खेती करती है, अपना हल चलाती है और उसकी बड़ी निंदा होती है, लेकिन वो भवानी निंदा से पीछे नहीं हटती है, लेखक उसको जाके समर्थन देता है। इससे एक बड़ा संदेश जाता है। क्या संदेश जाता है कि जो नायिका, जो स्त्री पढ़ेगी इसको, वो भी उस जैसा संघर्ष करना चाहेगी। और दूसरी बात देखिए कि वह उस कहानी की नायिका से खेतों में काम करवाते हैं, जिसका अर्थ होता है कि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो उनकी नायिकाएं आप देखेंगे, उनकी जो पात्र हैं वो खेती के काम से लेकर के और बड़े समाज के काम, मतलब जो आज की आधुनिक नौकरियां हैं उसको भी अपने लेवल पे करती हैं, वो पुरुषों के मोहताज नहीं हैं। इस चीज़ को उन्होंने ऐसे परोक्ष रूप से दिखाया है कि स्त्री प्रेरणा लेती है और पुरुष कहीं ना कहीं उसको स्वीकृति देता है और इस तरह से वो सकारात्मक युद्ध चलता रहता है। आज जो स्त्री इतनी आगे है उसमें साहित्यकारों का योगदान है और ऐसे साहित्यकारों का तो मैं बड़ा योगदान मानता हूँ।
1: जी बहुत सुंदर।
0: तो ऐसी तमाम कहानियां उनकी हैं, उन कहानियों को लेकर के उनका एक विचार था कैसा, क्या क्या किया जाए। मैंने खुद अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया क्योंकि मैं भी स्त्री समर्थक हूँ।
1: जी
0: मैं मानता हूँ कि जब तक मातृशक्ति, मातृसत्ता हमारे बराबर नहीं होगी, हमारे ऊपर नहीं होगी, प्रकृति ने तो ऐसे ऊपर बना के भेजा उसे, हमने उसे डोमिनेट कर दिया, तो उसको उसकी जगह चाहिए। तो मेरा भी इसमें इंक्लिनेशन था क्योंकि आपको बताया कि मैंने भी ऐसी कहानियाँ लिखी हैं, तो इस प्रस्ताव पर बड़े प्रसन्न हुए और फिर उनके तमाम संग्रह मैंने पढ़े हुए थे, उसमें से चयन किया मैंने अच्छी कहानियों का और उसका मैंने संपादन किया और वो कहानियां आज लाल हथेलियों के नाम से वो
1: बहुत सुंदर संकलन है। इसके लिए हम आपको साधुवाद देते हैं। और बस चलते चलाते आखिरी सवाल यही कि आगे क्या योजनाएं हैं आपकी।

दूं। रायडी साहब, आज के दौर में जब डिजिटल माध्यमों से संवाद इतना आसान हो गया है, तो प्रत्यक्ष रूप से यात्रा करके संवाद करने की जो प्रासंगिकता है वो आपको कैसी लगी, मतलब क्या महसूस हुआ आपको?

0: जी उंदा के जी, मेरा लिखना तो निरंतर चलता रहता है और सायास नहीं चलता है। मतलब जब मेरे मन में कोई भाव ज़्यादा प्रबल होता है तब मैं लिखता हूँ। मुझे नहीं याद आता कि मैंने कभी ज़बरदस्ती बैठ के कुछ लिखा हो। किसी संपादक ने कोई समीक्षा या कोई और मांग दिया उसकी बात अलग हो सकती है। लेखन निरंतर चल रहा है और मैंने जितना लिखा है मुझे लगता है उसका मैंने आधा भी प्रकाशित नहीं करवाया है।
1: अच्छा,
0: क्योंकि मैं जल्दबाजी में नहीं रहता हूँ, मेरा काम आराम आराम से होता है, धैर्य से रहता हूँ मैं। और अभी तो मेरे पास कम से कम 4-5 व्यंग संग्रह आ जाएंगे जिनका मैटर मेरे पास पड़ा है। ललित निबंध है और गजलें हैं, गीत कविताएं भी मैंने कुछ लिखा हुआ है, गजलों का भी संग्रह आने वाला है। लेखन मेरा निरंतर चल रहा है और इस समय मैं खास करके व्यंग और ललित निबंध ही लिख रहा हूँ। बाकी गीत गजल हैं, ऐसी चीज़ें हैं जब भावुकता कभी आई तो वो तो कम समय में बन जाते हैं। लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य आ कहें, मेरी मुख्य प्रवृत्ति समय व्यंग और ललित निबंध पर ही है, उसी का लेखन मैं ज़्यादा कर रहा हूँ। मेरे कई मित्र भी कहते हैं कि जब से आप गद्य में आए हैं तब से आपका पद्य बहुत पीछे रह गया है। मैंने कहा मैं किसी को खींचूंगा नहीं, जो मेरे साथ चलना चाहे चले, जो छूट जाएगा पीछे उसे मैं छोड़ दूंगा। मुझे आगे आगे चलना है, आगे देखना है, जो मिलेगा, जो मिल गया वो मेरा हो गया, जो नहीं मिला वो कोई बात नहीं है, आएगा फिर उसे साथ कर लेंगे। तो योजना यही है कि पढ़ता रहूं, लिखता रहूं और जब जब समय आए प्रकाशित होता रहूं, क्योंकि जनता के सामने, पाठक के सामने ये चीज़ें आएँ। तो सोचता ये हूँ कि अगर कुछ सकारात्मक दे गया, क्योंकि अब तो मैं भी वरिष्ठ नागरिक हो गया हूँ, तो कुछ दे गया तो शायद वही जीवन की सार्थकता होगी।
1: तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आप दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें और अनवरत लिखते रहें। चलते चलाते एक गीत आपका पसंद का और सुनना चाहेंगे हम।
0: हाँ, पहले मैं आपको अपनी पसंद का एक और गीत आपसे कह दूं। मेरे प्रिय गायकों में मुकेश भी रहे हैं, बहुत सुनता रहा हूं मैं। उनका एक गीत है, ओहरे ताल मिले नदी के जल,
1: क्या बात है,
0: नदी मिले सागर से। ये अनोखी रात फिल्म का गीत है, तो कृपया इसको सुनाएं।
1: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हरिशंकर राडी जी, हम आपका विविध भारती परिवार की ओर से ढेरों ढेरों धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने अपना अमूल्य वक्त हमारे लिए निकाला। आप दिल्ली से यहाँ मुंबई आए, हम लोगों से मिले और हमारे से एक सार्थक बातचीत आपने की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मंदाकिनी जी, मुझे इस बात की खुशी है कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और मुझे अपने पाठकों से, आम जनता से रूबरू होने का एक मौका मिला, अपने विचार व्यक्त करने का आपने अवसर दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो दोस्तों, आज के मेहमान कार्यक्रम में हमारे साथ थे वरिष्ठ कवि, कथाकार, व्यंग्यकार, गजलकार, निबंधकार, आलोचक, समीक्षा लेखक, अनुवादक, संपादक हरिशंकर राढ़ी साहब। और अब मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।
2: आप सुन रहे थे प्रसिद्ध लेखक हरिशंकर राढ़ी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंधल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज के मेहमान कार्यक्रम समाप्त होता है।

आइए सुने छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। रूठना एक शब्द नहीं है, रूठना एक सजा है। जब जिंदगी रूठ जाती है तो सजा बन जाती है जिंदगी। रूठी हुई जिंदगी को मनाना बहुत मुश्किल होता है। जिंदगी हरी भरी होती है, फूलों सरीखी मुस्कुराती है जिंदगी, लेकिन एक आंधी आती है और सारे फूल मुरझा जाते हैं। जिंदगी रूठ जाती है। प्यार दो लोग करते हैं, बेवफा दोनों नहीं होते हैं। फिर क्या होता है जो जिंदगी रूठ जाती है।

भरी जिंदगी जब मान जाती है तो लम्हे मोती से चमक उठते हैं, दिल खिल जाता है, आंखों में प्यार बेशुमार होता है, खुशियों का खजाना बन जाती है जिंदगी जब जिंदगी ये खुश होती है।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। मोहब्बत की इनायत सबको नहीं मिलती, जिन्हें मिलती है मोहब्बत उनकी जिंदगी फूलों की झालर जैसी हो जाती है। जिंदगी का सफर आसान हो जाता है जब मिल जाता है किसी का भला सा साथ। नदी में तैरती कश्ती पर दो चाहने वाले एक साथ अपनी जिंदगी का सफर तय करते हैं। वे कांटों की परवाह नहीं करते, खुशनसीब होते हैं वे जिनकी जिंदगी मोहब्बत से भरी होती है।

0: कभी कभी
1: कुछ लम्हे कभी बूढ़े नहीं होते, उन लम्हों पर अतीत की गर्द नहीं होती, न ही वो धूमिल होते हैं। वो लम्हे ताजी धुली आंखों की तरह चकमक रहते हैं। वो लम्हे बारिश में धुली पत्तियों की तरह हरे रहते हैं। कौन से लम्हे हैं वो जिन्हें हम अपनी पलकों की कोरों में सहेज लेते हैं।

FM 101.2 MHz पर श्रोताओ, यह आकाशवाणी खंडवा है। आइए सुने NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: शब्दांग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी।
3: वहाँ क्या बात है, जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी। आगे लिखते हैं,
2: योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग जरूर करें।
3: वाह, ये भी एक बड़ी खूबसूरत कविता बन गई। योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग करें। बहुत सुंदर विचार भेजा आपने, धन्यवाद स्वीकार कीजिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: गाँव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेड़था बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
3: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
2: ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
3: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय के साथ साथ बेबी किट्टू ने लिखा है, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी सादर नमस्कार।
2: हम उमंग कार्यक्रम के नियमित श्रोता हैं, सोमवार से शुक्रवार

0: तक एक एक जानकारी सुनते हैं, समीक्षा भी भेजते हैं। गुजरे सप्ताह आपने 15 जून को केवल नाम पढ़ा लेकिन समीक्षा नहीं पढ़ी।
1: आपके संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि आगे से हम जरूर इस बात का खास ख्याल रखेंगे।
0: जी,
1: अगला संदेश हमें मिला है राजा जी नगर बेंगलोर से NR प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का।
0: आप सबके संदेशों के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए मैं।
1: श्रोताओं, इन दिनों हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधों के रोचक संसार की।
0: जी,
1: कल हमने जाना था कि पेड़ पौधे आपस में किस प्रकार से संचार करते हैं। आज हम जानेंगे पेड़ों के बारे में एक और रोचक बात।
0: जी,
1: तो विमलेश जी, आपने कल बातचीत में प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी सर जगदीश चंद्र बोस के बारे में कुछ बताया था।
0: जी अजी जी, मैं याद कर रही थी उनके बचपन की एक घटना को। ऐसा कहते हैं कि जब वे बच्चे थे तो एक शाम वे गेंद से खेल रहे थे, गेंद पास की झाड़ियों में फंस गई थी।
1: बालक जगदीश चंद्र बोस ने एक डंडा लिया और लगे झाड़ी को हिलाने।
0: जी,
1: वे बहुत प्रयास करते रहे लेकिन गेंद झाड़ी में उलझी रही।
0: जी,
1: शाम ढलने लगी थी, तभी उनकी माँ ने उन्हें बुलाया और कहा, बेटा पौधों को तंग ना करो, ये उनके सोने

0: गेंद झाड़ी में उलझी रही।
1: जी।
0: शाम ढलने लगी थी तभी उनकी माँ ने उन्हें बुलाया और कहा, बेटा पौधों को तंग ना करो, ये उनके सोने का समय है।
1: श्रोताओ, यही वो समय था जब बालक जगदीश चंद्र बोस के मन में वैज्ञानिक चेतना जागी। तो श्रोताओ, आज हम चर्चा करेंगे कि क्या पेड़ पौधे भी सोते हैं।
0: श्रोताओ, इसका उत्तर है जी हाँ, लेकिन हमारी तरह नहीं। वैज्ञानिकों ने शोध करके पाया है कि रात में पेड़ों की गतिविधियां धीमी हो जाती हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की गति बहुत कम हो जाती है।
1: पानी और पोषक तत्वों का प्रवाह भी दिन के मुकाबले कम हो जाता है। पेड़ों की स्कैनिंग से ये भी पाया गया है, रात के समय कुछ पेड़ों की शाखाएं और पत्तियां 5 से 10 सेंटीमीटर तक नीचे झुक जाती हैं और सूर्योदय के बाद फिर से ऊपर उठ जाती हैं।
0: अरे वाह, ये तो बड़ी रोचक बात है। यही कारण है कि ये कहा जाता है कि पेड़ भी सोते हैं। विमलेश जी, आजकल सुना जाने लगा है कि पेड़ों पर रात को तीव्र प्रकाश वाले बल्ब नहीं जलाने चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है?
1: जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रात में पेड़ों पर बल्ब नहीं जलाने चाहिए।
0: क्यों?
1: इसके कई कारण हैं। पहली बात, इससे पेड़ों की जैविक घड़ी प्रभावित होती है। पेड़ रात और दिन के चक्र के अनुसार काम करते हैं। तेज रोशनी में उन्हें प्राकृतिक रूप से रात होने का संकेत नहीं मिल पाता।
0: जी विमलेश जी, श्रोताओ एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि कुछ पेड़ पौधों में फूल आने, पत्तियों के झड़ने और निकलने की प्रक्रिया दिन रात की अवधि पर ही निर्भर करती है, जबकि कृत्रिम प्रकाश इन प्रक्रियाओं को बाधित करता है।
1: एक और बात, कृत्रिम प्रकाश से पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों और परागण करने वाले कीटों की दिनचर्या भी प्रभावित होती है।
0: जी।
1: सजावट या सुरक्षा कारणों से भी कभी कभार सीमित समय के लिए बत्तियां जलाई जा सकती हैं, लेकिन अच्छा यही है कि जहां तक हो सके उन्हें प्राकृतिक पर्यावरण में ही रहने दिया जाए।
0: जी, तो श्रोताओ ये थी हमारी आज की रोचक जानकारी, आशा है कि आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि आई है तो लिख भेजिए अपना संदेश। और अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए?
0: श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है खेल संध्या।
1: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है जिसे एक गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। गीत में बच्चे विशेषकर भारत के पारंपरिक खेलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्हें खेलने कूदने में कितना आनंद आता है।
0: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
2: संध्या को हम खेलने जाते,
0: मित्रों संग आनंद मनाते,
2: मित्रों संग आनंद मनाते,
0: कभी दौड़ना और उछलना,
2: कभी दौड़ना और उछलना,
0: कभी गेंद के खेल खेलना,
2: कभी गेंद के खेल खेलना,
0: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
2: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
0: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
2: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
0: गिल्ली डंडा सबको भाता,
2: गिल्ली डंडा सबको भाता,
0: सतोलिया भी मजा दिलाता,
2: सतोलिया भी मजा दिलाता,
0: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
2: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
0: या हंस हंस के बातें करना,
2: या हंस हंस के बातें करना,
0: जब अंधेरा होने लगता,
2: जब अंधेरा होने लगता,
0: सबको कुछ डर लगने लगता,
2: सबको कुछ डर लगने लगता,
0: तब हम घर को वापस आते,
2: तब हम घर को वापस आते,
0: कल खेलेंगे यह कह जाते,
2: कल खेलेंगे यह कह जाते।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या, अभी आपने सुना ये प्यारा कार्यक्रम।

0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी।
1: इस कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों और उनकी परंपराओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और बताया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने आज भी अपनी संस्कृति को बनाए रखा है।
0: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी।

0: कहते हैं अरबों वर्ष पहले पृथ्वी पर जमीन का एक विशाल टुकड़ा था। किसी कारणवश बड़ा भयंकर धमाका हुआ। और जमीन के टुकड़े अलग अलग छिटक गए। उसी से बने द्वीप और महाद्वीप।
1: ऐसा ही एक महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया।

0: ये भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसके पश्चिम और दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में प्रशांत महासागर है और उत्तर में टिमोर और अराफुरा सागर है।
1: क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया भारत से दुगने से भी अधिक है, लेकिन भारत की जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से लगभग 6 गुना अधिक है।

0: ऑस्ट्रेलिया का अधिकतर भाग सूखा और गर्म है। हमारे देश की गंगा नदी में जितना जल है, ऑस्ट्रेलिया की सारी नदियों में कुल मिलाकर उसका आधा जल भी नहीं है।
1: एक बात और, दक्षिण गोलार्ध में होने के कारण ऑस्ट्रेलिया के मौसम उत्तरी गोलार्ध में स्थित देशों से उल्टे होते हैं। उदाहरण के लिए, जब भारत में गर्मियां होती हैं तो ऑस्ट्रेलिया में जाड़ा होता है, और जब भारत में जाड़ा होता है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का मौसम आ जाता है।
0: दुनिया के इस सबसे छोटे महाद्वीप की खोज सन 1770 में एक अंग्रेज नाविक कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। इसका मतलब ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया की खोज से पहले वहां लोग नहीं रहते थे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी तो पाषाण युग से रहते चले आ रहे हैं। और शायद तुम्हें ये जानकर हैरानी हो कि उनमें से कुछ के जीने के तरीके में आज भी कोई अंतर नहीं आया।
1: मतलब ये कि आज भी ये शिकार करके अपना पेट पालते हैं। इन्होंने न खेती करना सीखा न पशु पालना। पशु के नाम पर डिंगो नाम का एक कुत्ता पालते हैं, जो शिकार के समय भी बराबर इनके साथ रहता है।
0: शिकार करने के लिए ये लोग आज भी पत्थर और लकड़ी के हथियारों का प्रयोग करते हैं। इनका एक हथियार है वो मेरा, जिसकी मदद से ये अपने भाले को 130 मीटर की दूरी तक फेंक सकते हैं।
1: एक और हथियार होता है बूमरैंग, जो घुमावदार होता है।

0: इस हथियार की विशेषता यह है कि अगर शिकारी इसे चतुराई से फेंके और किसी कारणवश वह निशाने पर न लगे तो शिकारी के पास वापस आ जाता है।
1: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी सभी तरह के पशु पक्षियों का शिकार करते हैं, जैसे एम्यू पक्षी, सांप, छिपकली, कछुआ, कंगारू आदि।
0: कंगारू, इस शब्द की एक रोचक कहानी है। अंग्रेजों ने जब पहली बार इस विचित्र जीव को देखा तो आदिवासियों से इसका नाम पूछा। आदिवासी अंग्रेजी तो समझते नहीं थे, बस इतना समझ पाए कि गोरे लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं। उन्होंने अपनी भाषा में कहा, कंगारू यानी तुम क्या जानना चाहते हो? अंग्रेज समझे कि कंगारू इस विचित्र जीव का नाम है, बस तभी से उसका नाम कंगारू पड़ गया।
1: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों के बारे में इतना जान लेने के बाद ये जानने की भी इच्छा होती है कि शताब्दियां बीत जाने पर भी जिन लोगों की जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं आया वो देखने में कैसे लगते हैं।
0: इनका रंग गहरा होता है, कद सामान्य, शरीर छरहरा लेकिन गठा हुआ, आंखें छोटी और भीतर को धसी हुई, नाक चौड़ी और चपटी, जबड़ा कुछ बाहर निकला हुआ और बाल घुंघराले।
1: हमारी दृष्टि से भले ही ये लोग पिछड़े हों, लेकिन शारीरिक और बौद्धिक दृष्टि से ये पीछे नहीं। इनकी भाषाएं काफी विकसित हैं और लगभग 500 बोलियां प्रचलित हैं। हाँ, ये बात और है कि इनके यहाँ पढ़ाई लिखाई की कोई व्यवस्था नहीं।
0: तुम सोच रहे होगे कि क्या मजे की बात है, आदिवासी बच्चों को स्कूल नहीं जाना पड़ता, न होमवर्क करना पड़ता है और न ही परीक्षा देनी पड़ती है, बस सारा दिन मौज मस्ती करो, खेलो कूदो।
1: हाँ, ये तो है। आदिवासी बच्चों ने अपने मनोरंजन के लिए तरह तरह के खेल बना रखे हैं।
0: ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों का पारिवारिक संगठन बहुत मजबूत होता है। ये सब कुछ मिल बांट कर खाते हैं और प्रेम से रहते हैं। इनके यहाँ छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं होता, सभी बराबर माने जाते हैं। हाँ, बड़े बूढ़ों और अनुभवी लोगों का आदर अवश्य किया जाता है।
1: इन्हीं बड़े बूढ़ों पर पवित्र स्थलों की जिम्मेदारी होती है। यही लोग धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं और नौजवानों को अपने रीति रिवाजों के बारे में बताते हैं। ऐसे अवसरों पर नृत्य और संगीत अवश्य होता है।
0: हाँ, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। स्त्री पुरुष अपने शरीर पर सफेद मिट्टी और गेरू से टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचते हैं, आकृतियां बनाते हैं, माथे पर रस्सी की पट्टियां बांधते हैं और उनमें पक्षियों के रंग बिरंगे पंख खोंस लेते हैं, और फिर होता है सामूहिक नृत्य।
1: ऑस्ट्रेलिया के ये सीधे साधे आदिवासी हंसते खेलते अपना जीवन बसर कर रहे थे, लेकिन फिर अंग्रेजों को इस अद्भुत महाद्वीप का पता चल गया। और उन्होंने वहां अपनी बस्तियां बसानी शुरू कर दी।
0: अंग्रेजों के अलावा अन्य यूरोपीय लोग भी यहां आए। पहले पहल अंग्रेज समुद्र तट पर आकर बसे, फिर उन्होंने अंदर की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे अंग्रेज आगे बढ़े वैसे वैसे आदिवासी अंदर के दुर्गम क्षेत्रों में सिमटते गए। बेचारे क्या करते, अपने सीधे साधे हथियारों से अंग्रेजों का मुकाबला थोड़े ही कर सकते थे।
1: अंग्रेजों ने आदिवासी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और वहां खेती बाड़ी शुरू कर दी। कहीं कहीं आदिवासियों ने अपना क्षेत्र खाली करने से इनकार किया तो अंग्रेजों ने छल कपट से काम लिया। ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न नगर इसका जीता जागता उदाहरण है।

0: इस नगर को बसाने के लिए अंग्रेजों ने आदिवासियों से 40,000 हेक्टेयर जमीन ली। और जानते हो उसके बदले में उन्हें क्या दिया?
1: 100 कंबल, 50 चाकू, 50 कुल्हाड़ियां, 40 कैंचियां, 50 शीशे, 20 जोड़ी कपड़े और 2 टन आटा।
0: ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी छोर पर एक छोटा सा द्वीप है, तस्मानिया। ये भी ऑस्ट्रेलिया का एक हिस्सा है। यहाँ के आदिवासियों को भी अंग्रेजों ने उसी तरह धकेलना शुरू किया। अंग्रेज उन्हें खाना कपड़ा तो देते थे, लेकिन बेचारे अंग्रेजों की उतरन पहनकर भी ठंड से नहीं बच पाए। सन 1847 तक इनकी संख्या 2000 से घटकर केवल 47 रह गई। और सन 1869 तक आते आते आखिरी आदिवासी ने भी दम तोड़ दिया। इस तरह पूरी की पूरी एक जाति लुप्त हो गई।
1: आज पशु पक्षियों की दुर्लभ जातियों के संरक्षण को बहुत महत्व दिया जा रहा है। उनके शिकार पर रोक लगा दी गई है, उनके लिए अभयारण्य बनाए जा रहे हैं। लेकिन तस्मानिया के आदिवासियों के बारे में तब किसी ने भी नहीं सोचा।
0: ऑस्ट्रेलिया के इन आदिवासियों की दशा में काफी सुधार हुआ है। उन्हें अब समानता के अधिकार मिल गए हैं। वो वोट दे सकते हैं, अपने प्रतिनिधि को देश की संसद में भेज सकते हैं।
1: यही नहीं, आदिवासियों को भूमि के अधिकार भी मिले हैं। इनके लिए कुछ आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं जहां किसी और का कोई दखल नहीं। ये लोग अपनी मर्जी से जैसे चाहें रह सकते हैं।
0: उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में अर्नहैम लैंड नाम का एक ऐसा ही आरक्षित क्षेत्र है। इसमें ककाटू नाम का एक राष्ट्रीय पार्क भी बनाया गया है। सन 1988 में इस राष्ट्रीय पार्क की फिल्म बनाने के लिए एक अमरीकी दंपति वहां जाकर महीनों रहे थे।
2: हम लोग आपके इस ककाटू पार्क की फिल्म बनाने आए हैं, और उसके लिए पूरे परिवेश को अच्छी तरह जानना समझना बहुत जरूरी है।
3: तब तो आप भी हम गागुजू आदिवासियों जैसे ही हैं। हम लोग अपने आप को प्रकृति का एक हिस्सा मानते हैं।
4: लेकिन मिस्टर निजी, मनुष्य तो अपने को प्रकृति का मालिक मानता है।
3: नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, नहीं तो वन देवी नाराज हो जाएंगी। वन देवी ने समुद्र से निकलकर जमीन बनाई, पेड़ पौधे बनाए, जीव जंतु बनाए, मनुष्य को जन्म दिया, और फिर वो भी इन्हीं में समा गई।
2: अच्छा, तो ये सब वन देवी ने किया?
3: यही नहीं, हमारी मिमी देवी ने हमें शिकार करना सिखाया और चित्र बनाना सिखाया।
4: कैसे चित्र?
3: जीव जंतुओं के चित्र, आदमी के चित्र।
2: क्या आप हमें ऐसे कुछ चित्र दिखा सकते हैं?
3: क्यों नहीं, अभी चलिए।
2: चलिए।
3: आई
2: देखो वेलेंडा, ये अजगर का चित्र।
4: अरे, इसमें तो अजगर की हड्डियों का ढांचा तक दिख रहा है, जैसे ये कोई एक्सरे फोटो हो।
2: और ये देखो, ये गुफा की दीवार पर गेरू से बनी ये मछली।
4: इधर ये कछुए, मेंढक, कंगारू और ये प्लेटिपस के चित्र भी हैं। और ये देखो, आदिवासी का ये चित्र।
2: मिस्टर नीर जी, क्या आप लोग अब भी ऐसे चित्र बनाते हैं?
3: गुफाओं में तो नहीं, हाँ पेड़ों की छाल पर जरूर बनाते हैं। आप कल हमारे कबीले में आइए, मैं आपको अपने भाई से मिलवाऊंगा, वो बहुत अच्छे चित्र बनाता है।
2: ठीक है, कल सुबह हम वहां आएंगे, अभी इन चित्रों की फिल्म तो उतार लें।
3: हाँ।
2: गुड मॉर्निंग मिस्टर नीट जी।
3: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए आइए आइए।
2: हमारे आने से आपको कोई असुविधा तो नहीं हुई?
3: जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। ये मेरा भाई है, इल्किर।
2: अच्छा अच्छा।
3: ये आपकी भाषा नहीं बोल सकता, लेकिन आपको चित्र दिखाएगा। कल इसने ये छाल उतारी थी चित्र बनाने के लिए, आप इसे चित्र बनाते देखना चाहते हैं?
4: ये तो बहुत अच्छा होगा, फिर हम उसकी फिल्म भी उतार सकते हैं।
3: जी।
2: अरे वाह, ये तो बड़ी तेजी से हाथ चला रहे हैं। देखो वेलेंडा, इनकी कोई गलती भी नहीं हुई, और देखो ना, कुछ मिटाना भी नहीं पड़ा।

0: वाकई कमाल है।
1: अभ्यास से गलतियां नहीं होती, हमारे बनाए चित्र तो अब दुनिया भर में बिकते हैं।
2: सचमुच?
0: स्टेन, एक चित्र हम भी खरीद लें?
2: हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। वो अजगर वाला चित्र बड़ा आकर्षक है।
1: लीजिए ये आपका हुआ।
2: इसकी कीमत?
1: कीमत नहीं लूंगा, हम गगुज्जू आदिवासियों की तरफ से आपको भेंट है।
0: सच?
2: धन्यवाद।
3: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी अच्छे चित्रकार तो हैं ही, आज उन्होंने अन्य क्षेत्रों में भी अपना स्थान बना लिया है। वो देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे हैं।
4: लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें ये आधुनिकीकरण पचता नहीं, वो अपनी जीवन पद्धति नहीं बदलना चाहते, और क्योंकि अब उन्हें भूमि के अधिकार मिल गए हैं इसलिए वो अपने क्षेत्र में अपने ढंग से जी सकते हैं। एक तरह से अच्छा भी है, आज हम चाहें तो पाषाण युग की जीवन शैली को प्रत्यक्ष देख तो सकते हैं।
5: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी, अभी आपने सुना यह कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार।
7: उमंग उमंग उमंग उमंग।
8: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।
9: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन।
10: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
8: आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से अब प्रस्तुत है युववाणी कार्यक्रम।

0: हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब युवावाणी सुनने वाले सभी दोस्तों को आपकी अपनी रेडियो होस्ट और दोस्त शांभवी का खत में लिपटी सौंधी सी महक सा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों युवावाणी के खजाने में हर बुधवार की तरह आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका पसंदीदा फरमाइशी क्रम यूथ चॉइस। लेकिन दोस्तों आपके भेजे हुए सुंदर सुंदर पत्र और ईमेल्स पढ़ने से पहले आइए आपको बता देते हैं हमारे आज के सामान्य ज्ञान के दो प्रश्न। हमारा आज का पहला प्रश्न है, दुनिया का सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? और आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, किस फल को पकने में लगभग 2 साल का समय लगता है? इन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर हम आपको बताएंगे हमेशा की तरह कार्यक्रम के अंत में। तब तक सुनते रहिए युववाणी।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए।
0: दोस्तों अक्सर हमने देखा है कि किसी को काजू से तो किसी को पीनट से या फिर किसी को धूल मिट्टी और अन्य चीज़ों से एलर्जी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह एलर्जी होती क्या है? दोस्तों एलर्जी प्रतिरक्षा प्रणाली की एक असामान्य प्रतिक्रिया है जो बाहरी उत्तेजनाओं के प्रति होती है, जिन्हें एलर्जेन कहा जाता है। यह एक आम बीमारी है और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार दुनिया के लगभग 40% आबादी इससे प्रभावित है। एलर्जी के लक्षण हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकते हैं, जिसमें नाक बहना, त्वचा पर रैशेस, ब्रोंकियल अस्थमा और एनाफिलेक्टिक शॉक शामिल है। और यह मुख्य रूप से पौधों के पराग कणों, खाद्य पदार्थों, घर की धूल के कण, घरेलू रसायन, दवाएं और जानवरों के बालों की वजह से हो सकती है। यही कारण है दोस्तों कि

0: प्रतिवर्ष आज यानी 8 जुलाई को मनाया जाता है विश्व एलर्जी दिवस यानी वर्ल्ड एलर्जी डे। दोस्तों, वैश्विक एलर्जी विशेषज्ञों के समूह विश्व एलर्जी संगठन ने वर्ष 2000 में इस आयोजन की शुरुआत की थी और इस वर्ष विश्व एलर्जी दिवस 2026 का विषय है एलर्जी केयर इज एसेंशियल केयर, यानी एलर्जी की देखभाल आवश्यक देखभाल है। और दोस्तों, इस देखभाल में हमारे बहुत से युवा स्वास्थ्य सेवक और चिकित्सक बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वैसे दोस्तों, चिकित्सा के साथ साथ हमारे युवा साथियों की पत्रकारिता के क्षेत्र में भी रुचि बढ़ती जा रही है और वर्तमान समय में पत्रकारिता का महत्व भी बढ़ रहा है। तो आइए सुनते हैं वर्तमान परिपेक्ष में पत्रकारिता के महत्व पर खंडवा के युवा पत्रकार श्री सावन पाटिल जी से हमारी बातचीत और इनसे बात की है आपकी दोस्त शांभवी जोशी ने। हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार साथियों।
0: सावन जी, सबसे पहले हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि पत्रकारिता के क्षेत्र में आपकी रुचि कैसे बढ़ी और इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपने क्या शिक्षा प्राप्त की।
1: जी, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि मैंने इंदौर से एजुकेशन हासिल की है, जो कि डिप्लोमा करा है मैकेनिकल से। लेकिन मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में बचपन से इंटरेस्ट मेरा जगा हुआ था, तो इसलिए मैंने पत्रकारिता में ज्वाइन किया। शुरू में मैं प्रिंट मीडिया में आया, फिर डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद अभी भी डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मैं समय दे रहा हूँ खंडवा से।
0: जी, और सावन जी, वैसे तो पत्रकारिता आधुनिक जीवन के लिए एक जरूरी प्रोफेशन है, लेकिन पत्रकारिता का इतिहास क्या है?
1: जी, पत्रकारिता का इतिहास बहुत ही रोचक और गर्व से भरा हुआ है। मनुष्य ने जब बोलना सीखा तभी से सूचनाओं का आदान प्रदान शुरू हो गया था, लेकिन लिखित पत्रकारिता की नींव तब पड़ी जब छपाई का आविष्कार हुआ। भारत में पत्रकारिता की शुरुआत 1780 में हुई, जब जेम्स ऑंगस्टन हिंकी ने हिंकीज बंगाल गजट निकाला। धीरे धीरे यह एक आंदोलन बन गया। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानियों ने पत्रकारिता को एक हथियार बनाया। बाल गंगाधर तिलक, केसरी, महात्मा गांधी का हरिजन, गणेश शंकर, विद्यार्थी का प्रताप, इन्हीं अखबारों ने अंग्रेजों के खिलाफ जनजागरण की मसाल जगाई। पत्रकारिता सिर्फ खबर देना नहीं है, यह समाज को दिशा देने वाला धर्म है। आज हम डिजिटल युग में हैं। अब अखबार के साथ साथ टीवी, रेडियो, ब्लॉगिंग और सोशल मीडिया भी पत्रकारिता के नए प्लेटफॉर्म बन चुके हैं।
0: जी, बहुत ही अद्भुत जानकारी दी है आपने पत्रकारिता के इतिहास के बारे में। और अब हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि आज के युवा जो हैं, वो पत्रकारिता में बहुत रुचि रख रहे हैं और अपने करियर के ऑप्शन तलाश रहे हैं, तो पत्रकारिता में युवाओं का क्या महत्व है?
1: किसी भी समाज में पत्रकारिता को मजबूत करने में युवाओं का सबसे बड़ा योगदान होता है, क्योंकि युवा होते हैं जो पुराने ठर्रे को तोड़कर नया सोचते हैं। उनके पास तकनीक का ज्ञान होता है, वे सोशल मीडिया को बेहतर समझते हैं और निर्भीकता से सवाल पूछ सकते हैं। आज के युवा ITI डालते हैं, स्टिंग ऑपरेशन करते हैं और जमीनी सच्चाई को सामने लाते हैं। युवाओं की निर्भीकता और ऊर्जा पत्रकारिता में नया चेतना ला रही है, इसलिए देश भर में युवा पत्रकार आज ग्रामीण भारत की समस्याओं से लेकर ग्लोबल मुद्दों तक हर खबर को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आज के दौर में पत्रकारिता युवाओं के लिए एक शानदार करियर का विकल्प बन गई है, क्योंकि आज का युवा टेक्नोलॉजी में माहिर है, उसके पास जिज्ञासा है, सवाल पूछने की हिम्मत है और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना है। अगर आप भी सोचते हैं कि आपको सच्चाई सामने लानी है, तो पत्रकारिता आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। इसके लिए आप यह कोर्स कर सकते हैं, जिसमें बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन MJ MCA, डिप्लोमा इन न्यू मीडिया एंड डिजिटल जर्नलिज्म, रेडियो जॉकी और वॉइस ओवर कोर्स, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन कोर्स। इसको करने के बाद करियर में कई विकल्प भी जैसे कि आपको मिल सकते हैं, जैसे रिपोर्टर, न्यूज एंकर, फोटो जर्नलिस्ट, वीडियो एडिटर, रेडियो जॉकी, कंटेंट राइटर, सोशल मीडिया मैनेजर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। इसके अलावा आपका खुद का चैनल या पॉडकास्ट, ब्लॉगिंग, फ्रीलांसिंग जैसी अपार संभावनाएं भी है, युवाओं के सामने खुली है। कई युवा इसके माध्यम से कई लोगों को न्याय दिला रहे हैं और अपनी रोजी रोटी भी कमा रहे हैं।
0: जी, और इसके अलावा और क्या करियर ऑप्शंस हैं युवाओं के लिए पत्रकारिता से जुड़े हुए?
1: इसके अलावा तो अभी तक जहाँ तक देखा गया, युवाओं में एक तो एंकरिंग और रिपोर्टिंग को लेके खासा उत्साह है। बड़ी सिटियों और छोटी सिटियों में रिपोर्टिंग के लिए लड़के और लड़कियां दोनों, महिला पुरुष वर्ग आगे आया है और अच्छी रिपोर्टिंग कर रहा है। कुछ लोग अपना चैनल के माध्यम से युवाओं में अलग जगा रहे हैं और अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। युवा जो है सोशल मीडिया पर आजकल देख रहा है हर चीज को, और सोशल मीडिया के माध्यम से आजकल वो न्यूज एक दूसरे के माध्यम से पहुंचा रहा है, और युवा इसी के चलते अब एक खुद भी सोशल मीडिया का पत्रकार बन गया है, जिससे कि वो हर एक चीज को समझ रहा है।
0: क्योंकि हमारे आकाशवाणी भी एक मीडिया का, पत्रकारिता का, दूरसंचार का एक महत्वपूर्ण अंग है,

0: ऑल इंडिया रेडियो का पत्रकारिता या दूरसंचार में क्या महत्व रहा है?
1: जी, विशेषकर ऑल इंडिया रेडियो जिसको सुनना आज भी पसंद करते हैं लोग। अब बात करते हैं रेडियो की, जो पत्रकारिता का एक अद्भुत स्तंभ है। 1936 में शुरू हुआ ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी। जब देश में न इंटरनेट था न टीवी, तब रेडियो ही था जो गांव-गांव में सुबह चौपाल जैसा माहौल बना देता था। किसान भाई मौसम की जानकारी रेडियो से लेते थे, छात्र शैक्षणिक कार्यक्रम सुनते थे, घरों में महिलाएं भक्ति संगीत से दिन की शुरुआत करती थी, और देश दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले रेडियो पर सुनाई देती थी। रेडियो की सबसे बड़ी खासियत है इसकी पहुंच। जहां अखबार नहीं पहुंचता, जहां टीवी का सिग्नल नहीं आता, वहां भी रेडियो की आवाज़ गूंजती है। ऑल इंडिया रेडियो ने क्या दिया? समाचार बुलेटिन, कृषि पर विशेष कार्यक्रम, शैक्षणिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक प्रसारण, आपदा के समय जन चेतना। यह कहना गलत नहीं होगा कि ऑल इंडिया रेडियो भारत की आवाज़ बनकर करोड़ों लोगों की जिंदगी का हिस्सा बना है। आज भी जब डिजिटल दुनिया तेज हो रही, तब भी ऑल इंडिया रेडियो लोगों का भरोसे का पर्याय बना है।
0: जी, और क्योंकि महिलाओं के लिए भी पत्रकारिता एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उनका आगे आना बहुत ही आवश्यक है, तो उनके लिए क्या पत्रकारिता में कोई विशेष ऑप्शंस है करियर से जुड़े हुए?
1: जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि महिलाओं के लिए बहुत ऑप्शन खुले हैं। जैसे कि मान लीजिए वॉइस राइटर हो गए, या स्क्रिप्ट राइटर हो गए, या एंकर ही हो गए। उसमें महिलाओं के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि महिलाएं नेशनल टेलीविज़न पर भी दिख सकती हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी बन सकती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आजकल सोशल मीडिया पर बच्चे देख रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस फील्ड में आएँ और इस फील्ड को ज्वाइन करें, और साथ में इस सच्चाई को भी बताएं, जो सच्चाई है शहरों की, ग्रामीण की, उसको लेकर महिलाएं भी जागरूक हों।
0: इसी के साथ हम यह जानना चाहेंगे कि जो युवा पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं या उसे अपने करियर के रूप में चुन रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं कहना चाहूँगा, पत्रकारिता केवल पेशा नहीं है, यह जिम्मेदारी है। यह समाज को जागरूक करने, सच्चाई को सामने लाने और अंधकार से उजाले की ओर ले जाने का माध्यम है। युवाओं को चाहिए कि वो इस जिम्मेदारी को अपनाएं और पत्रकारिता को नए आयाम दें। रेडियो, अखबार, टीवी या डिजिटल हर माध्यम आज भी सच्चे पत्रकारों का इंतजार कर रहा है।
0: जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, पत्रकारिता से जुड़ी हुई, रेडियो से जुड़ी हुई, हमारे युवाओं के लिए दी है, उनके करियर ऑप्शंस के लिए दी है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे जो युवा दोस्त हैं उनके लिए ये जानकारी महत्वपूर्ण साबित होगी। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार
0: दोस्तों, अभी आपने सुने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पत्रकारिता के महत्व पर खंडवा के युवा पत्रकार श्री सावन पाटिल जी से हमारी बातचीत के संपादित अंश। इनसे बात की आपकी अपनी दोस्त शांभवी जोशी ने। और इसी के साथ आइए अब बढ़ते हैं यूथ चॉइस की ओर और शुरू करते हैं सिलसिला फरमाइशी गीतों और पत्रों का। दोस्तों, आज के कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म रंगीला से, जिसमें स्वर हैं सुरेश वाडकर और कविता कृष्णमूर्ति के, गीतकार हैं महबूब और संगीत दिया है एआर रहमान ने। और दोस्तों, इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश भेजी है बड़वाह जिला खरगोन से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनूराज श्रीमाली ने। साथ ही इसे सुनना चाहा है खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू ने। जिला खरगोन सनावत से अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश, शेख मूसा और राजकुमार बुढ़ाना ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। साथ ही खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु और मुकेश जगताप का भी हमें ईमेल प्राप्त हुआ है। दोस्तों, खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुशनसीब अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर और भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी का ईमेल हमें मिला है इसी गीत के लिए। और दत्तरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा का हमें संदेश आया है। जगराओ पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा और सुच्चा सिंह पाठक ने भी हमें संदेश भेजा है। तो आइए इन सभी के पसंद पर सुनते हैं फिल्म रंगीला का ये गीत।

दोस्तों, यह सुंदर सा पत्र हमें प्राप्त हुआ है खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सम्मति पंचोलिया की ओर से। और साथ ही आज के हमारे अगले गीत को सुनने की फरमाइश हमें भेजी है नेपानगर से प्रभुदयाल शिवदे, शिवा बसंतीबाई और गणेश शिवदे, और खंडवा से श्यामाबाई रायकवार ने। रिंग रोड नर्मदा नगर से सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा का हमें संदेश मिला है।

और ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेम लाल वर्मा, निकेश धर्मेंद्र और ममताबाई वर्मा ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। जसवाड़ी से दुर्गेश नागनपुरे और सूरज कुमार ढाकसे ने पत्र भेजा है और नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर कुशल, नीति सुरभि, अश्विनी और मंगलाबेन शाह के साथ ही राजेंद्र शाह ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी का संदेश है और सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। तो आइए इन सभी की पसंद पर सुनते हैं फिल्म मैं वापस आऊँगा का यह गीत, जिसे गाया है दीपाली सहाय ने, शब्द रचना इरशाद कामिल की और संगीत है ए आर रहमान का।

दोस्तों, अगले गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश भेजी है दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, उमेश मिथिलेश वर्मा ने, और नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी।

लक्ष्मी, देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। मध्य प्रदेश खंडवा से सुदामा महेश्वरी, सीता, आशीष, अमन, विजय और महाराज कुशवाहा ने इसी गीत को सुनना चाहा है। माणक चंद गुप्ता और अनिल भी इन्हीं के साथ हैं। और रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और साथ ही बिहार से, अरसिया बिहार से फैजल इमाम मोहम्मद, अफजल मोहम्मद और अकमल नफीसा प्रवीण ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। तो आइए इन सभी की पसंद पर सुनते हैं फिल्म आजा नचले का ये गीत। स्वर है सोनू निगम और श्रेया घोषाल के, बोल हैं पीयूष मिश्रा के और संगीत है सलीम सुलेमान का।

दोस्तों, अगले गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश भेजी है तेलंगाना निज़ामाबाद से शेख अल्लाह बख्श बेगम राबिया शेख शेख रहीम मुन्ना ने, और सनावत से शेख मूसा मोहसिन अशोक वर्मा और राजकुमार बुढ़ाना ने, धनौरी तेलीवाला से उत्तराखंड से निसार सलमानी नौशाद सलमानी आलिया और अयान ने भी इसी गीत को सुना चाहा है, और झारखंड से झारखंड के गिरिडीह से, जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद यासीन अनजान साइमा नवाज हसन अहद मिफ्रा नवाज और चाहत ने, और अंतिम ईमेल हमें भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर रतनमाला सुरलकर ओम कुमार और कुमकुम ने। आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर फिल्म ABCD का यह गीत। आवाज़ है अनुष्का मनचंदा और साथियों की, बोल है प्रिया सरैया के, और संगीत रचना है सचिन जिगर की।

दोस्तों, यह तो था हमारा आज का क्रम यूथ चॉइस। आइए अब जान लेते हैं सामान्य ज्ञान के दो प्रश्नों के उत्तर। आज का पहला प्रश्न था, दुनिया का सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? इसका उत्तर है बांस। और आज का हमारा दूसरा प्रश्न था, किस फल को पकने में लगभग 2 साल का समय लगता है? इसका उत्तर है अनानास यानी पाइनएप्पल। दोस्तों, इसी के साथ आज का कार्यक्रम संपन्न करने की दे अनुमति आपकी दोस्त शांभवी को। फिर मिलेंगे, तब तक हैव अ गुड टाइम। गुड बाय, नमस्कार।

कार्यक्रम में पहला गाना हमने सुना रफ़ी साहब की आवाज़ में, दूसरा गाना था लता जी की आवाज़ में, और अब तीसरा गीत किशोर कुमार की आवाज़ का है, फिल्म परवाना का ये गीत है।

0: So, your place or mine?
1: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डम है?
0: कॉन्डम? लेकिन हम तो
1: क्या हुआ? ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से HIV AIDS और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
0: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
2: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

अब एक डुएट आपके लिए पेश कर रहे हैं, ये लता जी और तलत महमूद की आवाज में है, फिल्म उसने कहा था। शैलेंद्र का गीत है, सलिल चौधरी का संगीत।

0: श्रोताओ, विद्याधर मुले के साथ आप सुन रहे थे फिल्म संकेत। यह आकाशवाणी खंडवा है, शाम के 7 बजे हैं। आइए दिल्ली से सुने हिंदी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोबो सुबियांतो के साथ योग्याकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: योग्यकार्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स, अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं। तीन देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के दूसरे चरण में श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया में प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र में हो रहे घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी वर्षा हुई है, जिससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में अल नीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में यह घटकर 24% रह गई। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ ईपीएफ खातों में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत आईटी सक्षम सेवा CITES प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि नियामक प्रोत्साहनों के माध्यम से गिफ्ट सिटी एक वैश्विक विमान लीजिंग और वित्तीय पोषण केंद्र के रूप में उभर रही है। श्री नायडू ने कहा कि 2026 के बजट में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इकाइयों के लिए कर छूट की अवधि बढ़ाकर 20 वर्ष कर दी गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में जमा 440 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं। यह मामला वित्तीय लेनदेन और संदिग्ध धन के हेराफेरी से जुड़ा हुआ है। जांच में पता चला कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच पार्टी के बैंक खातों से लगभग 160 करोड़ रुपए निजी कंपनी और उसके संबंध इकाइयों में स्थानांतरित किए गए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की 27 मार्च की मूल्यांकन योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने की सहमति दे दी है।

0: यह योजना खाड़ी देशों के उन नियमित विद्यार्थियों के लिए थी जिनकी 12वीं की बोर्ड परीक्षा ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण रद्द हो गई थी। न्यायालय ने केंद्र सरकार और CBSE से जवाब मांगा है। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 में आज शाम एक इमारत ढह गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार मलबे में 4 से 5 लोगों के फंसे होने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीमें भी राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं। तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देशभर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। और इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी खंडवा से FM 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: क्या बात है जीजी, नई साड़ी, नए गहने, बड़ी सजी धजी लग रही हो।
2: अरे जीजी, असल में बात ये है, हमारे इनने ना जब से आकाशवाणी खंडवा पे हमारी दुकान का विज्ञापन दिया है ना, तब से हमारी दुकान बहुत चल रही है। मतलब
1: है? ऐसा क्या? अब मैं भी अपने इनको बोलूंगी कि हमारे बिजनेस का विज्ञापन भी आकाशवाणी खंडवा पर दे। पर देंगे कैसे?
2: अरे इसमें क्या है जीजी, बस आकाशवाणी खंडवा जाओ और विज्ञापन दो।
3: सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।
4: एफएमएंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रोग्राम्स का खजाना।
5: तुम आए तो आया मुझे गली में निकला।
4: तो सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी।

0: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: बड़े अच्छे लगते हैं।
2: क्या

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी खंडवा से। शाम के 7:10 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार अब हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
2: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गा।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा पूरी कर ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रस्थान किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक, कई महत्वपूर्ण फैसलों पर लगी मुहर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने धार जिले के पीथमपुर में लियुगोंग इंडिया के नए विनिर्माण संयंत्र का भूमि पूजन किया और दिल्ली में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो को लेकर की समीक्षा, कहा अच्छी बारिश से वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या घटी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 6 दिवसीय विदेश दौरे के पहले चरण के तहत इंडोनेशिया की सफल यात्रा पूरी कर दूसरे चरण के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो ने खुद एयरपोर्ट पर उन्हें विदाई दी। इस दौरे में ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइल प्रणालियों से जुड़े रक्षा समझौते हुए, जिससे दोनों देशों के बीच सामरिक और रक्षा सहयोग को नई मजबूती मिली है। ऑस्ट्रेलिया रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री श्री मोदी ने योग्याकार्ता स्थित करीब 1000 साल पुराने प्रम्बानन मंदिर में पूजा अर्चना की और राष्ट्रपति प्रबोवो के साथ मिलकर मंदिर के पुनर्स्थापन प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी किया। इस दौरान उन्होंने भगवान शिव से अपने आध्यात्मिक जुड़ाव का जिक्र करते हुए वड़नगर, सोमनाथ और काशी विश्वनाथ का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि केदारनाथ धाम, उज्जैन महाकाल लोक के बाद अब प्रम्बानन मंदिर के पुनर्निर्माण से जुड़ना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। वे भुवनेश्वर में समुद्री मत्स्य संसाधनों से जुड़ी योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। ओयूटी में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने से जुड़े दस्तावेज का लोकार्पण भी होगा। इसके बाद वे नाइसर के 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। यह समारोह खोरधा में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद प्रदेश के एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि सरदार सरोवर बांध परियोजना की लागत को लेकर 3 दशक से लंबित विवाद सुलझ गया है, जिसके तहत अब मध्य प्रदेश गुजरात को 217 करोड़ रुपए का भुगतान करेगा। इसके अलावा कैबिनेट ने प्रदेश के सभी जिलों में छोटे आईटी पार्क विकसित करने के साथ ही डेटा सेंटर उन्नयन के लिए 800 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। वहीं उज्जैन के निकट डोंगला वेदशाला के विकास कार्यों के लिए 39 करोड़ रुपए और नमो हरित नगर योजना के तहत 5 वर्षों में 100 करोड़ रुपए से नगर वन विकसित करने का निर्णय भी लिया गया है।
1: पर्यावरण से संबंधित नई योजना बनाई जा रही है, वह योजना है नमो हरित नगर योजना, जो हर नगर के अंदर नगर वन बनाने हैं पर्यावरण संतुलन के लिए। उसके लिए नमो हरित योजना में अगले 5 सालों के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वन बने, नगर वन जो बने, उन वनों में स्थापना के समय भी CSR स्थानीय जन भागीदारी की राशि जो मिलेगी उसका बराबरी का राशि राज्य सरकार वहन करेगी। प्रति वर्ष 5 सालों तक उनको मेंटेनेंस की राशि भी राज्य सरकार देगी।

0: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में लियुगोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नए विनिर्माण संयंत्र का भूमि पूजन किया। चीन की अग्रणी निर्माण उपकरण कंपनी गुआंगशी लियुगोंग मशीनरी की भारतीय इकाई 272 करोड़ रुपए के निवेश से यह संयंत्र स्थापित कर रही है।
1: इंडस्ट्रियों का एक तरह से ग्रोथ इंजन पूरे प्रदेश में माने तो वो धार जिला है। आज हेलियन ग्रुप की नई यूनिट 272 करोड़ की लागत से नई यूनिट का लोकार्पण, दुनिया का सबसे युवा देश अगर कोई है तो भारत है, और भारत के अंदर ये सभी संभावना है जिसके आधार पर उसकी विकास दर बता रही है, और उसी के आधार पर मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला करके वो सभी संभावनाओं पर काम कर रहा है जिसकी आज दरकार है।
0: मुख्यमंत्री ने बताया कि नया संयंत्र लगभग 20 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। प्रारंभिक चरण में यहां हर साल 6,500 निर्माण उपकरणों के उत्पादन की क्षमता होगी, जिसमें मुख्य रूप से एक्सकेवेटर बनाए जाएंगे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज हवाई अड्डों की सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू के साथ ये बैठक की। श्री शाह ने सभी हवाई अड्डों पर स्वचालित एक्सरे ट्रे सिस्टम लगाने के निर्देश दिए। एरो ब्रिज और बैगेज ड्रॉप सुविधा बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि 2027 तक सभी राज्यों में विदेशी पंजीकरण कार्यालय शुरू होंगे। अगरतला और जेवर हवाई अड्डों पर जल्द आवर्जन जांच चौकी शुरू करने को भी कहा गया है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश में वर्षा की स्थिति पर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि हाल के दिनों में अच्छी बारिश हुई है, जिससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में अलनीनो के प्रभाव पर हुई समीक्षा बैठक में श्री चौहान ने बताया कि जून में 33% बारिश की कमी थी, जो जुलाई में घटकर 24% रह गई है। उन्होंने कहा कि अब तक लगभग 350 लाख हेक्टेयर में खरीफ की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल से कम है। मंत्री ने किसानों को मक्का, बाजरा और मूंग जैसी कम पानी वाली फसलें बोने की सलाह दी है।
3: अल नीनो के कारण जो कृषि की परिस्थितियां पैदा हो रही है उस पर लगातार हमारी नजर है। अभी हाल में 3-4 दिनों में देश के कई हिस्सों में बारिश हुई है, कई राज्यों में बारिश हुई है, और पहले जो 262 जिले कम बारिश वाले थे उनकी संख्या घटकर अब 178 रह गई है। कल तक 350,85,000 हेक्टेयर में बोनी हुई है। अब किसानों को यह सलाह दी जा रही है कि इनकी जगह, क्योंकि अब देर हो जाएगी, तो मक्का, बाजरा और मूंग जैसी कम अवधि की फसल जो कम समय में आ जाती है उनकी बुआई को प्राथमिकता दें।
0: धार वन मंडल ने जनवरी से मई 2026 के बीच वन भूमि संरक्षण अभियान चलाकर करीब 590 हेक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। सबसे ज्यादा जमीन बाघ परिक्षेत्र में छुड़ाई गई है, जिसके बाद धार, टांडा, मांडव, सरदारपुर, कुक्षी और धामनोद का नंबर आता है। इस मुक्त कराई गई जमीन पर अब सागौन के पौधे लगाकर पुनर्वनीकरण किया जा रहा है, जिसके लिए कर्मचारियों को खास ट्रेनिंग भी दी गई है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज मंत्रालय में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कामकाज की समीक्षा की। सीईओ आयुष्मान अरविंद कुमार शाह ने बताया कि प्रदेश में अब तक करीब 5,86,00,000 आभा आईडी बनाई जा चुकी हैं, जबकि लगभग 20,000 अस्पताल और 18,000 डॉक्टर नर्स डिजिटल रजिस्ट्री से जुड़ चुके हैं। प्रदेश के 533 अस्पतालों में स्कैन एंड शेयर सुविधा से अब तक 1 करोड़ से ज्यादा ओपीडी टोकन जारी किए जा चुके हैं। प्रदेश के सभी शासकीय, अशासकीय और निजी महाविद्यालयों में रिक्त सीटों पर ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाने के लिए उच्च शिक्षा विभाग 8 से 15 जुलाई तक प्रवेश मेला आयोजित कर रहा है। यह हर दिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा, जिसमें विद्यार्थियों को एक ही जगह पर पंजीयन, च्वाइस फिलिंग, दस्तावेज सत्यापन और शुल्क भुगतान जैसी सुविधाएं मिलेंगी। राजधानी भोपाल में दवा दुकानों पर सख्ती की गई है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने शहर के कई मेडिकल स्टोर्स की अचानक जांच की। जांच में गड़बड़ी मिलने पर 32 मेडिकल स्टोर्स पर कार्रवाई की गई है। बिना फार्मासिस्ट दवा बेचने वाले 2 स्टोर्स का लाइसेंस रद्द किया गया। डॉक्टर के पर्चे के बिना दवा बेचने पर 1 स्टोर का लाइसेंस भी निरस्त किया गया है। इसके अलावा 8 स्टोर्स के लाइसेंस सस्पेंड कर 21 दुकानदारों को नोटिस दिया गया है। भोपाल में भारतीय खेल प्राधिकरण के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र से 2 कैनो खिलाड़ियों का चयन हुआ है। एल नेहा देवी और हर्षवर्धन सिंह शक्तावत अब भारतीय टीम का हिस्सा होंगे। दोनों खिलाड़ी 2026 ICF कैनो स्प्रिंट और पैरा कैनो वर्ल्ड कप में खेलेंगे। ये प्रतियोगिता 9 से 12 जुलाई तक कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में होगी।

कैनो स्प्रिंट एक रोमांचक और प्रतिस्पर्धी जल क्रीड़ा है जिसमें एथलीट शांत या समतल पानी पर विशेष रूप से डिजाइन की गई नावों में एक सीधी रेखा में कम दूरी की रेस लगाते हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। श्योपुर कलेक्टर शीला दाहिमा ने जिला अस्पताल के पोषण पुनर्वास केंद्र का निरीक्षण कर सभी बेड पर बच्चों को भर्ती करने और फायर सेफ्टी दुरुस्त करने के निर्देश दिए। खंडवा के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में भारतीय शिक्षा दिवस पर भारतीय ज्ञान परंपरा एवं चरित्र निर्माण विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर में राष्ट्रीय कार्यशाला के दूसरे दिन नागानंद नाटक की पृष्ठभूमि और रस सिद्धांत पर व्याख्यान हुआ। देवास जिला चिकित्सालय में विश्व क्लब फुट माह के तहत जनजात पैर के तिरछेपन से पीड़ित बच्चों की पहचान कर उनका मुफ्त इलाज किया जाएगा। आगरमालवा कलेक्टर ने 14 जुलाई से शुरू होने वाले दस्तक सह स्टॉप डायरिया अभियान को गंभीरता और आपसी समन्वय से संचालित करने के निर्देश दिए। सीहोर में सेफ क्लिक अभियान 2.0 के तहत आज भैरुंदा में साइबर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अशोकनगर में स्टॉप डायरिया अभियान चलाया जा रहा है। शिवपुरी में विद्यार्थियों को रोजगार परक और उच्च गुणवत्ता की शिक्षा के लिए कई नवाचारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है और झाबुआ में शासकीय विद्यालय पिपलिया पारा रोड और आंगनवाड़ी केंद्र का कलेक्टर ने औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

खेती गृहस्थी कार्यक्रम लेना आज की सांझ आपका साथ आपकी बहन सीमा कार्यक्रम सुनने वाला सब किसान भाई बहन नखर राम राम। भाई बहन हो जिना मौसम को हम सब रस्तों देखी रहा था उना मौसम की शुरुआत हुई गई। आसमान में टकटकी लगाई न उमड़ता घुमड़ता बादल नख देखी न रोज प्रार्थना करता था कि कब बरसगा काला मेघ ताकि हम सब इन्हीं उमस न गर्मी से राहत पाई सका। हमारा किसान भाई बहन भी धरती की प्यास बुझना को रस्तो देखी रहा था कि कब इंद्र राजा मेहरबान हुई जाए न हम लगा वावणी में। इस समय खंड वर्षा का कारण कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हुई रही न हमारा किसान भाई बहन वावणी में लगी गया। भाई बहन खंड वर्षा की स्थिति का देखते हुए असी फसल न लगावा जेमा की कम पानी की आवश्यकता रहे न उत्पादन भी हमका अच्छो मिला। एको सबसे अच्छो फायदो में लगा हमका मोटा अनाज वाली फसल नसी। खरीफ में ज्वार बाजरा रागी कोदो कुटकी सावा कंगनी इन्हीं फसल को उत्पादन ले सका। ई मोटा अनाज कम पानी कम लागत न प्रतिकूल परिस्थिति में भी अच्छी उपज देने का कारण लाभदायक छे। वर्तमान समय में स्वास्थ्य का प्रति लाभकारी होना सी इनकी मांग न बाजार मूल्य में भी बढ़ोतरी हुई। भाई बहनों मोटा अनाज की खेती को सबसे बड़ो लाभ ही छे कि एमा लागत कम लगज बीज उर्वरक कीटनाशक न सिंचाई पर कम खर्चो होज साथ ई फसल न रोग न कीट न का प्रति अधिक सहनशील रह जेकासी फसल खराब होना को भय नहीं रहे तो न किसान भाई बहन नख कम लागत में अधिक लाभ मिलज। इन्हीं फसल को सबसे महत्वपूर्ण लाभ ई छे कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव का अच्छा ढंग से सहन करी ले। सूखो अधिक तापमान अनियंत्रित वर्षा जैसी परिस्थिति में भी ज्वार बाजरा न रागी अच्छी उपज दे एका लेना इनका जलवायु का अनुकूल फसल न मान्य गए। हमारे यहाँ की कृषि में को महत्व भी बड़ी रोज हालांकि हमारे पूर्वज अधिक से अधिक उत्पादन ज्वार मक्का कुछ करता था।

तमज तो हमारे यहाँ ज्वार खज्वार माता कहो जाए। शादी विवाह का शुभ अवसर पर भी एक विशेष महत्व है। मोटा अनाज पोषण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इनमें प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम जैसा कई खनिज तत्व न विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाए। नियमित रूप से इनका सेवन से मधुमेह, मोटापा, हृदय रोग, कुपोषण जैसी समस्या नसी भी बचो जा सकज। शासन द्वारा मोटा अनाज का उत्पादन कर लेना कई योजना भी चलाई जा रही। किसान को उन्नत बीज, तकनीकी सलाह, प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराए जा रोज। एक अलावा प्रसंस्करण न विपणन जैसी सुविधा न दई न उपज बेहतर न अच्छा मूल्य का लेना प्रयास कराया जा रहा है। मोटा अनाज से दलिया, बिस्किट, कुकीज, नूडल्स जैसा खाद्य पदार्थ न स्वास्थ्य वर्धक उत्पाद तैयार कराया जा रहा है। मूल्य संवर्धन का कारण किसान न कृषि उद्यमी न अतिरिक्त आय प्राप्त करना का अवसर दिया जा रहा है। मोटा अनाज की खेती पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दे। कम पानी की आवश्यकता होना पर भूजल को दोहन कम हो, न रासायनिक उर्वरक न कीटनाशक न को कम उपयोग होना से प्रदूषण भी कम हुई रोज। भाई बहन खरीफ में मोटा अनाज का उत्पादन से किसान भाई बहन कम लागत, कम पानी न प्रतिकूल मौसम में अच्छी उपज प्राप्त कर सकज। जेकासी न केवल किसान भाई बहन की आय बढ़ेगा बल्कि खाद्य न पोषण सुरक्षा का साथ पर्यावरण संरक्षण न टिकाऊ कृषि का भी महत्वपूर्ण अवसर मिलेगा। भाई बहनों ईत थी आपकी इन हमारी छोटी सी बातचीत न मौसम का देखते हुए आओ हम सुना तुलाराम गिन्नारे न उनका साथी नसी यो लोक गीत।

0: भाई बहन, अभी हम सुन रहा था तुलाराम गिन्नारे ने उनका साथी नसी ये लोकगीत।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: भाई बहनों, आओ अब समय छे आज का प्रश्न को। प्रश्न छे, किना जैव उर्वरक का प्रयोग करना सी तिलहनी फसल में तेल की मात्रा, नमक्का में प्रोटीन की मात्रा बढ़ी जाए। प्रश्न एक बार फिर से सुनी लो। किना जैव उर्वरक को उपयोग करना सी तिलहनी फसल में तेल की मात्रा, नमक्का में प्रोटीन की मात्रा बढ़ी जाए। इना प्रश्न का उत्तर हम आपका बतावेंगा कार्यक्रम का आखिरी में। बना रहो हमारा साथ कार्यक्रम में। भाई बहनों, हमारी कृषि आय खबड़ावना कलेना हम निरंतर प्रयासरत रवान। शासन द्वारा भी समय समय पर इन्हीं फसल न का उत्पादन कलेना किसान भाई बहन का आवश्यक सलाह न जानकारी देज, ताकि हमारी कृषि अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होए। पारंपरिक फसल न की तुलना में फल सब्जी न फूल सी अधिक लाभ प्राप्त करे जा सक। किसान भाई आधुनिक तकनीक को उपयोग करी न कम क्षेत्र में अधिक उत्पादन लई न मुनाफो ले सकज। उद्यानी की फसल में कई फसल नासी छे जेको की एक साल में एक से अधिक बार उत्पादन लियो जाई सकज, जेका सी नियमित आय बनी रहे। उद्यानी की क्षेत्र में खेती का साथ साथ पौध तैयार करनो, सिंचाई कटाई पैकिंग भंडारण परिवहन न संस्करण जैसा कई कार्य हो, जेका सी रोजगार का अवसर बढ़ज। महिला ने युवा भी इना क्षेत्र में कार्य करी न लाभ प्राप्त करी सकज। फल न सब्जी को प्रसंस्करण उद्योग न का विकास सी रोजगार का अवसर बढ़ज। फल न सब्जी हमारा शरीर का लेना विटामिन खनिज लवण रेशा न एंटी ऑक्सीडेंट का प्रमुख स्रोत छे। नियमित रूप से इनका सेवन सी शरीर स्वस्थ रहज, अनेक बीमारी न सी बचाव होज। संतुलित आहार में उद्यानिकी फसल न को विशेष महत्व छे। उद्यानिकी फसल न सी पर्यावरण भी शुद्ध रहज। फलदार पेड़ न छायादार वृक्ष वातावरण का शुद्ध करज, न वृक्ष न की जड़ न मिट्टी का कटाव खरोखज, भूमि की उर्वरता बनाए रखना में सहायक रहे। हमारा देश में आम अंगूर

केला मसाला न फूल न को निर्यात दूसरा देश में भी करो जाए जेका सी विदेशी मुद्रा भी प्राप्त हो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का मजबूती मिलज उद्यान की फसल की कृषि विविधीकरण होना सी फल सब्जी फूल न औषधि खेती

0: केला, मसाला न फूल न को निर्यात दूसरा देश में भी करो जाए जेका सी विदेशी मुद्रा भी प्राप्त हो, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का मजबूती मिलज, उद्यान की फसल की कृषि विविधीकरण होना सी फल सब्जी फूल न औषधि खेती करना सी लाभ कमाया जा सकज। एक फसल को मूल्य कम हो तो दूसरी फसल से होने वाली आय से हम अपनी आय का सुरक्षित बनाई सकें। साथ ही भाई बहनों, फल न सब्जी का साथ जैम जेली अचार जूस मुरब्बा सूखा फल से खाद्य पदार्थ तैयार कराया जा सकज। कृषि आधारित उद्योग न को विकास भी हो, प्रसंस्करण का कारण उत्पाद न को भंडारण न परिवहन भी आसानी से हुई जाए। साथ ही भाई बहनों, ड्रिप सिंचाई मल्चिंग पॉलीहाउस ग्रीन हाउस का साथ जैविक खेती जैसी आधुनिक तकनीक का माध्यम से उद्यान की फसल नसी अच्छे उत्पादन प्राप्त हो। भाई बहनों, हम कई सकान की उद्यान की फसल नसी किसान न की आर्थिक उन्नति तो हो, रोजगार सृजन भी हो, पोषण सुरक्षा न पर्यावरण संरक्षण का साथ देश की अर्थव्यवस्था का मजबूती मिले। किसान भाई आधुनिक तकनीक न का अपनाई न उचित भंडारण न विपणन की व्यवस्था करी न लाभ प्राप्त करी सकज। किसान भाई बहन समय समय पर आवश्यक प्रशिक्षण लेना इन्हीं खेती का अपनाई न उद्यानिकी क्षेत्र में आर्थिक प्रगति करी सकज जेका सी न केवल किसान भाई बहन न को बल्कि देश को भी समग्र विकास होएगा। तो भाई बहन होन ये तो थी आपकी न हमारी आज की बात। न भाई बहन होन आओ अब चलन जानकारी की तरफ न सुना वार्ता मूंगफली की वैज्ञानिक खेती। जानकारी दे रहा कृषि विज्ञान केंद्र ब्रानपुर का कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर कार्तिकेय सिंह।
1: किसान भाइयों नमस्कार, मैं कार्तिकेय सिंह कृषि विज्ञान केंद्र बुरहानपुर से। किसान भाइयों, आज आप लोगों के बीच मूंगफली की वैज्ञानिक खेती पर चर्चा होगी। खास तौर से मूंगफली का खेती जो है वो तिलहनी फसलों में आता है, जैसे हम सरसों राई अलसी सोयाबीन सनफ्लावर लगा करके और तेल की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं देश के खाद्यान्न में। उसी तरह मूंगफली जो है वो तेल की एक अग्रणी फसल है जिसमें सबसे अधिक तेल की मात्रा पाई जाती है। तो मूंगफली की बात अगर की जाए तो मूंगफली भारत की प्रमुख तिलहनी फसल है और सही तकनीक अगर हम अपनाएं तो प्रति एकड़ अच्छी पैदावार देती है, जिसमें आयल का प्रतिशत लगभग 35-40% आयल रहता है। मूंगफली की खेती खास तौर से दो मौसम में की जाती है, एक तो जनवरी से फरवरी में आप कर सकते हैं और नहीं तो फिर आप बारिश में मूंगफली की खेती को ले सकते हैं। किसान भाइयों, मूंगफली की खेती में अगर हम जलवायु की बात करें तो मूंगफली के लिए 25 से 35 सेंटीग्रेड तापमान अच्छा रहता है। मध्यम बारिश वाला जो क्षेत्र है उसमें मूंगफली की अच्छी खेती होती है, खासतौर से 500 मिलीमीटर से लेकर 1000 मिलीमीटर वर्षा वाली जगह को इसकी खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। और फसल को पाला और ज़्यादा पानी से नुकसान होता है तो जल निकास की उचित व्यवस्था मूंगफली की खेती में होना चाहिए। मूंगफली का खेती जो है वो किसी भी प्रकार के मिट्टी में कर सकते हैं, लेकिन अगर अच्छा पैदावार आपको लेना है तो रेतीली भुरभुरी दोमट या हल्की दोमट या थोड़ा बलुई दोमट मिट्टी रहे तो उसमें अच्छा पैदावार देती है। मिट्टी में खास तौर से 6-7.5% पीएच हो तो वो उपयुक्त मानी जाती है। साथ ही यह ध्यान दिया जाता है कि ऐसे खेत का चुनाव करें जिसमें जल निकास का समुचित व्यवस्था हो और आवश्यकता पड़ने पे हम पानी भी दे सकें। खेत की तैयारी की अगर हम बात करें तो मूंगफली के लिए कम से कम पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करना चाहिए और 2-3 बार कल्टीवेटर करके जुताई करना चाहिए। आखिरी जुताई में रोटावेटर चला करके और पाटा लगा करके खेत को खूब अच्छे से बराबर कर दें और प्रति 2-3 टन गोबर की खाद आवश्यक रूप से डालें। मिट्टी की तैयारी खास तौर से और जो गोबर की खाद है ये उपयुक्त जमीन मिट्टी का कंडीशन मिट्टी की उर्वरा क्षमता और उत्पादकता देने की जो ताकत है उस पे निर्भर करता है। तो इस पे विशेष ध्यान देंगे कि हम गोबर का खाद घटा भी सकते हैं बढ़ा भी सकते हैं। किसान भाइयों, मूंगफली की बहुत सारी प्रजाति

यह देश में हैं, लेकिन अच्छा उत्पादन और पैदावार देने वाली अगर हम प्रजातियों की बात करें तो अच्छा पैदावार के लिए कुछ किस्में हम बता रहे हैं, जैसे JL24 है, उसके बाद से दूसरी प्रजाति है GG20, तीसरी प्रजाति की अगर हम बात करें तो TG37A है, चौथी प्रजाति की बात करें तो Kadri 6 है। ये सभी ग्राउंड नट मतलब मूंगफली की उन्नतशील प्रजातियां हैं जो समय से बुवाई करने के बाद अच्छा उत्पादन देने के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं। किसान भाइयों, बुवाई का जो समय है वो हम खासतौर से मूंगफली को दो सीजन में बुवाई करते हैं। एक तो खरीफ सीजन में हम बुवाई करते हैं, जिसकी बुवाई जून से जुलाई के मध्य हम कभी भी कर सकते हैं, और दूसरी हम रबी या गर्मी में मूंगफली की बुवाई कर सकते, खासतौर से निमाड़ में कर सकते हैं अगर हमारे पास सिंचाई का साधन हो तो। तो पूरे वर्ष में दो बार हम बुवाई मूंगफली का कर सकते हैं अपने क्षेत्र में और करके उत्पादन ले सकते हैं। बुवाई के लिए जो हमको बीज की आवश्यकता पड़ेगी वो 35 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता पड़ेगी। 35 से 40 एकड़ मूंगफली का बीज एक एकड़ के लिए पर्याप्त रहता है। अब उसमें ये देखा जाता है कि अगर मोटा दाना वाला है मूंगफली तो थोड़ा बीज का मात्रा बढ़ जाता है, और छोटे और मध्यम दाने वाले अगर मूंगफली हैं तो उसमें बीज की मात्रा हम थोड़ा कम भी कर सकते हैं। बीज का चयन और बीज 35 से 40 केजी का व्यवस्था करने के बाद बात आती है कि रोग बीमारी और कीट पतंगों से बचने हेतु बीज का उपचार आवश्यक है। यह एक प्रमुख पहलू है कि हम खेती को रोग बीमारी एवं कीटों से बचाएं, इसके लिए बीज उपचार आवश्यक है। तो किसान भाइयों, बीज उपचार को आप खास तौर से फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड, जिसको आप कीटनाशक कहते हैं, दोनों से कर सकते हैं, या किसी एक से करने की आवश्यकता हो तो फंजीसाइड से कर सकते हैं। अब फंजीसाइड में किसान भाइयों के पास दो विकल्प रहता है, एक तो जैविक फंजीसाइड के रूप में ट्राइकोडर्मा पाउडर है, और रासायनिक फंजीसाइड के रूप में कार्बेंडाजिम है, थायरम है, रासायनिक पाउडर फंजीसाइड में उपलब्ध है। तो दोनों में से किसी एक का हम चयन कर लेंगे। अगर हमको जैविक फंजीसाइड फफूंदनाशी ट्राइकोडर्मा पाउडर का प्रयोग करना है तो 1 किलोग्राम बीज के लिए कम से कम 5 से 6 ग्राम पाउडर की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हम रासायनिक बीज उपचार करना चाहते हैं, थायरम से हम कर सकते हैं, कार्बेंडाजिम से हम कर सकते हैं, और कार्बेंडाजिम 2 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से हम बीज का उपचार करें। बीज उपचार एक महत्वपूर्ण क्रिया है, खासतौर से खेती में बीज उपचार आवश्यक रूप से होना चाहिए, और बीज उपचार के लिए किसान भाई को ये ध्यान देना चाहिए कि एक एकड़ के लिए जो आप 40 केजी बीज का चयन किए हैं, उस 40 केजी बीज को कहीं छायेदार स्थान पे बिल्कुल प्लास्टिक का सीट बिछा करके और 3 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से 90 से 100 ग्राम कार्बेंडाजिम पाउडर को उसके ऊपर डाल के और हल्का सा पानी का छींटा मार के और हाथ में पॉलीथीन या कुछ प्लास्टिक लपेट के और उससे मिला देना चाहिए। इतना मिलाना चाहिए जैसे आप बाल में तेल लगाते हैं, उस तरह से उसको मिला दें, और मिला के कम से कम छाए वाला स्थान में 3 से 4 घंटा तक उसको ढक के रख दें और उसके बाद ही बुवाई करें, ताकि जो दवाई है कार्बेंडाजिम या कोई भी रासायनिक दवा या जैविक दवा फफूंदनाशक, वो बीज के अंदर तक उसको शोषित हो जाए और बीज जनित जितनी बीमारियां और रोग व्याधियां हैं वो सारा नष्ट हो जाए। तो किसान भाइयों, बीज का उपचार अच्छी तरीका से और अच्छा विधि से करना बहुत आवश्यक है। अब बीज उपचार करने के बाद बात आती है बुवाई की। तो बुवाई की जो विधि है वो खास तौर से मूंगफली कतार में ही लगाई जाती है, और इसके लिए कतार से कतार की दूरी जो है 30 से 45 सेंटीमीटर रखी जाती है, और पौध से पौध की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखी जाती है। अगर हम गहराई की बात करें तो मूंगफली 4 से 5 सेंटीमीटर गहरी लगाई जाती है, बीज से पौध 10 से 15 सेंटीमीटर, लाइन से लाइन 30 से 45 सेंटीमीटर का रखें। इन दूरी पे अगर आप बुवाई करेंगे तो आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा। अगर खाद और उर्वरक प्रबंध की हम बात करें तो किसान भाइयों, 1 एकड़ के लिए जो DAP है, जिसको डाई अमोनियम फास्फेट कहते हैं, वह 50 किलोग्राम डालें, यूरिया 20 किलोग्राम डालें, पोटास 20 किलोग्राम डालें, और सबसे प्रमुख जो बात है वो ये है कि मूंगफली के खेती में तेल का प्रतिशत बढ़ाने के लिए 100 किलोग्राम जिप्सम फूल आने पर आवश्यक

0: आवश्यक रूप से दें। जिप्सम देना बहुत जरूरी है। जितनी तेल वाली फसलें हैं उसमें जिप्सम अनिवार्य रूप से डालना ही चाहिए। तो एक एकड़ में 100 किलोग्राम जिप्सम आप जरूर डालें और यह जिप्सम डालने का जो समय है वो फूल आने पर डालें। बाकी जो आपका DAP है और पोटास है वो बुआई के समय जोताई करके मिट्टी में मिला दें अंतिम जोताई के समय। तो इस तरह से आप प्रति एकड़ खाद और उर्वरक का प्रयोग प्रबंध आप कर सकते हैं। अगर आपके पास गोबर का खाद है तो वो भी आप डाल सकते हैं, नहीं है तो DAP यूरिया पोटास और जिप्सम ये जितने मात्रा में मैं बताया उसका प्रयोग आप आवश्यक रूप से अच्छा उत्पादन लेने के लिए किसान भाई जरूर करें। अब चूंकि दो मौसम में मूंगफली की खेती होती है, अगर किसान भाई खरीफ में कर रहा है तो पर्याप्त बारिश पर आधारित रहता है और वर्षा आधारित फसल होती है तो उसको सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन वही अगर गर्मी में मूंगफली की खेती करता है किसान भाई तो 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। आजकल खासतौर से हमारे क्षेत्र में, जिस क्षेत्र से हम लोग बात कर रहे हैं निमाड़ क्षेत्र में, तो निमाड़ क्षेत्र में कोई भी किसान ऐसा नहीं है जो ड्रिप और स्प्रिंकलर का प्रयोग नहीं करता है। तो किसान भाई खेती में मूंगफली की लाइन से लाइन में आप ड्रिप का या इन लाइन का प्रयोग करें और उसी से आप सिंचाई करते रहें, नमी बना करके रखें। और ऐसे अगर आप कर रहे हैं और मध्यम मिट्टी है आपकी तो 7 से 10 दिन के अंतराल पर आप सिंचाई करते रहें, यह महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फूल बनते समय और दाना भरते समय आपको सिंचाई और नमी खेत में बना करके आवश्यक रूप से रखना ही है, ताकि हमारे दाने मजबूत हों और पैदावार अधिक हो और जो पैदावार हो उसका वेट गेन हो। ये बात जरूर ध्यान में रखना चाहिए, दाना भरते समय नमी की कमी नहीं होनी चाहिए, खासतौर से गर्मी वाले समय में। अगर किसान भाई मूंगफली के खेती में चारा से और खरपतवार से आप परेशान हैं या इसकी समस्या आपके क्षेत्र में बहुत है तो बुआई के 20 से 25 दिन बाद आप निराई गुड़ाई आवश्यक रूप से करें। निराई गुड़ाई करना आवश्यक है। इसके लिए आपके पास लोकल जो डिवाइस है, लोकल जो औजार है, खुरपा है, कुल्पा है, बखर है, इत्यादि से आप करें, दराती से करें। अगर ज्यादा आप ये नहीं प्रयोग कर सकते हैं या इसकी आवश्यकता आपको लगता है कि इससे नहीं हो सकता है तो आप पेंडा मेथालिन 1 लीटर या प्रति हेक्टेयर के दर से बुआई के 1 दिन के अंदर आप जरूर छिड़काव कर दें, ताकि आपका खरपतवार से नियंत्रण मिल जाए। किसान भाइयों, अगर हम कीट की बात करें तो पत्ती खाने वाली इल्ली, तेला, दीमक इत्यादि हमारे मूंगफली में लगता है जिससे हमको नुकसान पहुंच सकता है। इसके नियंत्रण के लिए इमीडा या क्लोरोपायरीफास या प्रोफेनोफास किसी एक का चयन करके 40 ml प्रति पंप के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। मूंगफली में बहुत ज्यादा रोग नहीं आता है। प्रमुख रोग जो है वो जड़ सड़न और टिक्का रोग आता है, जो फंगल डिजीज है, फंगस के वजह से होता है। इसके लिए मैंकोजेब 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आपको छिड़काव करने की जरूरत है, या जो साफ पाउडर है कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब का कॉम्बिनेशन, इसको भी आप ले सकते हैं। किसान भाइयों, आपकी फसल 100 से 120 दिन में पक के तैयार हो जाती है और अच्छा तरीका से प्रबंध करें तो आपका खुदाई के बाद 3 से 4 दिन में सूख करके दाना बाजार में जाने लायक हो जाता है और 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ आपको उत्पादन मिल जाता है। और अगर हम बाजार मूल्य की बात करें तो कभी भी मूंगफली में जो है लाभ और लागत देखें तो शुद्ध मुनाफा हमारा कम से कम 35 से 50 हज़ार तक प्रति एकड़ हमारा जा सकता है। और लागत की हम बात करें तो 1 एकड़ में 20 से 25 हज़ार रुपये की लागत आती है। कुल आय जो शुद्ध आय है सारा लागत काटने के बाद वो आपका लगभग 30 से 40 हज़ार रुपया प्रति एकड़ आ जाएगा। तो 80 से 100 दिन की यह महत्वपूर्ण फसल तिलहनी हमारे निमाड़ क्षेत्र के लिए और यहाँ के क्लाइमेट और सॉइल के लिए उपयुक्त है। हम समझते हैं कि आप सभी को इसका लाभ जरूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद
1: भाई बहन। अभी हम सुन रहा था वार्ता, विषय था मूंगफली की वैज्ञानिक खेती। जानकारी दे रहा था कृषि विज्ञान केंद्र ब्रह्मपुर का कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर कार्तिकेय सिंह। न भाई बहनों, आओ अब सुनाएं धर्मेंद्र सरमंडल न उनका साथी नसी यो लोक गीत।

कृषि न किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह न चौहान न प्रगति नामक राष्ट्रीय पहल को शुभारंभ करो। इन्हीं पहल को देश देश भर में 20,000 ग्रामीण युवा नख कृषि उद्यमी का रूप में तैयार करनो। इनका माध्यम से 20 लाख छोटा न सीमांत किसान न की आय उत्पादकता न आजीविका में सुधार लाणु। शासन को मानना छे कि ई पहल कृषि में तकनीक नवाचार न उद्यमिता का बढ़ावा देना ग्रामीण अर्थव्यवस्था का दिशा देगा। ई तो था आज का हमारा कृषि समाचार। न कृषि उपज मंडी से प्राप्त उपज का भाव इना प्रकार से छे। सोयाबीन न्यूनतम भाव 5,501, अधिकतम 7,201 रुपए प्रति क्विंटल। गेहूं को न्यूनतम भाव 2,378 न अधिकतम 2,710 रुपए प्रति क्विंटल। तुअर को न्यूनतम भाव 5,201, अधिकतम 6,199 रुपए प्रति क्विंटल। चना को न्यूनतम भाव 4,900 न अधिकतम 5,781 रुपए प्रति क्विंटल। मक्का को न्यूनतम भाव 1,951 न अधिकतम 2,164 रुपए प्रति क्विंटल। सरसों को न्यूनतम न अधिकतम भाव 6,400 रुपए प्रति क्विंटल। मूंग को न्यूनतम भाव 6,500 न अधिकतम 7,225 रुपए प्रति क्विंटल। सूर्योदय आज 5:47 पर हुयो न सूर्यास्त शाम 7:10 पर। आज दिन को अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहो न रात को न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना छे। ई तो था कृषि उपज मंडी न मौसम को हाल। नाओ अब सुनांज हेमलता उपाध्याय न उनका साथी नसी यो लोकगीत।

भाई बहन, अभी हम सुन रहा था हेमलता उपाध्याय सीओ लोकगीत। अब समय छे आज का प्रश्न का उत्तर को। हमने कार्यक्रम की शुरुआत में प्रश्न पूछो थो कि किना जैव उर्वरक को प्रयोग करना सी तिलानी फसल में तेल की मात्रा न मक्का में प्रोटीन की मात्रा बढ़ी जाए, तो एजेटोबैक्टर जैव उर्वरक को प्रयोग सी तिलहनी फसल में तेल की मात्रा न मक्का में प्रोटीन की मात्रा बढ़ी जाए। एक साथ कार्यक्रम को समय यहाँ पूरा हो। आज्ञा देव अपने बहन सीमा का राम राम।

अभी खेती गृहस्थी कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। अब राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे।

आज के हवा महल में सुनवा रहे हैं अरविंद नीमा की लिखी नाटिका नैहर छूटो जाए। निर्देशक हैं जटाशंकर शर्मा।

0: कौन है? अंदर आ जाओ।
1: अरे कृष्णन बेटा तुम?
2: जी नमस्ते।
1: नमस्ते, बड़े दिनों में आए। मैं तो समझती थी कि तुम हमें भूल ही गए।
2: अरे नहीं, भूलूंगा क्यों, बस मरीजों से ही फुर्सत नहीं मिल पाती। आज मिली तो सीधा आपके दर्शनों को चला आया।
1: आओ बैठो बैठो, कैसे हो?
2: ठीक हूँ। अब आपकी तबीयत कैसी है?
1: अब तो एकदम ठीक है। लगता ही नहीं है कि कभी इतना बड़ा ऑपरेशन भी हुआ था।
2: और उस समय कितना डर गई थी आप?
1: अब बेटा, पहले कभी तो ऑपरेशन वगैरह कुछ हुआ नहीं, और ऊपर से ये शहर वाले डॉक्टर बहुत डरा दिया था। बात तो सच ये है कि वो सब तेरे ही हाथ का हुनर था, जो 5 महीने में मैं एकदम ठीक हो गई।
2: हुनर मेरा कैसा, ये तो बड़े बूढ़ों का आशीष है।
1: हाँ, वो तो है ही, पर अब बड़े बूढ़ों के लिए एक बहू भी ले आओ।
2: हाँ अब यही चल रहा है।
1: कोई लड़की वड़की देखी है क्या?
2: हाँ लड़की तो पसंद आ गई, देखें आगे क्या होता है।
1: लड़की पसंद कर ली तो अब क्या होने को है?
2: अरे हाँ मम्मी, वसुधा नहीं दिखाई दे रही।
1: लाइब्रेरी गई है।
2: अच्छा, उसकी शादी कब कर रही हूँ?
1: वसुधा के पापा इसी सिलसिले में उदयपुर गए हुए हैं।
2: हाँ।
1: अगर रिश्ता तय हो गया तो सबसे पहले तुम्हें ही मिठाई खिलाऊंगी। हाँ, बेटा।
2: अच्छा, फिर तो आज से ही तैयारी करनी पड़ेगी।
1: तैयारी?
2: हाँ।
1: कैसी तैयारी?
2: मिठाई पचाने की।
1: अच्छा अच्छा। हाँ। बोलो, चाय पियोगे या कॉफी बनाऊ?
2: नहीं मम्मी, इसकी तकलीफ मत करो।
1: अरे तकलीफ काहे की, तुम ही तो कहते हो कि अगर सदा निरोगी रहना है तो बिस्तर पकड़ कर मत बैठे रहना, घर के काम काज करते रहना, और अब आज खुद ही।
2: अच्छा अच्छा, तो चाय ठीक रहे।
1: हाँ, अभी लाई। आ गई वसुधा?
3: हाँ मम्मी।
1: आज कृष्णन आया था।
3: कब?
1: दोपहर में।
3: कैसे आए थे?
1: यूं ही मिलने चला आया था। बड़ा ही संस्कारी लड़का है।
3: अच्छा मम्मी, तुम्हें उस दिन की बात याद है जब तुम्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा रही थी?
1: याद क्यों नहीं बेटा, उस दिन तो एक तरह से मेरा पुनर्जन्म ही हुआ था।
3: उस दिन तुम्हें गेट तक छोड़ने के लिए कृष्णन भी तो आए थे।
1: हाँ, हाँ, आया था ना।
3: तब तुमने उससे जो कहा था वो याद है तुम्हें?
1: अच्छी

0: याद है, मैंने कहा था वो लड़की बड़ी सौभाग्यशालिनी होगी जो तुम्हारी पत्नी बनेगी। पर तू ये सब क्यों पूछ रही है?
1: क्योंकि क्योंकि मम्मी, उसकी पत्नी बनने का सौभाग्य तुम्हारी ही बेटी को।
0: वसुधा,
1: क्या हुआ मम्मी? खुशी की बात पर भी गुस्सा क्यों होती हो?
0: तेरा दिमाग तो ठीक है ना?
1: मम्मी, जब मैं कॉलेज जाने लगी थी तब तुमने कहा कि तुम मेरी मम्मी के साथ साथ मेरी सहेली भी हो, कहा था ना?
0: तो
1: मैं आज अपनी उसी सहेली से अपने मन की बातें कर रही हूँ। मेरी बात सहेली की तरह सुनो ना मम्मी, प्लीज। मम्मी गुस्सा मत करो प्लीज।
0: वसुधा, ठीक ठीक बात कर।
1: मम्मी, कृष्णन मुझे हर तरह से अच्छे लगते हैं। आज वो कॉलेज आए थे और मुझसे पूछा कि क्या मैं उनसे शादी करने को तैयार हूँ।
0: और तुमने अपना विवाह तय कर लिया?
1: नहीं मम्मी, तय तो आप और पापा ही करेंगे। मैंने तो तुम्हें अपने और कृष्णन के विचार बताए हैं। कृष्णन को जवाब तो आप ही को देना है।
0: तो मेरा उत्तर एकदम ना है।
1: ये क्या मम्मी, इतने बड़े मामले पर तुमने बिना सोचे समझे फैसला सुना दिया। कुछ तो विचार करिए।
0: अब विचार क्या करना है? कृष्णन अपनी जाति का नहीं है, बस।
1: ओह मम्मी, अच्छे लड़के के लिए आप 2 सालों से कितनी दौड़ धूप कर रही हैं, परेशान हो रहे हैं आप लोग, और जब वो मिल गया तो जाति बिरादरी के झंझट में उलझी
0: हैं। वसुधा, तेरी बातों से विद्रोह झलक रहा है।
1: विद्रोह नहीं मम्मी, कुएं से निकलकर विशाल सागर को अपनाने की विचारधारा है ये। अब देखो ना मम्मी, मेरे लिए लड़का चुनने के लिए आपके सामने ये बंधन है कि अपनी जाति के सीमित लड़कों में से ही किसी एक का चुनाव करो, और फिर चाहे वो योग्य हो या ना हो, मुंह खोलकर लंबा चौड़ा दहेज मांगते हैं। लड़की के माँ बाप से अनुचित मांगे करते रहते हैं। ये कैसी विडंबना है कि सारी बुराई के होते हुए भी लड़के इसीलिए स्वीकार किए जाते हैं कि वो अपनी जाति के विशेष हैं, और सीधा सरल और सुयोग्य कृष्णन इसलिए त्याज्य कि वो अपनी जाति का नहीं है। कैसी बात करती हो मम्मी।
0: नहीं बेटा, कुछ भी हो, जाति में इज्जत तो रहती है।
1: इज्जत? वाह मम्मी, तुम्हारी लड़कियां दहेज के आग में जलेंगी। लड़के वालों के दरवाजे से अपमानित होते रहना तो भी उफ ना करना, और वो कृष्णन तुम्हें पूरे सम्मान से बिना दहेज तुम्हारी लड़की को पत्नी बना रहे हैं, तो तुम्हें ये स्वीकार नहीं। ये गलत है मम्मी।
0: नहीं नहीं, इसमें गलत क्या है? ये तो सदियों से चले आ रहे रीति रिवाज है।
1: चले आ रहे हैं, इसका अर्थ ये तो नहीं कि तमाम बुराइयों के होते हुए भी चलते रहना चाहिए। मम्मी, अगर तुम मुझे सुयोग्य हाथों में देना चाहती हो तो तुम्हें ये सड़ी गली मान्यताएं तोड़नी ही होंगी। और फिर ये अटल सत्य है कि मेरे लिए कृष्णन से सुयोग्य और कोई नहीं होगा।
0: वसुधा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारे पापा जो लड़का देखने उदयपुर गए हैं, वो लड़का भी डॉक्टर ही है।
1: डॉक्टर है तभी तो खूब दहेज मांगेगा, और पापा की सामर्थ्य से वो बाहर होगा, वो अपमानित होकर लौट आएंगे।
0: तो तुझे उससे क्या मतलब?
1: मुझे मतलब क्यों नहीं, मेरे पापा दर दर भटकेंगे, अपमानित होकर लौटेंगे, और मुझे कोई मतलब नहीं। जिन पापा ने मुझे जन्म दिया, मुझे शिक्षा की अमूल्य दौलत दी, खुद दुख उठाकर मेरी इच्छाएं पूरी की, उनके अपमान से मुझे दुख नहीं होगा मम्मी। क्यों, मुझमें भावनाएं नहीं है? ये आपने कैसे सोच लिया मम्मी कि मुझे कोई मतलब नहीं है? आप कैसे सोचती हैं मम्मी ऐसा?
0: नहीं नहीं बस्ता, रो मत बेटी, रो मत। मैं तो कह रही थी तुझे अच्छा घर और बर देने के लिए अगर हमें कुछ तकलीफ या अपमान भी सहना पड़े तो हम वो भी सह लेंगे।
1: और आपको परेशान अपमानित देखकर भी मैं अपनी गृहस्थी में खुश रह सकूंगी, यही ना?
0: एक तरफ से यही समझ ले।
1: नहीं मम्मी, ढेर सारा दहेज देकर मेरे लिए वर खरीदने की कोशिश में कर्ज के बोझ तले मत दबो। मुझे तो ऐसी शादी करनी है जिसका आधार प्रेम हो, लालच नहीं, सम्मान हो, अपमान नहीं।
0: बेटा वस्ता, प्रेम विवाह कभी सफल नहीं होते।
1: वो अंधा प्रेम होता है मम्मी, जो क्षणिक आवेग में किया जाता है। मैंने तो बड़े सोच विचार के बाद कृष्णन जैसे व्यक्तित्व को स्वीकारा है, और फिर कृष्णन को तो तुम भी संस्कारी लड़का मानती हो ना मम्मी।
0: तुम ये सारी बातें अपने पापा को भी समझा पाओगी वसुधा?
1: जहां तक हो सके तुम ही समझा दो ना मम्मी, वरना मुझे तो हिम्मत करनी ही पड़ेगी।
0: और अगर उन्होंने ना कर दिया तो बेटा?
1: तो समझूं कि मुझ में आत्मविश्वास था ही नहीं।

0: पापा।
1: ओ वसुधा आओ बेटे।
0: पापा आप अंधेरे में क्यों बैठे हैं?
1: यूं ही जरा लाइट चालू करने में आलस कर गया था। अब ठहरो मैं अभी जलाता हूँ।
0: आप रहने दो मैं जला देती हूँ। अब बताओ पापा आप क्या सोच रहे थे?
1: मैं कुछ भी तो नहीं।
0: नहीं बाबा मुझसे छुपाओ मत। मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत गुस्सा हैं क्योंकि मैंने मम्मी से कृष्णन के लिए बहस की।
1: अरे मैं तो उसके लिए तुम पर गर्व करता हूँ कि तुमने अपनी आसपास की घटनाओं से इतना कुछ सीख लिया है और अपने पापा की परेशानी को समझा। फिर भी बेटा तूने गलत कहा था। उदयपुर वालों ने सीधे 15 तोले सोना, घर की सजावट का सामान और 10,000 रुपये नगद की मांग कर ली। और इस पर भी ये सुझाव कि बारात 3-स्टार होटल में ही ठहरेगी।
0: ये सब इसलिए ना पापा कि लड़कियों के माँ बाप को जाति बिरादरी के सीमित लड़कों में से ही किसी को चुनना पड़ता है। अब लड़के के पिता सोचते हैं अपने लड़कों की मांग अधिक है इसलिए उनके भाव बढ़ा दो। इस तरह विवाह को उन्होंने व्यवसाय बना लिया। अब पापा क्या हम उनकी अनुचित मांग के आगे सर झुका दें, विवाह को व्यावसायिक होने दें? क्या हम चुपचाप सब सहते रहें?
1: नहीं नहीं बेटा हमें तो विरोध करना चाहिए।
0: तो फिर पापा आप कृष्णन को स्वीकार कर लेना।
1: कर तो लो बेटी पर लोग क्या कहेंगे?
0: लोग तो उस समय कहेंगे जब आपके विरोध के होते हुए भी मैं अपना घर बसाऊं। अगर आप अपने हाथों सहर्ष कर देंगे तो कोई क्या कहेगा? और फिर भी कहे तो आपके पास उत्तर होगा।
1: क्या?
0: यही कि आपने मेरी खुशी के लिए ये सब किया है।
1: पर बेटे
0: ना तो... पापा अब आप कमजोर मत पड़िए प्लीज। हाँ कर दीजिए ना पापा, मेरी खुशी के लिए हाँ कर दीजिए प्लीज पापा।
1: ठीक है बेटे मैं कृष्णन से मिलूंगा बस।
0: पापा आप बहुत अच्छे हैं।
1: अच्छा अच्छे पापा। और नहीं मिलूं तो श्रीमती वसुधा कृष्णन क्या कहेंगी?
0: तब भी वसुधा यही कहेगी कि पापा बहुत अच्छे हैं।

नैहर छूटो जाए। अभी आपने अरविंद नीमा द्वारा लिखित यह नाटिका सुनी। निर्देशक थे जटाशंकर शर्मा। आकाशवाणी भोपाल केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल अब समाप्त होता है।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
2: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़ जंगल पहाड़ झरने इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीज़ों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकी

0: में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं देश का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम चित्रलोक बस थोड़ी ही देर में।

लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। आप सभी विविध भारती सुनने वालों का कार्यक्रम चित्रलोक में स्वागत करती हूँ। मैं पूजा नरानिया, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहला गीत दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगी, इस फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल, जतिन ललित का संगीत।

दिल चाहता है फिल्म का गीत सुनिए, शान और कविता सुब्रमण्यम की आवाजों में, जावेद अख्तर के बोल, शंकर एहसान लॉय का संगीत।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

HSB. गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है
2: जी।
1: या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहाँ कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो

0: आए हाय।
1: सुनिधि चौहान की आवाज में अगला गीत, फिल्म का नाम है चमेली। इरशाद कामिल के बोल हैं, संदेश चांडिल्य का संगीत।

फिल्म चमेली से ये गीत सुनिधि चौहान की आवाज़ में अभी आपने सुना, और इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न होता है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्ट्यूक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया की मंत्री क्लेयर ओनील ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। दोनों वाद्य यंत्रों की सुर और ताल ने भारत और ऑस्ट्रेलिया की सांस्कृतिक साझेदारी को सजीव रूप में प्रस्तुत किया। इसके बाद मेलबर्न की प्रसिद्ध कथक नृत्य संचिता ओबरोल के नेतृत्व में कथक नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने एआर रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है।

0: प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा भी लिया। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
1: योग्यकार्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
0: इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक आतंकवाद की स्थिति पर विचार विमर्श किया और कट्टरपंथ आतंकवाद के वित्त पोषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने आज ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। रॉकेट का परीक्षण निर्धारित न्यूनतम 60 किलोमीटर की दूरी के लिए किया गया। पिनाका को आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला के सहयोग से डिजाइन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, सेना और उद्योग जगत को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट के स्वदेशी डिजाइन और विकास क्षमता में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है, जिससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में ये घटकर 24% रह गई है।
2: जुलाई की अच्छी बारिश से बोनी की संभावनाएं बढ़ गई है। अब बोनी और तेजी से होगी। कल तक 350,85,000 हेक्टर में बोनी हुई है। मानसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन और कपास पर थोड़ा प्रतिकूल बोनी पर प्रभाव पड़ा है। अब किसानों को यह सलाह दी जा रही है कि इनकी जगह मक्का, बाजरा और मूंग जैसी फसल जो कम समय में आ जाती है, उनकी बुआई को प्राथमिकता दें।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन से बातचीत की। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिमी मानसून के उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में आगे बढ़ जाने की संभावना है।
3: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार शुक्रवार तक कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी ऐसी स्थिति बनी रहने की संभावना है।

0: आज दिल्ली एनसीआर में हुई हल्की बारिश से गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। विभाग के अनुसार राजधानी में दक्षिण पश्चिम मॉनसून सक्रिय है और आने वाले दिनों में भी बारिश होने की संभावना है। विभाग ने कल तक दिल्ली के लिए बिजली गरजने के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। ऋषु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मुंबई से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में लगातार मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है।
2: नासिक और इगतपुरी के कैचमेंट एरियाज में भारी बारिश जारी है, जहां पिछले 24 घंटों में कई इलाकों में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। भरे हुए डैम से पानी छोड़े जाने के बाद गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में भी भारी बारिश हुई है, जिससे कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। पालघर जिले में पिछले 8 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है, इसके चलते डैम से सूर्या नदी में पानी छोड़ा गया, जिससे नदी के किनारे के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं सांगली जिले में शाम के वक्त तेज बारिश शुरू हुई, जबकि कृष्णा और वरना नदियां फिलहाल पूरी कैपेसिटी के साथ बह रही है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ ईपीएफओ खातों में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत आईटी सक्षम सेवा CITES प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में जमा 440 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं। ये मामला वित्तीय लेनदेन और संदिग्ध धन की हेराफेरी से संबंधित है। जांच में पता चला है कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच पार्टी के बैंक खातों से लगभग 160 करोड़ रुपए एक निजी कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई में स्थानांतरित किए गए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा कर दी है। तुर्की की राजधानी अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे ईरान के साथ बातचीत में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। हालांकि उन्होंने कहा कि अमरीकी प्रतिनिधि वार्ता जारी रख सकते हैं, लेकिन इसके सफल होने को लेकर उन्होंने संदेह जताया।
3: मुझे लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। मैं अब उनसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। उनका नेतृत्व बीमार मानसिकता वाले लोग कर रहे हैं। वे क्रूर और हिंसक लोग हैं, और अगर उनके पास परमाणु हथियार होता तो वो लोग उसका इस्तेमाल कर देते।
1: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1677 अंक गिरकर 76,504 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 517 अंक फिसलकर 23,882 पर बंद हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 60 पैसे कमजोर होकर 95 रुपए और 56 पैसे पर बंद हुआ।
1: खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज घोषणा की कि तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। श्री मांडविया ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। पिछले वर्ष मई में बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की थी। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोत्सुक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टेस और यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युको ने जस्मीन पाउलिनी को हरा दिया। पुरुष सिंगल्स में टेलर फ्रिट्स का सामना अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और फ्लेवियो कोबोली का मुकाबला आर्थर फेरी से जारी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहले क्वार्टर फाइनल में शुक्रवार तड़के 1:30 बजे फ्रांस और मोरक्को आमने सामने होंगे। दूसरे क्वार्टर फाइनल में शनिवार तड़के 12:30 बजे स्पेन का सामना बेल्जियम से और तीसरे क्वार्टर फाइनल में रविवार तड़के 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला होगा इंग्लैंड से। अंतिम क्वार्टर फाइनल में रविवार सुबह

0: 6 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। भारत के वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय क्षेत्र के ऊपरी आयनमंडल का सटीक मानचित्र तैयार करने की नई तकनीक विकसित की है। ये तकनीक जमीन और अंतरिक्ष से प्राप्त आंकड़ों को जोड़कर विकसित की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि इससे उपग्रह संचालन, संचार प्रणाली और नेविगेशन सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की। और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं देश का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। आपको सबसे पहले सुनवाने जा रहे हैं इस कार्यक्रम का ये पहला गीत किशोर कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई धुन पर, फिल्म का नाम अनुरोध।

श्रोताओं, कल कार्यक्रम आज के फनकार सुबह 9:30 पर केंद्रित रहेगा फिल्मकार गुरुदत्त पर, और रात 9:30 पर आज के फनकार केंद्रित रहेगा अभिनेता संजीव कुमार पर। आप ज़रूर सुनिएगा आज 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम अभिनेत्री नीतू सिंह पर केंद्रित है, क्योंकि आज है अभिनेत्री नीतू सिंह का जन्मदिन। उन्हें जन्मदिन की बहुत बधाई। और अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत बैराग फिल्म से। लता मंगेशकर ने इस गीत को गाया है, आनंद बख्शी के बोल, धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर। अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
3: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है
0: जी।
3: या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहाँ कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। आपको सुनवा रहे हैं अब आनंद बख्शी के बोलों को सुरों में ढाला है एसडी बर्मन ने और गाया है लता मंगेशकर ने ये गीत फिल्म चुपके चुपके से।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन, आज के फनकार। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती हूँ। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: जी हाँ, नीतू सिंह की अदाकारी और नीतू सिंह को चाहने वाले आज भी उन्हें पर्दे पर देखने की चाहत रखते हैं। नीतू सिंह ने अपनी अदाकारी से सभी का दिल जीता और ये सिलसिला उन्होंने अपने बचपन से ही शुरू कर दिया था।
1: बच्चे मन के सच्चे

दो कलियां फिल्म में नीतू सिंह ने डबल रोल किया था और तब उनकी उम्र महज 8 साल की थी। बेबी सोनिया के नाम से उन्होंने अपने अभिनय की ये पारी शुरू की। उस समय पहली फिल्म जो थी वो थी सूरज 1966 में।

नीतू सिंह का जन्म हुआ 8 जुलाई 1958 को दिल्ली के एक सिख परिवार में, पिता दर्शन सिंह और माँ राजी कौर। बाद में ये बंबई शिफ्ट हो गए, जो आज मुंबई कहलाती है। यहाँ पैडर रोड जैसे पॉश इलाके में रहने लगे। नीतू का दाखिला भी यहीं के एक स्कूल हिल ग्रेंज हाई स्कूल में करा दिया गया। और फिर कुछ स्थितियां ऐसी बनी कि एक दिन नीतू सिंह को फिल्म सूरज में

करने लगे। नीतू का दाखिला भी यहीं के एक स्कूल हिल ग्रेंज हाई स्कूल में करा दिया गया। और फिर कुछ स्थितियां ऐसी बनी कि एक दिन नीतू सिंह को फिल्म सूरज में बाल कलाकार के रूप में काम करने का मौका मिला। फिर तो ये सिलसिला शुरू हुआ, 10 लाख, दो कलियां, वारिस और पवित्र पापी। इन फिल्मों में भी नीतू ने बेबी सोनिया के नाम से अभिनय किया। अब बात 1973 की, जबकि पहली बार बेबी सोनिया को बतौर अभिनेत्री फिल्म में साइन किया गया और अब बेबी सोनिया बन गई नीतू सिंह और फिल्म थी रिक्शावाला। एक नायिका के रूप में नीतू सिंह का यह सफर शुरू हुआ 1973 से 1983 तक चला और इस दौरान नीतू सिंह ने लगभग 55 फिल्मों में काम किया। अभिनय की शुरुआत में नीतू सिंह की फिल्म रिक्शावाला ने शायद उनकी उतनी मदद नहीं की जितना कि महत्व फिल्म यादों की बारात का था। धर्मेंद्र, जीनत अमान, विजय अरोरा जैसे कलाकारों के साथ इस फिल्म में नीतू सिंह का रोल बहुत छोटा सा था, लेकिन इस फिल्म में उनके हिस्से आया एक गाना जिसने दर्शकों के दिलों तक पहुंचा दिया नीतू सिंह।

इस गीत के बाद दर्शकों के बीच एक अलग इमेज बनी नीतू सिंह की, और फिर नीतू सिंह ने अपने समय के लगभग सभी नायकों के साथ बढ़ चढ़ कर काम किया। रणधीर कपूर के साथ हीरालाल पन्नालाल, भला मानुस, कसम वादे, ढोंगी।

राजेश खन्ना के साथ महाचोर, चक्रव्यूह और पंजाबी फिल्म सवा लाख से एक लड़ाऊं, जितेंद्र के साथ धर्मवीर, प्रियतमा, चोरनी, जानी दुश्मन, द बर्न

विनोद खन्ना के साथ सेवक, परवरिश, महाबदमाश, युवराज, राजमहल, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ अब क्या होगा, काला पत्थर। नीतू सिंह ने अपने पूरे फिल्मी करियर में अब तक सबसे ज्यादा फिल्में की ऋषि कपूर के साथ, और 1980 में जबकि नीतू सिंह की उम्र सिर्फ 21 साल की थी, तब उन्होंने ऋषि कपूर के साथ विवाह कर लिया।

ऋषि कपूर के साथ नीतू सिंह की फिल्मों ने हर तरफ वाहवाही बटोरी। यही नहीं, दोनों की फिल्मों का संगीत भी सुपरहिट रहा। कभी कभी, अमर अकबर एंथनी, दुनिया मेरी जेब में, जिंदा दिल, दूसरा आदमी, अनजाने में, झूठा कहीं का,

ऋषि कपूर के साथ विवाह के बाद नीतू सिंह ने फिल्मों में अभिनय करना बंद कर दिया और अपना पूरा ध्यान परिवार पर लगा दिया। ऋषि कपूर और नीतू सिंह, जो कि शादी के बाद नीतू कपूर कहलाने लगी, के बेटे हैं रणबीर कपूर और बेटी है रिधिमा। रिधिमा बड़ी है, उनका विवाह हो चुका है दिल्ली के एक इंडस्ट्रियलिस्ट भरत साहनी के साथ, और रणबीर कपूर को तो आप जानते ही हैं। नीतू सिंह ने लगभग 26 साल बाद अपने अभिनय की दूसरी पारी शुरू की, और वो भी ऋषि कपूर के साथ ही, फिल्म लव आजकल से।

अब भी नीतू सिंह फिल्मों में सक्रिय हैं। दूसरी पारी की उनकी फिल्में हैं लव आजकल, दो दूनी चार, जब तक है जान और बेशरम। नीतू सिंह स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, दीर्घायु हों, यही विविध भारती की कामना है।

0: अभिनेत्री नीतू सिंह पर केंद्रित आज के फनकार प्रोग्राम अभी आप सुन रहे थे शोध स्वर और आलेख अमरकांत का। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, प्रोग्राम के प्रोड्यूसर शकील बख्शी। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अद्भुत यादें

कठिन नहीं होता, हम उसे कठिन बना देते हैं। हम सोचते हैं कि प्रेम बदल गया, प्रेम करने वाला बदल गया, पर शायद प्रेम नहीं बदलता, उसके साथ जुड़ी अपेक्षाएं बदल जाती हैं, उसके साथ जुड़ी उम्मीदें बदल जाती हैं।

0: कभी कभी हमारे भीतर जो चलता है वो शब्दों में कम और खामोशी में ज्यादा होता है। हमारा मन बहुत परतों में बटा होता है। ऊपर ऊपर हंसते हुए भीतर कहीं एक कोना ऐसा होता है जहां हम अपने असली रूप में होते हैं, थके हुए से, चुप चुप और कभी कभी बेहद अकेले भी।
1: कभी

इस अंतराल के बाद आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। कभी कभी जीवन में कुछ नहीं चाहिए होता सिवाय एकांत के। हाँ, बस चार दीवारें, एक खिड़की, छोटा सा रोशनदान, हल्की सी रोशनी और भीतर की आवाजें। हाँ, भीतर की आवाजें अच्छी लगती हैं तब, क्योंकि वहाँ कोई अभिनय नहीं होता, कोई भूमिका निभानी नहीं पड़ती। बस अपने भीतर के उन हिस्सों को हम सुन सकते हैं जिन्हें हमने वर्षों से टाल रखा होता है। तब आप खुद से भाग नहीं रहे होते, बस अपने भीतर लौट रहे होते हैं।

एक उम्र के बाद शोर वाला नहीं सुकून वाला प्यार चाहिए होता है ना? ऐसा प्यार जो मुश्किलों से भागे नहीं, ऐसा प्यार जो रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में मौजूद हो, ऐसा प्यार जो आत्मा को थकाए नहीं, ऐसा प्यार जो हमको रुलाए नहीं बेवजह, ऐसा प्यार जो अच्छा नहीं बल्कि सही हो, हाँ बस सही हो, ऐसा।

कहते हैं रिश्ते किसी तूफान की तरह नहीं टूटते, ज्यादातर गिरावटें बिना आवाज की होती हैं। हम उम्मीदों की टोकरी अपने सर पर लिए घूमते हैं और हर उम्मीद हर रोज किसी तारे की तरह टूटकर बिखर जाती है और साथ ही बिखर जाती है हमारी जिंदगी भी।

जन्म आधा है, रात आधी है, कहीं तेरी मेरी बात भी आधी।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम रंग
1: तरंग। मध्य प्रदेश है हिंदी में समाचार कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया के मंत्री क्लेयर ओनिल ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान की प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारतीय ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबावो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति प्राबावो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सभा अल खालिद अल सभा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रमों पर अपने विचार साझा किए। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में किसानों के हितों की रक्षा के लिए खोपरा और तोतापुरी आम की खरीद को मंजूरी दे दी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और उन्हें कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी से राहत मिलेगी। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 87,000 मीट्रिक टन से अधिक खोपरा खरीदने को मंजूरी दी है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आम की खरीद भी की जाएगी। मंत्रालय के अनुसार इस निर्णय से किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश की कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकती है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रुपए की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में आज 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। उन्होंने सरकार, उद्योग, अनुसंधान संस्थानों और किसानों के बीच बेहतर सहयोग पर बल दिया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट की महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोस्त्युक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टिन्स को और यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक ने जैस्मिन पावलिनी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।